मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता मक्का की खेती, वार्ताकार श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। मक्का की खेती लगभग सालों भर की जाती है, लेकिन मक्का की जो मुख्य फसल है उसकी बुआई 25 मई से लेकर 15 जून तक की जा सकती है। मक्का की खेती दोमट एवं जल निकास युक्त ऊपरी जमीन में करनी चाहिए। किस्मों का चुनाव मौसम के अनुकूल करना चाहिए। इस मौसम में जिन किस्मों को आप बोएंगे उनमें शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, सुवान, गंगा 11, देवकी प्रमुख है। इन किस्मों को आप इस समय लगा सकते हैं। मक्का की बुआई करने से पहले खेत की जुताई करनी चाहिए। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताइयां देसी हल से करें और उसके बाद गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट की उचित मात्रा जो है वो आप खेत में मिलावें। उसके बाद मक्का के बीजों की बुआई करें। बुआई करने के पहले आप कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें, क्योंकि जब मक्का की बुआई आप करते हैं तो उस समय कुछ समस्याएं अंकुरण के समय आती हैं, कीड़े लग जाते हैं और भूमिगत कीड़े नुकसान करते हैं। इसलिए अंतिम जुताई के समय आप नीम की खल्ली का प्रयोग करें 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ज़्यादा उचित रहेगा। जुताई के बाद जब बीज बोने की बात आती है तो बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी चाहिए। दीर्घकालीन प्रभेद को पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वैसे ही अल्पकालीन प्रभेदों के लिए पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की जो बात हो रही थी तो 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर एवं 40 किलोग्राम पोटास खरीफ मक्का में बुआई के समय खेत में आप दे दें। 40 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम स्फूर एवं 50 किलोग्राम पोटास रबी मक्का के लिए आवश्यक होता है। उसकी चर्चा इस समय हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप रबी मक्का की बुआई करेंगे उस समय ये बात आप ध्यान में रखेंगे। खाद और बीज अलग अलग नालियों में व्यवहार करना चाहिए। 25 जब बीज का अंकुरण हो जाए और पौधों में 2-3 पत्तियां निकल जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। हालांकि इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब आप बुआई करेंगे उसके कुछ दिनों के बाद वर्षा होने की संभावना बनती है और वर्षा होती भी है। एक बात का आप ध्यान रखें कि खेत में खरपतवार जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो खरपतवारों से खेत को मुक्त करने का तरीका ये है कि जुताई के समय आप विशेष ध्यान दें, उस समय आप खरपतवारों को नष्ट करें और बुआई के दूसरे ही दिन तीव्रनाशक दवा एट्राजिन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर जमीन की सतह पर समान रूप से छिड़काव करें। इससे खेत में खरपतवार जो है नियंत्रित हो जाते हैं, वे नहीं उगते हैं। उसके बाद भी यदि खरपतवार खेत में उगे तो खुरपी की सहायता से निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मक्का की फसल को नुकसान कीड़ों के द्वारा ज़्यादा होता है। तना छिद्रक कीट का आक्रमण होने पर आप उसके लिए उपाय करें। 2-3 पत्ती की अवस्था में ही कीट के लक्षण दिखाई देते हैं तो इंडोसल्फान 35 EC दवा का छिड़काव करें और आप दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूराडान दवा का प्रयोग पौधे की जड़ के नज़दीक करें नमी रहने पर, तो इससे जो ये कीड़ा मर जाएगा। इस तरह से आप मक्का की खेती करें और लाभ उठावें।
0: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना मक्का की खेती के बारे में। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, ये समय होता है दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाई रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर।

0: अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
1: क्या कभी हमने गंभीरता से विचार किया है कि विदेशी वस्तुओं के प्रति हमारा मोह हमें कितना महंगा पड़ रहा है? आज से लगभग 90-95 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने इसका अनुमान लगा लिया था और उन्होंने नारा दिया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, हर कीमत पर हम केवल अपनी देश में निर्मित वस्तुओं का व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने स्वदेशी की बात की थी। उनकी नजर में स्वदेशी का अर्थ था अपने देश का बना हुआ सामान, दूसरा की ब्रिटेन में बने मालों का बहिष्कार और भारत में बने मालों का अधिकाधिक उपयोग। ब्रिटेन से वहां के निर्मित मालों के आने से गांधी जी बड़े चिंतित थे, क्योंकि इससे देश में खुले छोटे और लघु उद्योग की हालत खस्ता हो गई थी, बेकारी बहुत बढ़ गई थी। उनका कहना था कि जो लोग देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने से इनकार करते हैं और अपनी रुचि बाहर के देश में बनी चीज की ओर दिखाते हैं, वे किसी भी रूप में देशभक्त कहलाने के योग्य नहीं है। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। परिणाम यह हुआ कि उसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था और देश के करोड़ों लोगों ने न केवल विदेशी वस्त्रों बल्कि विदेश में बनी अन्य वस्तुओं के उपयोग नहीं करने का दृढ़ संकल्प लिया था। बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जली थी। उस समय ब्रिटिश शासन काल का समय था और हमारे देश का कच्चा माल कौड़ी के मूल्य में विदेश भेजा जा रहा था और वहां के निर्मित मालों को हमें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। देश का सारा उद्योग धंधा इसकी वजह से चौपट हो गया था और देशवासी परालंबी बन गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वस्त्र, कांच, कागज, कलम, चित्र, खिलौने आदि आवत सब पर देशों निधि ही जहाज नला दी। गांधी जी की नजरों में चरखा और खादी ही आर्थिक समस्याओं का हल था और उनका मानना था कि ग्राम और कुटीर उद्योगों के जरिए ही भारत की गरीबी से लड़ा जा सकता है। विदेशों से वहां के बने सामानों को मंगाने के कारण देश का धन भी बाहर जा रहा है, अपना देश गरीब होता जा रहा है। गांधी जी की नजर में इसका एक ही इलाज था और वह था गांव-गांव में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हो, यहां उत्पादित कच्चे मालों पर आधारित अधिक से अधिक उद्योग खुले, ग्राम अपनी आवश्यकताओं के मामले में स्वावलंबी बने, विदेश निर्मित विभिन्न तरह के सामान, खिलौने से लेकर उपभोग की बड़ी बड़ी वस्तुओं से बाजार भरे हुए हैं। इन वस्तुओं में गुणवत्ता का अभाव है, लेकिन फिर भी हम इसे खरीद रहे हैं। परिणाम यह है कि एक और हमारे देश का धन विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जा रहा है तो दूसरी ओर हमारे देश में खुली औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन पर इसका सीधा असर हो रहा है और खुले छोटे और सूक्ष्म उद्योग बंदी के कगार पर हैं। कल कारखाने मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी जितनी उत्पादन क्षमता है उतना भी उत्पादन करने में असमर्थ हैं। परिणाम कामगारों के सामने नियोजन की बड़ी समस्या पैदा हो गई है, रोज वो रोज बेकारी बढ़ती जा रही है। क्या यह देशभक्ति का तकाजा नहीं है कि हम दैनिक काम में आने वाली विदेश निर्मित सामानों का बहिष्कार करें और केवल अपने देश में बनी सामग्रियों को खरीदने का निर्णय लें? त्योहार के समय बाजार में विदेश निर्मित दीप, मोमबत्ती, खिलौने, बिजली के झालर, पटाखे दुकानों में सज रही हैं। अगर हम विदेशी दीप, देवी देवता और खिलौने खरीदते हैं तो उन कुम्हारों का क्या होगा जो महीनों की मेहनत के बाद इस भरोसे के साथ उन्हें बनाकर तैयार किया कि त्योहारों पर इनकी बिक्री होगी? अगर हम विदेशी मोमबत्ती, बिजली के झालर और फुलझड़ी आदि खरीदते हैं तो सोचिए कि हमारे कुटीर उद्योग कैसे बढ़ेंगे? आज इस बात की जरूरत है कि हम केवल अपने देश में निर्मित चीजों के उपयोग का ही व्रत लें।
0: चिंतन मनन, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए अब आनंद लें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

भक्ति किसी के लिए जीवन जीने का साधन है, किसी के लिए जीवन है और किसी के लिए एक विश्वास। विश्वास की भक्ति करेंगे तो जीवन के हर कष्ट हर जाएंगे, हर कष्ट दूर हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए भक्ति केवल एक भ्रम है। अब भक्ति किसी के लिए कुछ भी हो, भ्रम हो, जीवन हो या विश्वास, परंतु एक बात तो तय है कि हमारे जीवन में यदि हमारे मन को शांति न मिले तो जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। और मन की शांति के लिए कोई तो साधन अपनाना होगा। शांति से इस जीवन को जीने के लिए कोई तो साधन, कोई तो मार्ग हमें चुनना होगा, और उनमें से एक मार्ग है।

भक्ति का। भक्ति इसलिए कि भक्ति विश्वास देती है। भक्ति हमें सिखाती है मानवता के धर्म पर चलने को। भक्ति किसी की भी हो, कैसे भी ईश्वर की हो, हाँ केवल मनुष्य की भक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई मनुष्य अगर स्वयं को भगवान कहता है तो वो सबसे बड़ा ढोंगी होता है। भगवान यूं ही पृथ्वी पर दिखाई नहीं देते, हमारे आसपास नहीं होते, हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। और इसी महसूस करने को जब हम एक अलग चरण पर ले जाते हैं, यानी कि हम विश्वास कर लेते हैं कि हम महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, तब हमारी भक्ति कुछ और ही हो जाती है। और जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर हैं, ईश्वर हमारे बाहर भी हैं, हमारे और कण कण में हैं, तब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर कहते हैं मानवता की सेवा करो, और सबसे बड़ा धर्म मानवता ही है। कोई भी धर्म हमें यही सिखाता है, मानवता की सेवा, हर जीव की सेवा, और किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट ना पहुँचे। आइए अपने दिन की शुरुआत करें शेरावाली के जयकारा के साथ। शेरावाली जो भक्तों के कष्ट को हर लेती है, जो उनके दरबार में जाता है उनके दुखों को हर लेती है, बेड़ा पार करती है, शेरावाली जिनकी महिमा अपरंपार है।

जयकारा बोलो शेरा वालिदा, जय माता दी। माँ जगदम्बा की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली, दुखों को हरने वाली और जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाने वाली आदि शक्ति हैं। वो भक्तों को दया भी सिखाती है, वो भक्तों को अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाती है। और जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ की शरण में जाता है तो माँ उसे अपनी ममता की छांव में स्थान देती है और भक्त अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार माँ को चढ़ावा चढ़ाता है। कोई ढेर सारे फल, कोई केवल और केवल जल और कोई माँ को जड़ी की हुई चुंदरी। आइए माँ का एक और भजन सुनें।

जब हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम खुशी खुशी माता को चुनरी चढ़ाते हैं और अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें उन्हें अर्पित करते हैं। और हमारी मनोकामना पूर्ण होने में जितना योगदान माता का होता है, यानी कि ईश्वर का होता है, उतना ही योगदान हमारा भी होता है। अगर हमारे मन में विश्वास हो, हम कर्म करें, तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम जिस चीज़ को सफल करना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए चाहिए शक्ति, चाहिए विश्वास, जो कहीं ना कहीं भक्ति से अवश्य आता है। कहते हैं कि सूरज की पहली किरणों के साथ हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए। ध्यान हमारे मन को मजबूत बनाता है, योग हमारे तन को मजबूत बनाता है। आइए सूरज की पहली किरण संग हम ईश्वर का नाम जपें। आइए बोलें सीताराम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब सुने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता का विषय है आँखों की देखभाल। माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता का विषय है लू लगना, कारण, लक्षण एवं बचाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर आरपी यादव।
1: गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है लू लगना। अंग्रेजी भाषा में इसे हीट स्ट्रोक और सन

0: स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज़्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंकों से संपर्क में आने पर लू लगने का डर अधिक होता है। कब लगती है लू अधिक? गर्मी में शरीर के द्रव बॉडी फ्लूइड सूखने लगते हैं, शरीर से पानी और नमक की कमी होने पर लू लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होती है। इसमें गर्मी के कारण होने वाली और कई मामूली बीमारियां भी शामिल होती हैं, जैसे कि हीट इडिमा, शरीर का सूजना, हीट रैश, दाना निकलना, हीट क्रैम्प्स, शरीर में अकड़न और हीट सैंकोप, बेहोशी आदि। चिकित्सक शरीर के तापमान को 105 डिग्री से अधिक रहने पर और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जटिलताओं के पेश आने पर लू लगना कहते हैं। गर्मी में अधिक शारीरिक गतिविधि करने पर, मोटे कपड़े पहनने पर, ज़्यादा शराब पीने पर और कम पानी पीने पर लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडराता है। लू के लक्षण, इसमें शरीर में गर्मी, खुश्की, सिरदर्द, कमजोरी, शरीर टूटना, बार बार मुंह सूखना, उल्टी, चक्कर, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दस्त और कई बार निढाल या बेहोशी जैसी लक्षण नजर आते हैं। लू लगने पर पसीना नहीं आता, शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाता है, अक्सर बुखार बहुत ज़्यादा मसलन 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, हाथ और पैर में तलवों में जलन सी महसूस होने लगती है। इसमें अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है। बुखार काफ़ी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और लीवर, किडनी और सोडियम पोटासियम का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में बेहोशी भी आ सकती है। इसके अलावा लो बीपी, ब्रेन या हार्ट स्ट्रोक की स्थिति भी बन सकती है। लू लगने के जोखिम, लू लगने के कारण दिमाग और आंतरिक अंगों को क्षति पहुंच सकती है। वैसे तो लू का शिकार अक्सर 50 से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं, लेकिन कई स्वस्थ खिलाड़ी भी इसका शिकार आसानी से हो जाते हैं। कम उम्र के लोगों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकसित हो रहा होता है तो ज़्यादा उम्र के लोगों में दूषित होता है, जिसके कारण इन दोनों को ही लू का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लू लगने के दौरान व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की शिकायत भी होने लगती है। हीट स्ट्रोक का तुरंत इलाज ना कराने पर मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। कई स्थितियों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। गर्मी में विभिन्न दवाइयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी लू लगने का डर होता है। ऐसी दवाएं जो रक्त धमनियों, ब्लड वेसल्स को संकीर्ण करे, एड्रेनालाइन के रास्ते में अवरुद्ध पैदा करे, रक्तचाप को नियंत्रित करे, शरीर से सोडियम और पानी को बाहर निकाले और एंटी डिप्रेसेंट हो, लू लगने के खतरे को बढ़ाती है। बचाव क्या है? गर्मी के दिनों में कम से कम बाहर निकलकर लू से बचा जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा संभव ना हो तो गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। धूप में घर से बाहर निकलें तो छतरी का इस्तेमाल करें। नंगे बदन और नंगे पैर धूप में ना खड़े हों। नींबू पानी, आम पना, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, बेल या नींबू का शरबत, खस का शरबत जैसे तरल पदार्थ पीते रहें। ढीले और सूती कपड़े पहने, खाली पेट बाहर न जाएं और थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। गर्मी से एकदम ठंडे कमरे में न जाएं। दिन में दो बार नहाएं। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी जरूर खाएं। ठंडे वातानुकूलित कमरे में रहें। घर से बाहर निकलते समय जेब में कटा प्याज रखें। लू का सामान्य उपचार, आहत व्यक्ति को पहले छांव में लाकर उसे ठंडी हवा देने की व्यवस्था करें। गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, छाया में लाने से शरीर का तापमान सामान्य आना शुरू हो जाता है। नमक, चीनी और पानी का घोल मुंह से पिलाएं। गीली चादर में लपेटकर तापमान कम किया जा सकता है। हाथ पैर की मालिश करें जिससे रक्त संचरण प्रभावित हो। संभव हो तो बर्फ के टुकड़े कपड़े में लपेटकर गर्दन, बगलों या जांघों पर रखें। इससे गर्मी जल्दी निकलती है। सिर्फ
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना लू लगने के कारण, लक्षण और उसके बचाव के बारे में। वार्ताकार थे डॉक्टर आरपी यादव। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आप

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बान है, वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

रामचरितमानस गान आपने सुना रविंद्र साठे के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाएंगे मौसम का हाल, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां, साथ ही सुनेंगे फिल्मी गीत एवं सुगम संगीत और सुनिए स्मृति संवाद। आज फिल्मी गीतों का समय है प्रातः 9:06, 11:11:30, दोपहर 2:30, 5:30 और रात 8:00। साप्ताहिक कार्यक्रम बज़्मे उर्दू आज प्रातः 9:30 पर प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद सरशार अहमद। लोकगीत प्रसारित होंगे आज प्रातः 10:30 पर कलाकार होंगे जय नारायण शर्मा। 1:00 कलाकार राजेश कुमार पंडित। बहनें अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर 12:00। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होता है। 1:30 पर रमेश रमन का लिखा धारावाहिक गंगा के सुरताल की तीसरी कड़ी आप सुन पाएंगे। निर्देशक होंगे दासमती चार्टर और अशोक शरण। सुगम संगीत का आनंद लीजिए। दोपहर 3:00 कलाकार होंगे कविता पौडवाल और जसवंत सिंह। 7:52 पर कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। 3:20 पर प्रस्तुत होता है समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से 5:00 तक आनंद लीजिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 5:00 से। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिए 6:00। 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में वार्ता, जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावनाएं। वार्ताकार होंगे विनय कुमार सिंह। सुनना न भूले नाटक कर्म भूमि, लेखिका होंगी डॉक्टर सुधा जाला कोहली, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार प्रस्तुत होगा रात 10:00। सुनिए गीत गजल कार्यक्रम भावगीत रात 10:30 पर। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार का। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में, जहाँ बातें होने वाली है ढेर सी, मनोरंजन होने वाला है और मनोरंजन की पोटली में लिपटी होने वाली है ढेर सारी जानकारियाँ। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से पर बेहद ही ज़रूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल। अगर वक्त का हाल बता दूँ तो वक्त हो चुका है 7:02 की बात क्या ही करें, दिन की बात करते हैं। दिन है आज मंगलवार का और तारीख है 9 जून 2026। तो 7 बज चुके हैं, उम्मीद है आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी। जी हाँ, और इतनी आजकल, मतलब अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है अभी, तो लोग बहुत जल्दी अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं और कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि चांद ने ना अपनी दीपक बुझा दी है और सूरज ने अपने किरणों से पूरे जग को जगमगा दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए चांद और सूरज के दीपक बस नाम मात्र के होते हैं, उनके लिए उनका कोई ख़ास होता है, जिनके दो नयन ही उनके लिए सारा जग होते हैं, उनके लिए दो नयन ही चांद और सूरज होते हैं, सब कुछ होते हैं। आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली ने और इस गीत को आप सुनेंगे ध्रुव कुमार की आवाज़ में। बिल्कुल आपने ठीक समझा है, हमारे कार्यक्रम में सुगम संगीत की शुरुआत हो चुकी है।

आजकल तो वाकई सूरज का पता ही नहीं लगता है, दो घड़ी में बदल जाता है, और दो घड़ी में बादल आ जाते हैं, दो घड़ी में आंधी, और दो घड़ी में मौसम बिल्कुल सामान्य हो जाता है। मौसम इस तेज़ी से बदल रहा है कि क्या ही कहने। और आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें तो आज अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और इस दौरान हो सकता है कि 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले। साथ ही अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। ये मौसम का हाल है, मौसम का अनुमान है। और अगर हम बात करें कि आज बारिश

0: होने की संभावना है या नहीं। तो कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर बादल भी छाए रह सकते हैं। हल्की बुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और हो सकता है कि बारिश भी हो और बहुत तेज़ बारिश हो कुछ जगहों पर। तो ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, क्योंकि मौसम वैसे भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अंतराल तो बिना बताए ला देता है आजकल। मैं आपको बताकर एक अंतराल ले रही हूँ। अंतराल के उस पार हम यहीं मिलेंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
4: Nexa.
0: एक छोटे से अंतराल के इस बार अपने वादे के अनुसार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। जानकारी जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उनके लिए जो कहीं आने वाले हैं या उनका अपना कोई आपसे मिलने आने वाला है, उनसे मिलने आने वाला है और वो ट्रेन से आने वाले हैं। तो ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का समय जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ट्रेनें लेट लतीफ़ है और कौन सी ट्रेनें बिल्कुल सही समय से चल रही है। ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 यानी कि हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। बात करें आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस की, तो आज ये बिल्कुल सही समय पर यानी कि 8:15 पर भागलपुर पहुंच जाएगी। जी हाँ, ट्रेन संख्या 12368 अपने निर्धारित समय 8:15 पर भागलपुर पहुंच जाएगी। और ट्रेन संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने तय समय से 23 की देरी से चलते हुए आज 8:28 पर भागलपुर आएगी। 5316 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने राइट टाइम है, बिल्कुल 8:37 पर भागलपुर आएगी। 12335 अपने निर्धारित समय 8:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। 12335 यानी कि भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। और अगर हम बात करें 13403 यानी कि रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस की, तो ये भी बिल्कुल अपने निर्धारित समय 9 भागलपुर पहुंच जाएगी। और 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 10:15 पर भागलपुर आएगी। 12367 यानी कि भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। अगर आपके कोई अपने जिन्हें कि आप ज़िंदगी का प्यार कह सकते हैं वो आने वाले हैं या फिर आप कहीं जाने वाले हैं, तो बिल्कुल समय का हाल अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। और आइए गीत सुनते हैं।

जिंदगी का प्यार हो तुम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी के प्यार को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। किन्हीं की ज़िंदगी का प्यार है उनका काम, और किन्हीं की ज़िंदगी का प्यार है उनके अंदर जो कला है। कुछ लोग चित्रकारी करते हैं, कुछ लोग नृत्य करते हैं, कुछ लोग गीत गाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी के प्यार को समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर आपको अपने ज़िंदगी के प्यार को समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो थोड़ी देर नहीं, बहुत दिन लगेंगे शायद, आप थोड़ा थोड़ा खुद के साथ बैठिए और ख़ुद को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको अपने ज़िंदगी का प्यार समझ आने लगेगा। और अगर आपको ज़िंदगी को समझना है, तो ऐसे इंसान के पास बैठिए जिनके पास जीवन का, उनके पास अनुभव हो। और आइए आज हम किन्हीं के जीवन के अनुभव को समझते हैं, जानते हैं। जी हाँ, आज हम सुनने वाले हैं स्मृति संवाद में डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह को, जो कि हैं प्रोफेसर भूगोल विभाग से। भेंट करता है डॉक्टर केसी सिन्हा। आइए सुने इनके जीवन के बारे में।

0: दोस्तों, ये स्मृति संवाद आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ बने रहिए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।
3: जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अपनी जीवन के सारी बातों का अनुभव एक साथ एक सार बनाकर हमसे शेयर करते हैं, अनुभव बताते हैं और हम उनको गौर से सुनते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या छूटा और क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं या और भी क्या योगदान देना चाहते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। जी हाँ, आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह साहब। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जियोग्राफी के और कहीं ना कहीं जो आपने मानव जीवन का इतिहास देखा है, ढूंढा है, पढ़ा है, समझा है, उसमें बहुत सारी बातें आप सुन सकेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और जीवन के इतिहास के बारे में आपने क्या समझा आज तक?
4: जैसा कि मेरा व्यक्तिगत इतिहास रहा है, मैं बड़ा ही एक सामान्य गरीब परिवार से रहा हूँ, जो मार्जिनल फार्मर कहते हैं जिसको, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण इलाके में हुई है, गांव का स्कूल जहाँ के लोग चट्टी बिछा के बैठा करते थे, उससे जो है फिर माध्यमिक शिक्षा हुई, फिर हाई स्कूल में आए। हाई स्कूल की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वहाँ हम लोगों को शिक्षा मिली और पढ़ाई के क्रम में कुछ अच्छा हम करते रहे जिसके कारण शिक्षकों का ध्यान हमारी ओर रहा। और जब मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें सबसे अधिक अंक मुझे स्कूल में प्राप्त हुआ। इसके बाद TNV महाविद्यालय में मेरा नामांकन हुआ। मैं चूंकि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं किया था इसलिए साइंस में एडमिशन नहीं हुआ, आर्ट्स में एडमिशन हुआ और उसमें मैंने भूगोल विषय रखा और भूगोल के प्रति अभिरुचि वहीं से जागृत हुई। इंटरमीडिएट में भूगोल में बहुत अच्छा अंक आया और तब से लगातार मेहनत करते रहे। ग्रेजुएशन में जब आए तो उसमें संयोग से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हम हुए और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया। संयोग से उस समय पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग भागलपुर विश्वविद्यालय में नहीं था, उस समय भागलपुर विश्वविद्यालय था, आज के तिथि में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, तो मुझे भागलपुर से बाहर जाना पड़ा। मैंने मगध विश्वविद्यालय बोधगया में MA में एडमिशन लिया और

0: यह मेरी एक खास उपलब्धि रही कि वहाँ मैं अव्वल आया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट मैं आया वहाँ। और उसी समय भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो लेक्चरर उस समय कहा जाता था, आज की तिथि में असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। मैं वहाँ से आया, यहाँ आवेदन किया और संयोग से मेरी नियुक्ति भागलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चर के रूप में हो गई।
1: और यही कारण है कि शिक्षा सेवा में लगातार रहते हुए आप विभाग अध्यक्ष हुए और उसके बाद आप सेवानिवृत्त हुए। एक लंबा जनरेशन आपने देखा, कई कतार आपने देखे शिक्षा अपने विद्यार्थियों की। एक शिक्षाविद होने के नाते आपने कई चीज़ों को देखा, कई लड़के लड़कियों को देखा, कई रिजल्ट्स देखे आपने, कई मानसिकता आपने देखी, भूगोल के कई रूप देखे आपने, कई तरह के अंकपत्र आपने देखे। क्या लगता है वर्तमान स्थिति क्या है? आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो भूगोल पढ़ के निकल रहे हैं और उनकी जो मन स्थिति है, उनका भौगोलिक स्तर क्या है?
0: देखिए, मेरा जो ये शैक्षणिक जीवन रहा बड़ा ही लंबा रहा, करीब 43 वर्षों तक मैंने शिक्षण का कार्य किया है। और इस बीच में अनेक प्रकार के विद्यार्थियों को हमने देखा है। प्रारंभ में जो लड़के थे बड़ा मेहनती हुआ करते थे और मेहनत के बल पर अच्छा रिजल्ट भी किया करते थे, लेकिन आज की तिथि में बच्चे उस तरह से मेहनत नहीं करते हैं जैसा कि
1: पहले हुआ करता था। सिंह साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे बीच में ही कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी, आज की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज के बच्चे बहुत शार्प हैं। आज के कम उम्र के बच्चे जो है मल्टी कॉर्पोरेट सेक्टर में 1.5-2 लाख रुपए महीने तनख्वाह पाने की हक रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन विषय वस्तु की पढ़ाई के डेफ्थ में नहीं जाते, शॉर्टकट रिजल्ट्स चाहते हैं और सब कुछ पा लेना चाहते हैं बहुत जल्दी। कैसे ये सब चीज़ ठीक होगा, कम से कम शब्द में बताइएगा।
0: यह तो ठीक ही आपने कहा कि आज के बच्चे जो है तीक्ष्ण बुद्धि के हुआ करते हैं और बड़ा ही शॉर्ट रूप में सब चीज़ पा लेना चाहते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उसे डेप्थ में जाना चाहिए। हम लोग को निश्चित रूप से उसको प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चे जो है जो टेक्स्ट बुक हुआ करते हैं, टेक्स्ट बुक का अध्ययन कम किया करते हैं और जो जनरल टाइप की किताबें होती हैं
1: बस शॉर्टकट निकल जाना चाहते हैं,
0: शॉर्टकट में निकल जाना चाहते हैं।
1: आप एक बुजुर्ग नागरिक होने के चलते एक लंबे शिक्षाविद के अनुभवों को देखते हुए वर्तमान समय में आप अभी भी जितने स्वस्थ हैं, मालिक करे आप दीर्घायु हों, एक बार दोबारा मौके मिले फिर पढ़ाने का, तो कितने साल और पढ़ाना चाहेंगे आप?
0: देखिए, मैं रिटायर तो कर गया लेकिन इसके बावजूद मैं विभाग जाता हूँ और छात्रों को पढ़ाता हूँ। मैंने रिटायरमेंट के समय भी कहा था, जिस दिन मेरी विदाई हो रही थी, कि मैं विभाग में आता रहूँगा, जब तक क्षमता रहेगी तब तक मैं जो है पढ़ाई का काज करता रहूँगा। और आज भी मैं जाता हूँ विभाग, पढ़ाई का काम करता हूँ और जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं विभाग में
1: उसमें भी शामिल,
0: हाँ, चाहे जो है प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार हो या प्री सबमिशन सेमिनार हो या PhD का भैवाभूषी एग्जामिशन हो, समय में शामिल लेता हूँ।
1: सिंह साहब, कुछ अलग हट के बात करना चाहेंगे, अंतिम सवाल है ये कि जीवन में बहुत कुछ आपने देखा सुना, परिवार में ही बहुत कुछ आपने देखा सुना, अंततः आप क्या कहना चाहेंगे? वैसी कोई बात, वैसी कोई घटना या वैसी कोई चीज जो आप पूरे लोगों को कहना चाहते हैं?
0: देखिए, मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि सफलता हासिल करने के लिए एक गोल जो है फिक्स करना चाहिए और गोल फिक्स करके उस दिशा में अगर लगातार कार्य

रहें, अनुशासित ढंग से अपना पढ़ाई का काम करते रहें, तो वह लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त

0: सब अच्छे हैं कि नहीं, सब में वो जेनेटिक गुण है कि नहीं। आपकी बातें, आपकी पत्नी की बातें, आपके संस्कार की चीजें, आपकी सिखाई हुई चीजें, सब में कुछ ना कुछ है कि नहीं।
1: देखिए, मैं जो है उम्र के हिसाब से मेरे जो बच्चे हैं उसमें से चार में से दो तीन शादीशुदा हैं, दो बच्चियों की मैंने शादी की है। सबसे बड़े जो दामाद हैं मेरे वो भी संजोग से प्रोफेसर हैं और बड़ा ही अनुशासित, बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। उनकी कई सारी किताबें अभी कम उम्र में ही प्रकाशित हो गई। उसी तरह से दूसरे जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छी तरह से काम
0: कहीं
1: ना
0: कहीं ज्ञान का भंडार पूरी तरह से आपके परिवार में है। जो भी लोग हैं आपके परिवार के सदस्य सब ज्ञानी हैं और एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि जितने लोग हैं सब शोधपूर्ण व्यक्ति हैं, शोध करने की स्थिति में, किताब लिखने की स्थिति में है। मानव जीवन का भूगोल और मानव जीवन की किताब आगे और भी अच्छी लिखी जाए, और भी सुदृढ़ हो, और भी सफलतापूर्ण हो, यही हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ज्ञान की इतनी सारी बातें की, अनुभवों की इतनी सारी बातें की, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे सिंह साहब। और आपने जो कुछ भी बातें कही हैं, हमें उम्मीद है कि जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे आपकी बातों से जरूर सहमत होंगे, खासकर वो छात्र जो शॉर्टकट पढ़ाई करते हैं, या आप एक प्रोफेसर होने के नाते, गुरु होने के नाते, आपने जो सब कुछ सीखा और अनुभव शेयर किया, जरूर उन बातों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे स्मृति संवाद। स्मृति संवाद में भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, भेंटकर्ता थे डॉक्टर केसी सिन्हा। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आइए आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटाते हैं, देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या कुछ दर्ज हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वक्त का हाल। वक्त हो चुका है 7:33 और 7:44 बस होने ही वाले हैं और सेकंड्स तो बस ऐसे पार हो जाते हैं कि पता भी नहीं लगता। और दिन है मंगलवार का और तारीख है 9 जून 2026। लीजिए 7:34 हो गए हैं और आइए 9 जून को क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था इस बारे में जानते हैं। आज ही के दिन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में कुली ओडेजो दक्षिण अफ्रीका के माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण और उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी थी। आपको बता दें कुली ओडेजो दक्षिण अफ्रीका से थी। यूगोस्लोवाकिया और नाटो के बीच कोसोवो में सर्बिया सैनिक वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। 2001 में ईरान ने मोहम्मद खातमी की पुनः जीत हुई थी और 2006 की बात करें तो म्यूनिक में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई थी। साल 2008 में केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया और आज ही के दिन साल 2008 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि आईफा पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। अब बात उन व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन निधन हो गया था। सन 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। बिरसा मुंडा आदिवासी नेता और लोक नायक थे। अगर हम बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। इतिहास में इनका नाम साहस, बलिदान और संघर्ष के लिए हमेशा हमेशा के लिए दर्ज है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में जन्मे धरती आबा ने मुंडा आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के शोषण के खिलाफ उलगुलान विद्रोह का बिगुल फूका था। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। वो बांसुरी बजाने में निपुण थे और भेड़ बकरियां चराते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग से प्राप्त करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण का कड़ा विरोध किया था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अंधविश्वास, नशाखोरी और जादू टोने से दूर रहने की सीख दी।

उन्होंने विरसाईत नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी जो केवल एक ईश्वर प्रकृति की पूजा पर आधारित था। उन्होंने नारा दिया था, अबुआ राज सेटर जाना महारानी राज टुंडू, जिसका मतलब होता है अब मुंडाओं का अर्थ स्थापित होगा, अब मुंडाओं का राज स्थापित होगा और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त होगा। उन्होंने तीर धनुष और गुरिल्ला युद्ध शैली का उपयोग करते हुए अंग्रेजी सेना और उनके समर्थकों पर कई सफल हमले किए थे। अंततः अंग्रेजी सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम की घोषणा कर दी और 3 फरवरी 1900 को उन्हें सोते समय अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की अल्पायु में 9 जून सन 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेजों के अनुसार उनकी मौत का कारण हैजा था। आदिवासी समाज उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें धरती आबा यानी कि धरती के पिता के रूप में पूजते हैं और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और अब हम बात करते हैं 1931 की। सन 1931 में हरि किशन सरहदी का निधन हो गया था। हरि किशन सरहदी भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। 1934 में दिनेश चंद्र मजुमदार का निधन हुआ, भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी। अब्बास तैयब जी भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थे, इनका निधन 1936 में हो गया था। 1990 में असद भोपाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। असद भोपाली प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। 1991 में राज खोसला का निधन हुआ। राज खोसला हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक निर्माणकर्ता और पट कथाकारों में से एक थे। 1993 में सतेन बोस का निधन हुआ, हिंदी चलचित्र निर्देशक जिन्होंने चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। 1994 में इस दुनिया को अलविदा कह गए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भारतीय योगाचार्य थे। उनका बचपन का नाम था धीरचंद्र चौधरी और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी योगा सिखाया था। 1995 में निधन हुआ एनजी रंगा का। एनजी रंगा भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और प्रसिद्ध किसान नेता माने जाते हैं। मकबूल फिदा हुसैन का निधन हुआ 2011 में। मकबूल फिदा हुसैन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन। 1959 में डॉक्टर किरण मार्टिन का जन्म हुआ, बच्चों के चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चौधरी दिगंबर सिंह 1913 में इनका जन्म हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता हैं। किरण बेदी 1949 में जन्म हुआ था, किरण बेदी का जो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत सारी लड़कियों की प्रेरणा। अमीषा पटेल हिंदी चलचित्र अभिनेत्री का जन्म 1975 में हुआ था। 1981 में अनुष्का शंकर का जन्म हुआ था। अगर हम अनुष्का शंकर की बात करें तो अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की पुत्री हैं और उन्होंने भी अपना करियर सितार वादक में बनाया और बहुत सारे गीतों को लिखा गाया और अभिनय भी किया। सोनम कपूर का जन्म आज के दिन 1985 में हुआ था, हिंदी चलचित्र अभिनेत्री। अनिल मीना भाई नायक भारतीय उद्योगपति और भारतीय इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, इनका जन्म 1942 में हुआ था। 1931 में नंदिनी सत्यपथी का जन्म हुआ था। नंदिनी सत्यपथी उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री और लेखिका हैं। 1912 में वसंत देसाई का जन्म हुआ। वसंत देसाई भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 1909 में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म हुआ। लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1933 में अजीत शंकर चौधरी का जन्म हुआ, सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, स्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार और सहृदय समीक्षक थे। और अभी मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन निधन हो गया था असद भोपाली का। असद भोपाली जो कि प्रसिद्ध गीतकार थे, शायर थे, इनके नाम पर अगर हम बात करें तो इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट, और ये गाने के लिए मिला था इन्हें दिल दीवाना, मैंने प्यार किया फिल्म से, और इस फिल्म के लगभग सारे ही गाने

थे, कबूतर जा जा, आते जाते हंसते गाते, मेरे रंग में रंगने वाली, तुमसे मिलने की तमन्ना है। इन गीतों को असद भोपाली ने ही लिखा था। आइए उन्हीं में से गीत को सुनते हैं और गीत के उस पार मिलते हैं। हमारे ये कार्यक्रम जारी रहेगा, बहुत सी बातें, बहुत सारी जानकारी आपका इंतजार कर रही है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
2: Nexa.
4: सुनो ना,
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है, हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001

रहे तो जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। जीवन में लगातार दुख बना रहे तो भी वही होगा। हंसना रोना खुशी और गम दोनों आते जाते रहते हैं, और फिलहाल हम आने जाने वाले पल में थोड़े से पल को रोक कर देखते हैं कि आज के दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या है। आज यानी कि 9 जून को समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती है, आइए जानते हैं। SBI की 28 राज्यों पर स्टडी, अपराध 1% घटने से विकास दर 0.133 तक बढ़ी, जहां CCTV ज्यादा वहां अपराध कम। प्रति व्यक्ति सुरक्षा खर्च 1% बढ़ा तो अपराध दर 0.36% घटी। OSM विवाद, सबसे ज्यादा आवेदन फिजिक्स के लिए आए, CBSE आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जांच करवा रहे। CBSE ने हाईकोर्ट में कहा शिक्षा का राजनीतिकरण न हो, वकील बोले नाबालिग छात्रों का पक्ष रख रहे हैं। 2.5 दिन में खेल खत्म, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया। टेस्ट में हमारी सबसे बड़ी जीत, मानव 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत के खिलाफ किसी भी टेस्ट टीम का सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक, मानसून सत्र के लिए साझा रणनीति बनी। इंडिया गठबंधन SIR पर CJI को पत्र लिखेगा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा। मौसम वाणी, 13वें राज्य में मानसून मुंबई से 150 किलोमीटर ही दूर। मानसून 5वें दिन तेलंगाना तक पहुंचा, मुंबई में आज या कल एंट्री के आसार। एंथ्रोपिक ने AI डेवलपमेंट धीमा करने की सलाह से छेड़ी नई बहस, AI खुद नए मॉडल बनाने की दहलीज पर वैज्ञानिकों की चिंता, कहीं मशीनों के फैसले पर इंसानी लगाम न छूट जाए। संकट, बेरूत पर हमले से फिर भड़का संघर्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दखल से रुका। मिसाइल हमले और 8 घंटे की भीषण जंग के बाद ईरान और इजराइल के बीच फिर सीज फायर। बिहार कैबिनेट के फैसले, पुरानी फसल सहायता योजना खत्म, अगली रबी से योजना लागू। जमीन की नापी महंगी, फसल पर लागत के बराबर मिलेगा मुआवजा। संकट गहराया, बंगाल विधानसभा के बाद अब संसद तक बगावत, ममता को झटका। अब TMC के 20 सांसदों ने NDA को समर्थन दे दिया। केंद्र का तर्क, गरीब परिवार इतना ही इस्तेमाल करते हैं, मई 2016 में शुरू हुई थी योजना। उज्ज्वला योजना में बदलाव, अब साल में मिलेंगे सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर। दाम बढ़ने पर सफाई, रोज का सिर्फ 1 रुपया बढ़ा। शहीद सिपाही प्रवीण प्रभाकर समेत 51 को वीरता पुरस्कार। शहीद बेटे को कृति चक्र, राष्ट्रपति मुर्मू के गले लगकर फफक पड़ी मां। अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसके तहत H-1B वीजा आवेदनों पर 1 लाख करीब 86 लाख रुपए की फीस लगाई गई थी। भागलपुर की तरफ से पार करने में लग रहे 1 घंटे, जानवी चौक से भागलपुर आने में लग रहे 2 घंटे, बेली ब्रिज तैयार, दूसरे ही दिन लगा भीषण जाम। विक्रमशिला समांतर सेतु का 50% काम पूरा, जुलाई तक होंगे 2 और 4 लेन बाईपास। दिल्ली की एजेंसी को जिम्मा, 7 करोड़ होंगे खर्च, लगेगा बायोगैस प्लांट। कनकैथी में कूड़ा पहाड़, जल्द ही साफ होगा। भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नवंबर 2023 से चल रहा, मंत्री के निर्देश के बाद भी फ्लाईओवर निर्माण में तेजी नहीं। कॉलेजों का समर्थ पोर्टल पर नामांकन अपडेट नहीं, 12 जून से होगी जिला शतरंज प्रतियोगिता। महिला अंडर 19 में क्रिकेट लीग की बात करें तो पहले दिन टीम एफ ने एच को हराया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से संडिस कंपाउंड में महिला अंडर 19 क्रिकेट शुरू, मधुबनी की प्रतिभा सैनी बनी प्लेयर ऑफ द मैच। श्रावणी मेले में कांवरियों को 76.65 किलोमीटर कच्चा पथ मिलेगा दुरुस्त। कैबिनेट के फैसले, बिहार कैबिनेट के फैसले, जी रामजी योजना 1 जुलाई से लागू, अब 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। सेंसेक्स 719 अंक गिरा, फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टरों के शेयर टूटे। ईरान जंग में निफ्टी 7% टूटा पर छोटे शेयरों में रैली। चांदी की कीमत 12,608, सोने की कीमत 2,749 रुपए घटी। ये थे आज के समाचार।

चित्रों की सुर्खियां। अब वक्त का हाल कह रहा है कि मुझे लेनी चाहिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ ख़ास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान, और साथ ही ध्यान रखें कि आप जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आसपास साफ़ सफाई रखेंगे तो ना केवल आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बल्कि पूरा समाज भी स्वस्थ रहेगा और समाज की तस्वीर भी बदलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें और साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। कहीं भी कुछ खाते पीते हैं तो उसके रैपर को या फिर बोतल आप सड़क पर फेंक देते हैं, ये करने से बचें। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इन कचरों को ना फैलाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, ये समय होता है दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा का। खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप पटना केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा

0: के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब

0: 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने

0: वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and

निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और

0: सिर्फ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैन अलावा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुजराए ज़राअत, आला अहदेदार और माहरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। जरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, जरी इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, जरी तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को जरात के वजीरों के माबेन खसूसी मुजाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। जरी इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
3: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
4: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
3: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात,

0: और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमेरिका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। विफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अल-अक़वामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि ज़रई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए एशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मुकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी।

0: भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शुगुप्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है, जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियां देखी हैं जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलावामी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड बोर्ड बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: मेरी वेव 483 दशमलव 1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
1: ग्रामीण विकास विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है, इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगी। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी फसल 2026-27 सत्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: इधर कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के शुल्क को 2 गुना कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा न्यूनतम 2,000 रुपए और अधिकतम 8,000 रुपए लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 4,000 रुपए लगेंगे। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की रूपरेखा विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। गौरतलब है कि प्रदेश के 211 डिग्री महाविद्यालयों में इस वर्ष 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में भी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा में दलों के संख्या बल के अनुसार सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 जून को नाम वापसी के दिन सभी प्रत्याशियों की जीत की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वर्तमान विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए

25-25 मत की आवश्यकता है। एनडीए के पास 201 मत हैं, जिससे उनके 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, जबकि महागठबंधन के पास 36 मत उपलब्ध हैं, जिससे एक सीट पर उसकी जीत निश्चित है। एक अन्य सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें एनडीए की जीत तय है। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। राज्य में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश सीएल के साथ साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश एसएल के आवेदन पर अधिकारी एक दिन में निर्णय लेंगे। अन्य अवकाशों के आवेदन पर 7 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डीएनबी की 2 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 मेडिकल स्नातक के छात्र यहां दाखिला लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने बताया कि दिसंबर माह से इस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मन खनुजा ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित सीमा लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री भागवत ने बौद्धिक सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीवान और गोपालगंज जिले के 118 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। इन शिक्षकों में सीवान के 83 और गोपालगंज के 35 शिक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों के नियोजन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ

0: किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.7, कैमूर के भभुआ का 42.4, गया जी का 41.4 और पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
3: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
2: सीतामढ़ी जिले के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला में कल देर रात एक पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कटरिया पिकेट के पास पुलिस ने छापेमारी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 26 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली स्थित HPCL बायोफ्यूएल लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषद की ओर से गन्ना ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पटना जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में 6 दोषियों को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने पर राजद नेता शिवचंद्र ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, इस बार वायुसेना और डाक विभाग पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। दैनिक भास्कर की खास खबर है, CBSE आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जचवा रहे। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, तीसरे दिन ही अफगानिस्तान का सरेंडर, पारी और 300 रन से गंवाया मैच। आज अखबार की सुर्खी है, सासा मूसा शुगर मिल फिर से चालू होगी। और अब अंत

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जीरामजी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण अब से थोड़ी ही देर में।

मुश्किल में। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम

नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम के आरंभ में अलका याग्निक को सुनिए सरफरोश फिल्म के इस गीत के लिए। गीतकार समीर अंजान, संगीतकार जतिन ललित।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: श्रोताओं, अगला गीत सुनिए रेखा भारद्वाज और जावेद अली की मिलीजुली आवाजों में। फिल्म है रावण, संगीत तैयार किया है AR रहमान ने, बोल हैं गुलजार के और शुरुआत के कुछ बोल हैं बुल्ले शाह के गीतों से।

आइए अब सुने दिल का रिश्ता फिल्म का ये गाना, गीतकार समीर अंजान का लिखा। आवाजें दी है अलका याग्निक ने, संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: The future feels effortless with the Grand Vitara. Because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
3: Nexa.
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। अल्फाज थे जुनैद वसी के, संगीतकार चिरंतन भट्ट। फिल्म 1920 एविल रिटर्न्स। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

0: कौन सा उम्मीद भाई?
1: और वजीर आजम का नया 15 नुकाती प्रोग्राम अकलियतों के लिए वही किरण है जो अंधेरे में रोशनी लेकर आता है।

0: स्कीमों का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम तालीम हासिल करें,
1: तालीम हासिल करें,
0: मालूमात हासिल करें
1: जी, जी, जी।
0: कि ये फायदा हम कैसे ले सकते हैं।
1: जी, जी,
0: सरकार
1: जी।
0: तो देने के लिए तैयार है और दे भी रही है, लेकिन हमें भी जागना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, घर से कदम बाहर निकालना पड़ेगा और वहां तक रसाई हासिल करके अपने लिए जो हुकूक दिए गए उसे हासिल करना होगा। लेकिन सामीन याद रखिए, जब अकलियतें आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: और जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, यही है हमारा सुनहरा मुस्तकबिल, यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सच्चा रूप।
1: क्या बात है,
0: यकीनन ये एक मुस्बत और तामीरी कदम है, मगर उसकी कामयाबी का दारो मदार फैज भाई सिर्फ हुकूमत पर नहीं,
1: अच्छा,
0: बल्कि समाज अकलियती बरादरी पर भी है।
1: बेशक बेशक,
0: अगर हम सब मिलकर उन स्कीमों का सही फायदा उठाएं
1: जी
0: और यकजहती के साथ आगे बढ़ें
1: जी,
0: तो हमारा मुल्क मजीद तरक्की की राहों पर गामजन होगा।
1: बेशक बेशक, अकलियतों की फलाह व बहबूद के लिए वजीर आजम के नए 15 नुकाती प्रोग्राम पर यह गुफ्तगू जो हम लोगों ने पेश कर रहे हैं जावेद भाई, हमें इस हकीकत का एहसास दिलाती है ये प्रोग्राम, 15 नुकाती प्रोग्राम, कि तरक्की सिर्फ माशी और समाजी शोबों तक महदूद नहीं होती है, बल्कि तालीम, तहजीब, जुबान और सकाफत की आबियारी भी इसका आम हिस्सा
0: है। बिल्कुल,
1: किसी कौम की शनाख्त उसकी जुबान और अदब से भी वाबिस्ता होती है, और उर्दू जबान हमारी मुश्तरका तहजीबी विरासत का एक रोशन बाब है।
0: रोशन बाब है,
1: जी जी जी।
0: तो फैज भाई आपका इशारा कुछ और ही।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: तो इसी मुनासबत से जो उर्दू जबान हमारी तहजीबी विरासत का एक रोशन बाब है,
1: जी जी जी,
0: तो इसी मुनासबत से अब हम रुख करते हैं एक अहम और मालूमाती मकाले की तरफ।
1: अच्छा अच्छा,
0: जिसका उनवान है उर्दू जुबान के फरोग में बिहार का किरदार।
1: अच्छा, और मकालानिगार,
0: और मकालानिगार है जनाब शादाब हसन। तो आइए सामिन सुनते हैं ये मकाला।
2: अल्फाज जब तहजीब का लिबास पहन लेती है तो जुबान बन जाती है, और जुबान जब तारीख रकम करती है तो उसके पसे मंदर में बेशुमार शख्सियात और महफिलों की खिदमात पोशीदा होती हैं। आज की गुफ्तगू इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। जुबान महज इधार ख्याल का वसीला नहीं होती, बल्कि तहजीब, सकाफत, तारीख और इज्तिमाई शऊर की अमीन भी होती है। दुनिया की हर जिंदा जुबान अपने बोलने वालों की शनाख्त और उनके फिक्री वर्से की नुमाइंदगी करती है। उर्दू भी ऐसी ही एक शीरी, दिलनशी और तहजीब आशना जुबान है, जिसने बर सगीर की गंगा जमनी तहजीब को अपने दामन में सिमो रखा है। उर्दू की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इस जुबान की नशोनुमा और तरवीज में मुख्तलिफ इलाकों ने अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन रियासत बिहार को इस हवाले से एक मुनफरिद और मुमताज़ मकाम हासिल है। बिहार वो सरजमीन है जहाँ इल्म अदब की खुशबू सदियों से फैलती रही है। यही वो खित्ता है जिसने उर्दू जुबान को ऐसे अहले कलम, शुआरा, उदबा, नाकिदीन, मुहक्किकीन और सहाफ़ी अता किए, जिन्होंने उर्दू अदब के उफुक पर रोशन सितारों की तरह अपनी ताबानी बिखेरी। अगर उर्दू जुबान के फरोग की तारीख लिखी जाए तो बिहार का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल तसव्वुर होगा। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद हसन लिखते हैं, बिहार उर्दू जबान व अदब का ऐसा मरकज रहा है जिसने हर दौर में उर्दू को फिक्री और अदबी तवानाई फराहम की। यही वजह है कि उर्दू की तारीख में बिहार का जिक्र महज एक सूबे के तौर पर नहीं, बल्कि एक अदबी दबिस्तान और इल्मी रिवायत के तौर पर किया जाता है। डॉक्टर ज्ञान चंद जैन अपनी किताब तारीख उर्दू अदब में लिखते हैं कि उर्दू जुबान की तश्कील और इर्तिका में शुमाली हिंद के मुख्तलिफ इलाकों ने हिस्सा लिया, जिसमें बिहार भी शामिल है। मुगलिया दौर में फारसी के साथ उर्दू जुबान का इस्तेमाल बढ़ा और बिहार के इल्मी मराकज में उर्दू को कबूलियत हासिल होने लगी। 19वीं सदी में जब उर्दू जुबान ने अदबी और सहाफती सतह पर तरक्की की तो बिहार के अहले कलम ने भी इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। पटना जो माजी में अजीमाबाद के नाम से मारूफ था, उर्दू अदब का एक अहम मरकज बन गया। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर अब्दुल हक ने अजीमाबाद को उर्दू अदब का एक अहम मरकज करार देते हुए लिखा है, अजीमाबाद ने उर्दू शायरी और नसर को ऐसे अहले कलम अता किए जिन्होंने उर्दू जुबान को नई जिहतें फराहम की। 19वीं और 20वीं सदी में अजीमाबाद में अदबी नशिस्तों, मुशायरों और इल्मी मबाहिस का इनेकाद होता रहा, जिसने उर्दू जुबान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। बिहार के शुरा में सबसे नुमाया नाम शाद अजीमाबादी का है। उनका शुमार उर्दू गजल के बड़े शुरा में होता है। शाद अजीमाबादी ने उर्दू गजल में फिक्री गहराई, जुबान की सलासत और जज्बात की पागीजगी पैदा की। उनके शागिर्द

0: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेईन को कलाम शायर के तहत जनाब मोहम्मद नौशाद साहब का कलाम सुनवा रहे थे।
1: बिल्कुल
0: अच्छे अच्छे अशार उन्होंने सुनाया
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: और उम्मीद है कि उनका कलाम सामेईन के दिलों को ताजगी और एहसासात को नई जहत अता ज़रूर किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फैज भाई, उनकी जादू भरी आवाज़,
0: हाँ आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी और कलाम भी अच्छे थे।
1: समर भी खड़ा है उसकी गली में,
0: जी
1: क्या बात है,
0: कहाँ से वो आया कहाँ जा रहा था,
1: जा रहा था, क्या बात,
0: इस तरीके के अशआर उन्होंने सुनाया, जो वो आके रुका है तुम्हारी गली में,
1: तुम्हारी गली में,
0: तो अच्छे अच्छे अशआर उन्होंने सुनाए।
1: इंसान को, हम सबके जहन दिल को काफी मुतासिर किया।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उनके कलाम की खूबी और भी थी फैज
0: जी जी जी
1: कि आम फहम अंदाज में,
0: जी हाँ जी,
1: कहने का फन,
0: जी जी जी जी, आम फहम अंदाज में अच्छे ख्यालात को उन्होंने लफ्जी जामा, मैंने शेरी जामा पहनाया। जी हाँ जी,
1: बिल्कुल। और फैज भाई देखिए, अब कलाम शायर के तहत जनाब मोहम्मद नौशाद साहब का कलाम सामीन को सुनवाया।
0: जी जी जी जी,
1: और अब इसी अदबी फजा को बरकरार रखते हुए,
0: जी हाँ जी हाँ,
1: आइए चलते हैं नसर की हसीन दुनिया की तरफ।
0: अच्छा अच्छा,
1: जहाँ जिंदगी के नशे व फराज एक कहानी की सूरत में हमारे सामने आती है।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा,
1: फैज भाई
0: जी हाँ जी हाँ, नसर की, हाँ,
1: एक अफसाना,
0: नसर की दुनिया में चलते हैं,
1: एक अफसाना सुनवाते हैं। अफसाने का उनवान है
0: जी
1: धुंधली तस्वीर,
0: और अफसाना निगार,
1: और अफसाना निगार है में मोहतरमा नगमा बेगम। तो आइए सामिन सुनते हैं ये अफसाना।
2: दो दिन और तीन रातें लगातार जागने के बाद आज वो तीसरी रात थी जब वो सोने के इरादे से अपने कमरे में आई थी। हद से ज्यादा थकन के बावजूद भी इसका मुंतशिर जहन इसे आराम की इजाजत नहीं दे रहा था। इसके अंदर सोच का एक तलातुम बपा था। इसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। शादी को पूरे एक साल हो गए लेकिन जिंदगी ठहरी हुई लग रही थी, जैसे जिंदगी के तपते हुए सेहरा।

अहमद के चेहरे पर उदासी छा गई। नाजिया ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, लेकिन आप कुछ भी कहें, मेरी वजह से आपके घर वाले दूर हो गए, इसके लिए मैं कसूरवार हूँ। अहमद उसे रोकते हुए कहते, तुम्हें कसूरवार होने की कोई जरूरत नहीं, तुम जबरदस्ती तो आई नहीं मेरी जिंदगी में। मैंने तुमसे मोहब्बत किया है, शादी की है, इस वजह से अगर कोई मेरी नाजिया को अपना नहीं मानते तो वो रिश्तेदार मेरे लिए बेमाने हैं। अहमद का ये अपनापन और प्यार नाजिया को बेकरार कर गया। वो धीरे धीरे अहमद की बाहों में सिमट गई। रोशनी खुद बखुद गुल हो गई। पलंग के साइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम में नाजिया और अहमद की तस्वीर गुप अंधेरे में भी मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। नाजिया नींद से बेदार होते ही बिस्तर पर ना देखकर किचन की तरफ भागी। सुबह की चाय बनाने में लेट हो गई। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, अहमद ने शरारत भरे लहजे में कहा। डार्लिंग तुम सारा काम अकेले रोज करती हो, मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है, घर के काम में तुम्हारा हाथ बटा दूं। मुझे तो ऑफिस से हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, मगर तुम्हें तो सातों दिन घर की ड्यूटी करनी पड़ती है। बस भी कीजिए, हुजूर के कामों की जिम्मेदारी हम औरतों का नसीब है। अच्छा तो इसी बात पर आपके साथ शॉपिंग करने चलेंगे और बाहर खाना भी खाएंगे। इसी दरमियान नाजिया झट से बोल पड़ी, नहीं बाबा नहीं, बेकार में रुपये खर्च हो जाएंगे। खाने में आपका पसंदीदा चिकन बिरयानी बनाने का इरादा है, वो भी मैं बनाने जा रही हूँ, और साथ में शाही टुकड़ा भी। अहमद शोखी करते हुए कहते, तो फिर आज की शाम नाजिया के नाम। बेडरूम में लगी दोनों की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। ऑफिस जाने से पहले नाजिया पास आकर बोली, सुन रहे हैं, आज जेबा अपने बाजू वाली यानी मुनीर अख्तर मुझे बाजार चलने को कह रही थी, मैं उनके साथ चली जाऊं? अहमद आधी बात पर ही बोल पड़ा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा है, तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी। ये तो मैं कब से कह रहा था, ये लो रुपये, कुछ अपने लिए भी ले लेना। नाजिया मुस्कुरा कर कहती, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप आज जल्दी ही आ गए, बहुत देर से खड़े थे मोहतरम। बस दो मिनट पहले ही आया हूँ, नाजिया ने ताला खोलते हुए कहा। आज दूसरी मंजिल वाली के यहाँ प्रोग्राम था, जिद करके ले गई थी। अहमद रोमानी अंदाज में कहा, अरे वाह बहुत अच्छा लगा, इसी खुशी में चलो आज का डिनर कहीं बाहर करते हैं। नाजिया बीच में ही बोल पड़ी, आप चाय पी लीजिए, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, खीर तो बनाकर ही गई थी। खिड़की के जाले से चांद की रोशनी अपना जलवा बिखेर रही थी। चांदनी पूरे शबाब पर थी, उसकी रोशनी में गजब का सुकून था। फोटो फ्रेम की तस्वीर पर चांद की रोशनी झिलमिलाती रही। नाजिया लंच पैक करते हुए बोली, सुनिए ना, मैं आज रूही के साथ मीना बाजार जा रही हूँ, कुछ रुपये दीजिएगा, सुना है इस बाजार में बहुत यूनिक सामान मिलता है। अहमद ने तंजिया लहजे में कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही घूमने लगी हो, घर पर भी ज़रा ध्यान दिया करो और हो सके तो थोड़ा खर्च पर कंट्रोल करो। ठीक है बाबा, देखते हैं। नाजिया तैयार होकर जाने लगी तो फोटो फ्रेम पर धूल की परत जम गई थी। आजकल दूसरे कामों की मसरूफियत की वजह से साफ करना भूल ही जाती हूँ, इसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई कपड़ा मिल जाए तो साफ कर दे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसने मन ही मन में कहा, चलो कल साफ कर दूंगी, जाने के लिए कॉल भी तो बार बार आ रहा है। रात के खाने पर अहमद ने तेवर बदल कर कहा, ये क्या सिर्फ खिचड़ी बनाई हो? नाजिया मुस्कुराते हुए कहती, आज मैं बहुत थक गई थी, बड़ी मुश्किल से बनाया है। रात देर तक अहमद नाजिया के खर्राटे सुनता रहा। सुबह किचन से नाजिया ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रहे हैं, आजकल कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, एसी लेते तो अच्छा रहता, बाजू में तो सभी के घर में एसी है, सिर्फ मेरे ही घर में कूलर है, सोसाइटी में रहते हैं, मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, फिलहाल अभी तो पैसे नहीं है, बाद में देखा जाएगा। एक ही सांस में अहमद अपना जवाब पूरा कर दिया। क्यों, आप तो कह रहे थे कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। अहमद अपना तेवर बदलते हुए कहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। इतना सुनना था कि नाजिया तीखे लहजा में

0: बोल उठी, यानी आप अपने घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और मुझे खबर भी नहीं। लेकिन नाजिया, लेकिन क्या? एक बहुत लंबी बहस और कड़वी बहस से नाजिया और अहमद के दरमियान फासला बन गया और नाजिया का मासूम दिल सर्द हो गया। उफ, मर्द का भी कैसा मिजाज होता है, जब तक औरत इसकी मोहब्बत में रंग नहीं जाती तब तक इसके कदमों पर झुके रहते हैं, और जब इसकी मोहब्बत यकीन में बदल जाती है तो इसे अपने कदमों तले दबाए रखने की मर्दानगी जन्म लेती है। मर्द जात में देर तक नाजिया अपने दिल की सिसकियां सुनती रही, ये तो पहली चोट है। पता नहीं अहमद के कितने मिजाज अभी देखने बाकी हैं। पिछले दिनों के जख्म पर आंसुओं के मरहम लगा लगा कर काफ़ी हद तक उन्हें भर लिया था। फिर कई दिनों से घर का माहौल तनाव वाला था। नाजिया खुद से सुलह करके आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह घर को सुकून के लायक बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन अहमद इस माहौल से दूर हो चुका था जिसका उसे गुमान भी न था। जबकि अहमद की खुशी में ही नाजिया की हर खुशी थी, पर यह क्या, अब तो अहमद हर बात पर नुक्ता निकालते रहते हैं। इसी दरमियान नाजिया ने अहमद को आवाज़ दी, सुनिए प्लीज़ ज़रा चावल का डब्बा उतार दीजिए ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है। दवा लगे हाथ पर पट्टी बांधने के लिए नाजिया ने इल्तिजा की। अहमद तनक कर कहते, तुम्हें तो आजकल जब देखो तब कुछ न कुछ होता ही रहता है, मत बनाओ खाना, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। ये बात सुनकर नाजिया की आंखों में अंधेरा छा गया। अहमद तो बाहर में खा लेंगे, लेकिन नाजिया कहाँ जाए? अहमद के ऑफिस जाने के बाद दवा लेकर पलंग पर लेटी तो शायद टेबल पर रखी फोटो फ्रेम पर नजर पड़ी। जालीदार नक्काशी के ऊपर धूल ने अपना कब्जा जमा लिया था और साथ ही साथ मकड़ी ने भी घर बना ली थी। जब रिश्ते में दरार पैदा होती है तो तस्वीरों पर भी धूल की परतें जमने लगती है। खिड़की से आती पूरी चांद की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। पलंग पर नाजिया और अहमद एक दूसरे से मुंह फेर कर सो रहे थे। पलंग के साइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम में अहमद और नाजिया की मुस्कुराती तस्वीर धुंधली हो चुकी थी।
1: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेईन को एक अफसाना सुनवा रहे थे।
2: उनवान क्या था?
1: उनवान था धुंधली तस्वीर, और धुंधली तस्वीर जो उनवान है जावेद भाई, उन्होंने वाकई उसकी मंजरकशी और धुंधली तस्वीर का इंकिशाफ बड़ी खूबसूरती से किया है जी।
2: और समाज में जो धुंधली तस्वीर है,
1: जी हाँ, और अफसाना निगार थी मोहतरमा नगमा बेगम जी।
2: तो फैज भाई देखिए, अब इसी फिक्री सफर को आगे बढ़ाते
1: हैं। बेशक बेशक,
2: सामीन को लिए चलते हैं एक इंशाइया के माहौल में।
1: अच्छा अच्छा,
2: जिसमें जिंदगी के लिए रहनुमाई, फिक्र और नसीहत के कई रोशन पहलू
1: पोशीदा है। बेशक बेशक,
2: तो सामीन को सुनवाते हैं तंज व मजाक का रंग लिए हुए एक इंशाइया जिसका उन्वान है तोल मोल।
1: क्या बात है।
2: और इंशाइया निगार हैं डॉक्टर आफताब अहमद। तो आइए सामीन सुनते हैं ये नशर करदा इंशाइया।
3: ज़िंदगी हमारे नज़दीक न मुअम्मा है न दीवाने का ख्वाब, हमने ज़िंदगी को एक खेल समझा है। ज़िंदगी अपनी तमाम तर आजमाइशों के बावजूद हमें बेहद अजीज़ है। बात दरअसल यह है कि खेल कूद से हमें एक अजली रग़बत है। आँख मचोली के खेल ने हम पे कुछ ऐसा जादू किया कि हम तमाम उम्र उसके असीर होकर रह गए। खेल और ज़िंदगी में चैलेंज कदर मुश्तरक है। मेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत एक ख़राबी की कि मिसदाक चैलेंज कबूल करना हमारी फितरत है। शिकस्त तो फतह का मामला तो मुकद्दर की बात है। बचपन में हमें जवानी के हाथों सौंप दिया, मगर खेल कूद से हमारी दिलचस्पी बदस्तूर कायम रही। फरमाई शामिल हाल हो तो फिर क्या गम है, हम पे जवानी आई तो सही, मगर उस शायराना खरोश से बेनियाज जो नौजवानों को आतिश इश्क में बेखतर कूद पड़ने के लिए वरगलाती है। जवानी के पहले बाउंसर पर हम डक कर गए और ये बला हमारे सर के ऊपर से गुजर गई। इस टर्निंग पॉइंट पर हमने मैदान इश्क पर खेल के मैदान को तरजीह देकर सारे ज़माने की दुश्मनी मोल ले ली। वालदैन ने नाकारा समझकर तकरीबन सब्र कर लिया। बुज़ुर्गों की आँखों के हम कांटा बन गए। अहबाब हमारे हाल पर तरस खाने लगे, खैरख्वाह हमें समझाने की नाकाम कोशिश करते रहे, बदख्वाहों से ताने मिले, सारी

आप सुन रहे थे बज़्मे उर्दू। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आइए सुने लोकगीत जय नारायण शर्मा के स्वर में, आरंभ में देवी गीत।

छोरी छोरी राउरे दुवरिया हम जाई कहाँ ए बाबा।

0: लोकगीत में कलाकार थे जय नारायण शर्मा। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और

0: सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
3: क्रेश,
4: क्रेश
2: और बाल्टी बॉय
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

मिड वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। पहला गाना हमने फिल्म धड़क 2 से लिया है। दर्शन रावल एवं जोनीता गांधी की युगल आवाजें हैं। गीत रचना गुरप्रीत सेन की है और संगीत तैयार किया है रोचक कोहली ने। सुनिए ये गीत।

अगला गाना फिल्म हक से हमने लिया है, अरमान खान एवं विशाल मिश्रा की युगलाबाजी हैं। गीत रचना कौशल किशोर की और संगीत तैयार किया है विशाल मिश्रा ने।

अगला गाना हमने फिल्म स्त्री टू से लिया है, विशाल मिश्रा एवं सचिन जिगर ने इसे गाया है। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत तैयार किया है सचिन जिगर ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म में संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

अब सुनते हैं फिल्म आजाद का एक नगमा। अरिजीत सिंह एवं हंसिका पारिक ने इसे गाया है। गीतकार स्वानंद किरकिरे, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: अलका याग्निक एवं उदित नारायण को अब आइए सुनते हैं फिल्म नाम में। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं नीति मोहन एवं पेपॉन के युगल स्वर में फिल्म तुमको मेरी कसम का एक नगमा। गीत के बोल श्वेता बोहरा की हैं और संगीत तैयार किया है प्रतीक वालिया ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

फिल्म संगीत के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ विशाल आनंद। कीजिए स्वीकार हमारा अभिवादन। ये पहला गाना हमने फिल्म खानदान से लिया है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत तैयार किया है रवि ने।

इस जीवन का सार तुमसे है, ये सारा संसार तुमसे है, ये तन ये मन ये जीवन तेरे बिना कुछ भी नहीं है, ये सारा घर बार और मेरी कश्ती का पतवार तुमसे है।

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म मन मंदिर में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तेरी आंखों ने क्या जादू किया है, चैन और सुकून सब ले लिया है, अब हर तरफ तेरी नजर है, खुदा जाने किसका असर है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: किशोर कुमार को अब आइए सुनते हैं फिल्म जूली में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने।

दिल की लगी को दिल ही जाने, दिल पर किसी का जोर नहीं, दिल की बातें दिल ही समझे, दिल का सगा कोई और नहीं, दिल की ख्वाहिश दिल के अरमा, दिल की चाहत दिल ही है, दिल का सुकून दिल की हसरत, दिल की राहत दिल ही है।

किशोर कुमार एवं सपना मुखर्जी को अब आइए सुनते हैं फिल्म जाबाज में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथ तेरा साथ मेरा एक सफर है जिंदगी का, मैं तुम्हारी जुस्तजू हूं, तू हम सफर मेरी जिंदगी का। रहे हमारा साथ जब तक ये धरती चांद सितारे हैं, जिस्म में है सांसें जब तक आंखों में ये नजारे हैं।

ये था कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी के ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने को हैं। प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम नारी लोक।

0: बहनों सेलिना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों हमेशा की तरह हम ढेर सारी बातें करेंगे, साथ ही सुनेंगे कार्यक्रम याद है जरा जरा, गीतों का भी आनंद लेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: नारी लोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है बहनों। और बहनों आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा भारत जो आर्थिक, सामाजिक और तकनीक रूप से स्वयं पर निर्भर हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संसाधनों और क्षमताओं के आधार पर कर सके। और आज जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, राजनीति जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज अधिक से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। महिला उद्यमी आज देश में नए व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। वो नवाचार और तकनीक का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रही हैं। मैंने कई महिलाएं ऑनलाइन व्यवसाय, ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रही है। और बहनों आपको पता है महिलाएं केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और जागरूक बनाती है। महिला सशक्तिकरण से समाज में समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है।

0: जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करते हैं। हालांकि महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, फिर भी उन्हें लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, सीमित संसाधन और सामाजिक रूढ़ियों जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बहनों, सरकार और समाज दोनों को प्रयास करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। जब महिलाएं शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगी, तभी देश वास्तव में आत्मनिर्भर बन सकेगा। और बहनों, इसलिए महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। महिलाओं की शक्ति और प्रतिभा ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और बहनों, अब देते हैं अपनी इस चर्चा को विराम। और आपको बताते चलूं बहनों कि आकाशवाणी भागलपुर के 90 वर्ष पूरे होने पर हम अपने कार्यक्रम नारी लोक में मुझे याद है जरा जरा के तहत आकाशवाणी में लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान करने और अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में निर्माण संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही अपने अनुभव, समर्पण और रचनात्मक दृष्टिकोण से रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में योगदान देने वाले सेवानिवृत्त महानुभव के जीवन, यादों, अनुभव और विचारों को जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो इसी के तहत मुझे याद है जरा जरा में आज हम सुनेंगे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता मुझे याद है जरा जरा। भेंट वार्ताकार है नौमी शांति हेमरम और उनसे बातचीत कर रही है रागनी रोशन।
1: श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा करने को है। इसी श्रृंखला में विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा के अंतर्गत हमने अपने स्टूडियो में नौमी शांति हेमरम जी को आमंत्रित किया है, जो आकाशवाणी भागलपुर की पूर्व कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ये आकाशवाणी के और कई पदों पर कार्यरत रहीं। आज हम इनसे आकाशवाणी से जुड़े कार्यकाल के अनुभवों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, आपने हमें याद किया, आकाशवाणी ने हमें याद किया
1: जी।
2: और इस क्रम में हमें इस बात के लिए आमंत्रित किया कि हमें क्या कुछ याद है
1: जी।
2: तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आने के बाद। और
1: सबसे पहले आप आकाशवाणी से, रेडियो से कैसे जुड़ी?
2: अच्छा, रेडियो से हमारा जुड़ाव बहुत पहले से ही रहा है। जब मैं विद्यार्थी थी
1: जी,
2: उसी समय से यहाँ हमारा जुड़ाव हुआ। युवाणी विभाग, जो युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम होता है
1: जी, जी,
2: उसमें हमने पहले एक परिचर्चा में प्रतिभागी के रूप में हमने भाग लिया, शामिल हुए। और भी कई कार्यक्रमों में, युवाणी के कई कार्यक्रमों में भी, जैसे वार्ताएं भी होती थी
1: जी,
2: और क्विज कार्यक्रम हमारा होता था
1: जी।
2: ये इन सब में हमने बतौर, आप कह लीजिए कि वार्ताकार के रूप में या प्रतिभागी के रूप में हमने भाग लिया। आकाशवाणी से एक नियमित स्टाफ के रूप में हम चले, हम 1989 में जुड़े, जुलाई 24 जुलाई 1989 में हिंदी उद्घोषक पद पर हमने योगदान की। तो वहां से फिर स्टाफ के रूप में हमारा आकाशवाणी में जो सेवा सिलसिला है वो शुरू।
1: तो आप किन किन पदों पर कार्यरत रही?
2: जैसा मैंने अभी बताया, वर्ष 1989 जुलाई माह में मैंने हिंदी उद्घोषक के रूप में योगदान दिया
1: जी।
2: और इसके बाद फिर 2 साल के बाद
1: जी,
2: यानी 1991 में मैं प्रसारण निष्पादक के रूप में आई, ड्यूटी ऑफिसर भी जिसे हम लोग कहते हैं
1: जी।
2: और फिर ड्यूटी ऑफिसर में सेवा का एक लंबा समय रहा। और फिर 2013 में मैंने कार्यक्रम निष्पादक के रूप में योगदान किया
1: जी।
2: इस बीच कुछ वर्षों के लिए हमने उद्घोषणा या उद्घोषक के रूप में शुरुआत की थी भागलपुर से ही, आकाशवाणी भागलपुर से
1: जी।
2: और 2018 तक हम लगातार भागलपुर में ही बने रहे
1: जी।
2: इसके बाद 4 सालों के लिए मैं फिर आकाशवाणी कोलकाता में भी सेवाएं देने गई, हमारा
1: स्थानांतरण हुआ
2: था, स्थानांतरण हुआ था। और उसके बाद फिर से मैं 2022 में भागलपुर आई
1: जी।
2: और उसके बाद फिर मुझे कार्यक्रम प्रमुख के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई, जिसे हमने जहाँ तक
1: जी
2: प्रयास रहा।
1: और उसी पद से आप सेवानिवृत्त भी हुई?
2: दरअसल कार्यक्रम प्रमुख पद नहीं है वो, जो भी जो वरीय सबसे या वरिष्ठ हम कह लें, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको उसकी जिम्मेदारी
1: दी
2: जाती है। तो इस तरह से उसे पद ना कहा जाए, विशेष जिम्मेदारी।
1: तो आपने कहा कि आपने अपना सफर जो बतौर स्थायी शुरू किया उद्घोषक के रूप में,

0: तो उद्घोषक के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा और अब क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर रही हैं?
1: जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि रेडियो में आना, जैसे एक हम लोग पहले से अपने करियर का निर्धारण करते हैं कि हमें ये बनना है
0: जी,
1: और उसी में हम अपना कुछ ये भी रखते हैं कि पहले हम ये बनना चाहते हैं
0: जी,
1: जो भी जिस भी जो हम विभाग में हम जाना चाहते हैं, उसके बाद एक दूसरा भी अपना विकल्प रखते हैं। अच्छा, उसमें नहीं जा पाए तो हम इस विकल्प को चुनेंगे। तो हमारे विकल्पों की सूची में रेडियो तो नहीं था, लेकिन हमें लगता है कि ऐसी कुछ बातें जरूर हमारे साथ रही थी हमारे छात्र जीवन से ही
0: जी,
1: कि जैसे हम भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में भी हमने कई बार पुरस्कार और सम्मान पाया
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमने कभी सोचा नहीं था कि आवाज की दुनिया में जाकर के हमें कुछ करना होगा। जब आकाशवाणी में हम आए, मेरा आना हुआ, तो हमने बताया प्रतिभागी के रूप में युवाणी कार्यक्रम में मैं आया करती थी। उस वक्त तक भी मैंने नहीं सोचा था कि शायद मेरी नौकरी आकाशवाणी में ही होगी। ये एक कह लीजिए संयोग भी कह सकते हैं कि संयोग से हमें पता चला कि यहाँ हिंदी उद्घोषक
0: का पद
1: रिक्त है और उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि आप इसमें
0: आवेदन
1: कर सकते हैं, कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। मैंने भी सोचा कि ठीक है, कर देते हैं। तो और देखिए, ईश्वर की दया से चयन भी हो गया। आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ भी शायद संयोग से नहीं होता है, वो हर किसी के लिए उसके जीवन वृत्त में कोई ऐसा स्थान नियत होता है जहाँ आपको पहुँचना होता है। और आकाशवाणी में आने के बाद मुझे पछतावा तो नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं सही जगह आई, क्योंकि ऐसे कई समय आए जहाँ मुझे महसूस हुआ कि आकाशवाणी की सचमुच में कितनी बड़ी उपयोगिता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये जानने के बाद तो हमें और भी लगने लगा कि हमें और भी जहाँ तक हो सके हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जो लोक कल्याणकारी की जो बातें हम करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं
0: जी।
1: तो ये एक लोक कल्याणकारी संस्था है, ये जान करके मुझे गर्व भी महसूस हुआ और मैंने महसूस भी किया कि लोग सचमुच इस माध्यम को
0: जी,
1: आकाशवाणी जो माध्यम है, उसके प्रति कितने ज्यादा मतलब उसके प्रति कितना लगाव महसूस करते हैं और उस पर कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। उस वक्त ऐसा लगता था कि कोई भी चीज जो सही सही जानना हो
0: जी,
1: तो
0: वह रेडियो
1: आकाशवाणी आकाशवाणी के समाचारों को सुनिए। और आकाशवाणी दिल्ली से भी जो कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते थे तो उन कार्यक्रमों को लोग सुना करते थे उनकी प्रामाणिकता के लिए, उनके सत्यता के लिए, और ये कि उसमें हमको जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा
0: जी।
1: तो इस तरह से मैंने महसूस किया कि एक बहुत ही अच्छी संस्था में मैं आई हूँ और मेरे पास भी ऐसी कुछ खूबियां हैं जिसके चलते मुझे इस आकाशवाणी जैसी संस्था में जगह मिली है। तो उन खूबियों को जहां तक हो सके मैं लोक कल्याण के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए अर्पित करूंगी, उपयोग में लाऊंगी।
0: एक उद्घोषक और आप प्रसारण निष्पादक के रूप में भी कार्यरत रही
1: जी,
0: तो उसका अनुभव कैसा रहा और उसके दरमियान कभी कभी एक आकस्मिक कार्यक्रम कभी प्रस्तुत करने पड़ते हैं?
1: हाँ जी, हाँ बिल्कुल।
0: तो क्या आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा
1: वो हुआ? तो हमें लगता है कि रेडियो से जो भी लोग जुड़े होंगे, आकाशवाणी से जो भी लोग जुड़े होंगे, वो सभी का अनुभव ऐसा ही रहा है कि कभी भी आकस्मिक स्थिति में भी हमें बहुत ही तैयार रहना पड़ता है
0: जी।
1: किसी भी समय में किसी भी तरह की परिस्थिति आती है और वो उद्घोषक को भी और जो प्रसारण निष्पादक होते हैं उनको भी उसके लिए बिल्कुल तैयार तत्पर रहना पड़ता है। क्योंकि प्रसारण निष्पादक पूरे प्रसारण का इंचार्ज होता है, हम लोग कहते हैं कि पूरी प्रसारण सेवा होती है
0: जी।
1: वो प्रसारण निष्पादक की ही देखरेख में क्या प्रसारित हो रहा है और अगर उसमें प्रसारण में किसी भी तरह की कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, सबको देखने जांचने परखने वाला प्रसारण निष्पादक होता है
0: जी।
1: तो इस तरह से हमने उस जगह में भी महसूस किया कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। रेडियो में कहते हैं कि वो लास्ट चेक पॉइंट हो प्रसारण निष्पादक। कई बातें ऐसी होती हैं जो मान लिया विभाग के द्वारा जो कुछ भी आया प्रसारण के लिए उसमें कोई भी ऐसी बात रही हो जिसमें सुधार की जरूरत हो तो वहां पर वो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं जो उस चीज को देखते हैं और कहते हैं कि इसको इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम का सारा विवरण पहले ही ड्यूटी रूम में तैयार करके दिया जाता है। तो एक ड्यूटी ऑफिसर उस चीज को वहां पर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आकाशवाणी के जो कोड हैं, AIR कोड जिसको हम कहते हैं, और प्रसारण के भी और भी बहुत

0: सारे कोड उसमें बाद में जुड़ते चले। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन प्रसारण सामग्रियों को प्रसारण के लिए वो भेजता है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम महसूस करते हैं कि उद्घोषणा का कार्य जितना महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि देखिए एक बात हम कहते हैं कि आपके मुंह से जो बात निकल गई वो फिर वापस नहीं हो सकती, इसीलिए उद्घोषक बहुत ही इसके लिए सजग रहता है कि हम क्या बोल रहे
1: हैं,
0: हम क्या बोल रहे हैं, और बोलना ऐसा कि सुनने वाले के कान में घुसे तो वो उसके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए, उसे सोचना ना पड़े कि मैंने क्या सुना
1: जी।
0: वो इस तरह की सटीकता के साथ प्रसारण होना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रसारण निष्पादक भी उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी सजगता और सतर्कता के साथ कार्य करता है कि प्रसारण में क्या कुछ जाना चाहिए
1: जी।
0: जो हमारे जो टारगेट लिसनर होते हैं, जो हमारा जो लक्ष्य होता है श्रोता वर्ग, उसके लिए क्या उपयुक्त है। अगर बच्चों का हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो बच्चों के लायक ही हमें उस कार्यक्रम को ऑन एयर होने देना है। युवाओं के लिए हो तो उसी हिसाब से, महिलाओं के लिए हो तो उसी हिसाब से, और कई ऐसे शब्द होते हैं जो रेडियो में नहीं जाने चाहिए, उन सब बातों के प्रति पूरी सतर्कता और सजगता दोनों ही बरतते हैं, उद्घोषक भी या जो कार्यक्रम प्रस्तुता होते हैं वो भी, और हमारा जो ड्यूटी ऑफिसर होता है वो
1: जी। और आकाशवाणी के नाटक अनुभाग से भी जुड़ी रही, तो उसका अनुभव कैसा?
0: जी, मैं नाटक विभाग से भी जुड़ी रही, और मैं BIA, पहले तो BIA ड्रामा आर्टिस्ट रही, बाद में मुझे ए ग्रेड भी मिला
1: जी।
0: तो नाटक को भी कह लीजिए कि बहुत इंजॉय किया हमने। हालांकि हमारा जो उद्देश्य होता है टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट एंड टू एंटरटेन, मतलब सूचना और शिक्षा और मनोरंजन का
1: जी।
0: जो हमारा लक्ष्य होता है
1: जी,
0: उद्देश्य होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो भी माइक्रोफोन पर आता है वो आर्टिस्ट ही होता है, और ड्रामा के साथ अगर नाटक के साथ हम जुड़ते हैं तो हम सीधे सीधे नाटक कलाकार की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से उसको भी हमें बहुत ही अच्छा लगा जब हमने नाटक को कलाकार के रूप में, हमने नाटक में भाग लिया हो चाहे नाटक की प्रस्तुति की हो
1: जी।
0: तो हमें लगा कि एक अलग किस्म का ये कार्य होता है।
1: हमने कई सारे नाटक
0: मंच का कार्य, मंच का, मंच में जो मंचन होता है, नाट्य मंचन जो होता है वो अलग होता है, और रेडियो का जो नाटक होता है उसका जो, उसकी जो प्रस्तुति होती है या प्रस्तुतिकरण होता है, आपके पास सिर्फ संवाद होता है जिसके द्वारा आपको श्रोताओं को सब कुछ बताना और समझाना पड़ता है कि वो नाटक किस किस सिचुएशन में बोला जा रहा है
1: जी।
0: कि वो घर, किसी घर के रसोई का में हो रहा है, या खेल के मैदान में हो रहा है, या रास्ते के किसी चौक चौराहे पर वो नाटक हो रहा है, तो आपको अपने आवाज और संवाद के द्वारा ही वो सारे इफेक्ट्स या वो प्रभाव श्रोताओं तक पहुंचाना होता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बारी होता है नाट्य प्रस्तुति में।
1: कार्यक्रम अधिशासी का जब पदभार आपने संभाला तो उस दौरान आपका कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ चुनौतियां आपको?
0: चुनौतियां तो देखिए शुरू से ही चुनौतियों से भरा होता है
1: जी।
0: क्योंकि अगर जो रेडियो के माइक्रोफोन की सही समझ रहता है और जो जब वो ट्रांसमिट हो जाता है या ऑन एयर जिसको हम कहते हैं, या प्रसारण जिसको हम, जब वो प्रसारित हो जाता है तो वहां तक की बात हमें बिल्कुल शुरू से ही सोचना पड़ता है। वो भी अपने आप में एक चुनौती होती है कि हम विभिन्न आयु वर्ग के, विभिन्न वर्ग के श्रोताओं के बीच जा रहे हैं, कौन सी हमारी बात या कौन सी हमारी प्रस्तुति किस रूप में वहाँ उनके बीच पहुँचती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहीं भी थोड़ी भी कोई ऐसी नकारात्मक बात चली जाएगी तो उसके लिए एक, मतलब उस तरह की सोच रखनी पड़ती है, भाई ये इस तरह की बात, इस तरह की चूक रेडियो से नहीं होनी चाहिए। तो कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए भी बराबर हमने इन सब बातों का ध्यान रखा। जो भी कार्यक्रम, जैसे अगर हमने नारी लोक का ही कार्यक्रम देखा जो महिलाओं का कार्यक्रम होता है, या बच्चों के लिए कार्यक्रम होता है, या युवाओं के लिए कार्यक्रम, कमोबेश हर अनुभाग में ही हमने कार्यक्रम प्रस्तुति का योगदान दिया है। वैसे कुछ पहले से भी इस तरह की जिम्मेदारी हमें दी गई थी, जब प्रसारण निष्पादक रहते हुए भी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हमें मिली और ये भी हमें अपने जितने भी हमारे वरीय अधिकारी रहे सबों का हमें वैसा ही मार्गदर्शन भी मिला और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बखूबी इन सब कामों को किया। तो कार्यक्रम प्रस्तुति में भी हमने जैसे अभी कहा कि वो सारी चीजों का हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता था कि हम किस तरह के श्रोता वर्ग के बीच जा रहे हैं, और खास करके हमारे कार्यक्रमों के द्वारा से हमेशा समाज में एक

0: सकारात्मक सोच होनी चाहिए
1: जी।
0: समाज में एक कल्याणकारी सोच होनी चाहिए
1: जी।
0: कि उससे समाज का कल्याण हो, या सुनने वाले भी इस बात के लिए सचेत हो जाएं कि हम भी समाज का ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपनी जगह में रह करके भी हमें समाज के कल्याण की बात सोचनी है
1: जी।
0: तो ये रेडियो की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी, जैसा हमने बताया अभी कि शिक्षा देना,
1: शिक्षा ये जैसे उद्देश्य ही यही रहा।
0: हाँ, तो सूचना तो हम देते ही हैं, कब कहाँ क्या कुछ घट रहा है। सूचना देने में भी बहुत सारी बातों में हम लोग मर्यादाओं का ध्यान रखते थे कि कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसा समाचार हमारे द्वारा न जाए जिससे समाज में एक तरह की, जिसको हम बहुत ही सरल शब्दों में आजकल कह देते हैं कि किसी तरह से लोग पैनिक ना हो जाए, घबरा ना जाए, उनके बीच किसी तरह की निराशा ना पैदा हो, वो कहीं उग्र आंदोलन इस तरह से हो जाए, इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ही हम सूचना और समाचार भी देते हैं कि लोग समाचारों से तो अवगत हो ही, लेकिन बिल्कुल स्थिर और शांत रह के या सकारात्मक रूप में वो सारी बातें उनके बीच में जानी चाहिए
1: जी।
0: तो उसी तरह से शिक्षा देने के लिए भी हमें लगता है हमको ये हमेशा ध्यान में रहता था कि हमें उस समय हम ऐसा समझते थे जब हम रेडियो में आए थे
1: जी।
0: तो हमें हमारे वरीय अधिकारियों ने भी कहा था कि हमेशा स्मरण रखो कि
1: जी।
0: लगभग 1 करोड़ श्रोता तुम्हें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और उन 1 करोड़ श्रोताओं को सही बात बताने, सही दिशा निर्देशन की तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। थोड़ी सी छोटे से एक शब्द की चूक जो है उनके बीच में कोई भी नकारात्मक बात पैदा कर सकती है। इन सब बातों के लिए आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। ये एक सबसे बड़ी हमने चुनौती हमेशा से समझी
1: जी।
0: और भी ये देखिए जीवन तो चुनौतियों से भरा हुआ होता ही है और चुनौतियां होनी भी चाहिए क्योंकि उससे हमारी सक्रियता भी बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती हमने अपने सामने रखी कि हम क्या कुछ रेडियो के माध्यम से लोगों के बीच तक
1: जी। आकाशवाणी भागलपुर के क्षेत्र में संथाल परगना का भी क्षेत्र आता है और इस केंद्र के द्वारा संथाली कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता रहा है
0: जी।
1: तो इस दौरान आकाशवाणी द्वारा इस क्षेत्र में जागरूकता के लिए क्या क्या किया गया
0: जी। शुरुआती दौर में तो सिर्फ लोकगीत का कार्यक्रम होता था, संथाली लोकगीत या पहाड़िया लोकगीत भी होते थे, जिससे ये हम समझते थे कि उन क्षेत्रों के जो हमारे जनजातीय बंधु हैं संताली क्षेत्र के या पहाड़िया भी जो होते थे वो हमसे जुड़ेंगे
1: जी।
0: कालांतर में ये महसूस किया गया, हमने भी महसूस किया, हमारे साथ हमारे और भी जो वरीय अधिकारी थे वो भी इस बात को महसूस किए कि सिर्फ लोकगीतों के माध्यम से ही जितनी जागरूकता उनके बीच होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, जितना उनको हमको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी बातें होनी चाहिए सिर्फ लोकगीतों के माध्यम से
1: नहीं
0: हो सकता है। ये ठीक है, लोकगीत संगीत भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों के जनमानस को प्रभावित करने के लिए, लेकिन हम इसको स्पोकन वर्ड्स जैसे बोलते, उच्चरित शब्द, जब तक हम उनकी बोली में उनके बीच नहीं जाएंगे
1: जी।
0: तो शायद हमारा प्रयास पूरा नहीं हो पाएगा
1: जी।
0: तो इसलिए विचार किया गया कि कुछ स्पोकन वर्ड या उच्चरित शब्द के भी कार्यक्रम होने चाहिए,
1: उसी भाषा में होने चाहिए।
0: हाँ, संताली की ही मैं बात कर रही हूँ। तो इस बात को सोचने के बाद, चूंकि मैं खुद उस
1: अनुभाग से जुड़ी,
0: अनुभाग से भी जुड़ी या उस समाज से मैं भी हूँ, तो इसलिए ये लोगों ने कहा कि ये अधिकारियों ने भी कहा कि ये तो आप चाहें तो आप कर सकती हैं। तो उस वक्त हम लोगों ने एक मैगजीन प्रोग्राम के रूप में
1: जी।
0: इस संताली के उच्चरित शब्द के कार्यक्रमों को आरंभ किया और लोगों के बीच, खास करके जो लोगों का मतलब हमारा टारगेट लिसनर तो संताल परगना क्षेत्र के लोग ही हुए, तो उनके बीच ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। बाद में इसमें ये भी सोचा गया ये तो सिर्फ लिसनर के माध्यम से हम या लिसनर तक हम इन बातों को, श्रोताओं तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी के जो एक उसका जो लोक कल्याण का जो उद्देश्य होता है उसमें अगर हम आकाशवाणी में भी इस तरह के अवसर पैदा करें जिससे उस समाज के लोगों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये भी अच्छा है। तो इसलिए बाद में उसको हमने मैगजीन कार्यक्रम के बाद, चूंकि संताली वैसे भी 8वीं अनुसूची में आ चुकी भाषा थी
1: जी।
0: वो भाषा हो चुकी थी 22 भाषाओं में से, तो इसलिए संताली कार्यक्रम स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में जिसमें कि हम कंपियर्स जिसे हम कहते हैं कंपियरों का भी चयन कर सकते हैं, तो इस तरह से भी उस भाषा भाषी क्षेत्र में, उस भाषा के क्षेत्र में ऐसे भी लोगों को हम तैयार कर सकते हैं जो खुद उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें और बाकी संताली के जो हमारे श्रोताओं के बीच भी

0: जाकर के वो और भी ज्यादा से ज्यादा उन बातों की जो कुछ प्रसारण हम करते हैं उनकी उपयोगिता को पहुंचा सके। तो बराबर ये हमारी कोशिश रही और संताली कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय हुआ। मुझे ध्यान है कि हमारे ही एक सहयोगी रहे, अब तो नहीं है, और कहने का मतलब है कि इस सेवा में नहीं है, वो सेवा मुक्त है। उन्होंने ही एक बात बताई थी कि कटिहार क्षेत्र में जब उनका जाना हुआ था तो ऐसे ही उधर कुछ संताल बच्चे खेल कूद रहे थे, उनके बीच बातचीत के क्रम में वो पूछे कि क्या मतलब संताली का वो आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनते हो तुम लोग
1: बच्चों से?
0: हाँ जी। संताली का कार्यक्रम सुनते हो तुम लोग? तो उन लोगों ने छूटते ही कहा जीवन झरना, संताली कार्यक्रम जो हमने शुरू किया का नाम जीवन झरना, जीवन झरना। तो ये बात उन्होंने मुझसे शेयर किया, बांटी कि देखिए बहुत अच्छा लगा कि संताली कार्यक्रम को अब इतना रिस्पेक्ट मिलने लगा है कि जब आकाशवाणी की बात की हमने उनके बीच में तो उन्होंने
1: सीधे कार्यक्रम का नाम लिया।
0: तो ये अच्छा लगा,
1: प्रकट होती है जी वो
0: कितना सफल हुआ कार्यक्रम संताल श्रोताओं के बीच में।
2: मैनो हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, मुझे याद है जरा जरा। भेंट वार्ताकार थी नौमी शांति हेमरम, उनसे बातचीत कर रही थी रागनी रोशन। इसका अगला भाग सुनेंगे कल। तो बहनों इतना समय तो है कि चलते चलते हम एक प्यारा सा गीत सुन ले, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बहनों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का नारी लोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब हमें दिया गया नमस्कार।

ये था महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 12:30 हुए हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे
2: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और

अन्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय पर

0: यानी हार्मोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई,
1: जी।
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और
0: की है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है, जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं। इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहां तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है, जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
4: हर गोविंद भाई, हाँ तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का

0: सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैर लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ,
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: ज्वाइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड एस्पिरेशन।

0: कर सजैता भोर भिनसार कमरुआ।
1: इस मनोन के बाद अब आइए सुनते हैं एक लोक भजन।

लोक रंग कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त। भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीत कर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। झारखंड समेत पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। उन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा का पाठ पढ़ाया। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। अमित शाह ने उन्हें आदिवासी गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि जल जंगल जमीन और धर्मांतरण के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
2: एक अवसर हमें मिला था क्योंकि झारखंड दागदार रहा है, कलंक हमारे पे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस प्रकार के चीजें देखने को मिलती है और इस अवसर को पुनः उन्होंने नाथवानी के माध्यम से वो दागदार बनाने का फिर प्रयास किया है। ये दुखद स्थिति है, इससे ज्यादा शर्मनाक बातें नहीं होती। राजनीतिक संस्कार की बातें उन्होंने उस मर्यादा

0: व्यवस्था को उल्लंघन किया है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सा को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करेगी। एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार पहले चरण में 20 केंद्रों को मॉडल यूनिट बनाकर वहां दवाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता को 80% तक बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा। अदालत ने 2025 में आधुनिक तकनीक से 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश के बावजूद प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी के प्राकृतिक आम अपनी खास मिठास के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां बिना किसी केमिकल के पेड़ पर पके शुद्ध आमों की भारी डिमांड है। इन स्वादिष्ट आमों को खरीदने के लिए रांची, पटना और दिल्ली सहित 7 समंदर पार अमेरिका तक से ऑर्डर मिल रहे हैं।
3: यहाँ खासियत इसका स्वाद है। मालदा है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का मालदा का टेस्ट कुछ अलग है, जिसके चलते इस सब जगह फेमस है। पटना, दिल्ली, रांची, बम्बई सब तो है, लेकिन पिछले साल 3 पेटी आम अमेरिका भी गया। शुरू में 5 साल तक सेवा बहुत है, उसके बाद समय पर बीच में पानी दे दिए कभी, और दवा छिड़कते हैं जब आम का मंजर उंजर निकलने का समय होता है ना। इस बार आम थोड़ा कम है, अगले साल उम्मीद है ज्यादा होगी।
1: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 144 अंक बढ़कर 73,668 पर, जबकि निफ्टी 60 अंक बढ़कर 23,183 पर कारोबार कर रहा था। जापान अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर झारखंड की 6 खिलाड़ी आज रांची लौटी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक मांदर की थाप के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने हेतु प्रेरित करेगा।
4: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जापान गए, वहाँ खेले, अपना अच्छा से प्रदर्शन किए। जितने स्टाफ मैन थे, सारे लोग का हम पर सपोर्ट था। हम वहाँ पे अच्छे खेले, बट हमारा तो लक्ष्य था गोल्ड लेकर आना, बट सेमीफाइनल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हमने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय

आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में चतरा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। देश भर के 900 खिलाड़ियों के बीच चतरा के रेहान अख्तर मोहम्मद तबीश ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं मोहम्मद रहमतुल्ला और मोहम्मद शादाब ने

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। 1:20 हुए हैं लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए अब सुनते हैं एक और लोक भजन।

आज गायक कलाकार थे राजेश कुमार पंडित। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। एक बजकर 30 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं धारावाहिक गंगा के सुरताल। लेखक हैं रमेश रमन एवं प्रस्तुतकर्ता दासमती चातर।

श्रोताओं, हमें खेद है कि हम किसी कारणवश धारावाहिक गंगा के सुरताल आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं।

0: गति में अनहद नाद की संकृति, स्पर्श में पवित्र स्वर्ग का वरदान, आलिंगन में नवजीवन की प्रभाति, दर्शन में मुक्ति का सोपान और सेवन में विष्णुपद की प्राप्ति। यह है गंगा के भावस्वर व्यक्तित्व का रहस्य।
1: गंगा स्वर्ग की रुचिर वरदान बूंद है, जो अपने शुभ्र आंचल से धरावासियों के पाप ताप दूर कर देती है। ये एक महत्वपूर्ण पूंजी है संस्कृति, धर्म और अध्यात्म की। कवि पद्माकर ने सच ही कहा है,
0: भूपति भगीरथ के रथ को सुपन्य पथ, जहनु जब जोग फल फैल की फहर है, हम की छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल की कहर जम जाल को जहर है।
2: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा पतित पावनी है और मर्त लोक मालिन्य मेटने हमारी धरती पर अवतीर्ण हुई है, वह भी अपने आप नहीं, महाराज भगीरथ के काफी अनुरोध करने पर।
1: इसके पीछे एक दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है, जो यूं है। सूर्यवंशी सम्राट सगर को वैदर्भी एवं शैव्या नामक दो रानियां थीं। शैव्या को एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, परंतु वैदर्भी को लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी कोई संतान ना हुई। इस कारण वैदर्भी काफी उदास रहने लगी।

0: तुम्हारी उदासी का कारण जान सकता हूँ वेदर भी?
1: कारण तो स्पष्ट है राजन, शैव्या मुझसे छोटी है फिर भी माँ बन गई, किंतु मेरी कोख अब भी सुनी पड़ी है।
0: विधि का विधान तो नहीं बदला जा सकता है महारानी, ईश्वर की कृपा के बगैर तुम्हारी चिंता दूर करना मेरे वश की बात भी नहीं है।
1: अगर सच में ईश्वर है तो मैं उनकी कृपा प्राप्त करके ही दम लूंगी।

इस दृढ़ निश्चय के साथ वह दर्वी शंकर की उपासना में लीन हो गई और अंततः शंकर को प्रसन्न भी कर लिया।

0: मैं तुम्हारी उपासना से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो।
1: प्रभु, मुझे पुत्रवती होने का वर दीजिए।
0: तथास्तु।

0: भगवान शंकर के वरदान से पूरे 100 वर्ष बीत जाने के बाद वैधर्वी के गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। यह देख वैधर्वी की सारी खुशियां गम में तब्दील हो गईं। राजा सगर भी इस मांसपिंड को देखकर काफी चिंता मग्न हो गए।
1: यही आपने उपासना का फल दिया प्रभु। इस मांसपिंड को जन्म देकर तो आपने मेरी असीम पीड़ा को जन्म दे दिया है। ऐसा क्रूर मजाक करना क्या आपके लिए शोभनीय है? धिक्कार है आपकी शक्ति और सत्ता को।
2: हरिओम हरिओम। आप रो रही हैं महारानी?
1: मेरे भाग्य में तो रोना ही लिखा है, तो मैं क्या करूं?
2: रोने का कारण बता सकती हैं आप?
1: इस तरह सवाल पूछकर मेरी पीड़ा को और तीव्र न करें ब्राह्मण देव।
3: ऋषिवर, पीड़ा का एकमात्र कारण है रानी के गर्भ से संतान की जगह मांसपिंड का उत्पन्न होना।
2: बस इतनी सी बात? मैं अभी तुरंत इसका हल निकाल देता हूं।
4: इतना कहकर भगवान शंकर ने उस मांसपिंड को अपने त्रिशूल से 60,000 भागों में विभक्त कर दिया और वे सभी टुकड़े तत्क्षण पुत्र रूप में परिणत हो गए।
0: भगवान शंकर की कृपा से उत्पन्न ये सभी 60,000 कुमार परम तेजस्वी हुए, किंतु उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। इस अहं के मद में वे लोग उचित अनुचित का ज्ञान भी भूल गए।
5: यही कारण था कि उन लोगों ने एक दिन ज्ञानी एवं सिद्ध मुनि कपिल को भी अपमानित करना नहीं छोड़ा। फलस्वरूप क्रुद्ध मुनि ने सगर के सभी 60,000 कुमारों को भस्म हो जाने का शाप दे दिया।
6: दुष्टो, मैं साफ कहता हूं कि तुम लोग इसी क्षण भस्म में तब्दील हो
7: जाओ। हमें क्षमा कर दे, हमसे भूल हो गई मुनिवर।
6: यह एक सिद्ध मुनि का यह साप है, कभी वापस नहीं।
0: आखिर वही हुआ। कपिल मुनि के शाप से सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। ये दुखद समाचार जब राजा सगर और रानी वैधर्भी तक पहुंचा तो वे भी घोर विलाप करने लगे।
1: महाराज महाराज, जल्द मेरे पुत्रों को जीवित करने का कुछ उपाय करें, वरना मैं भी इसी क्षण अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी।
3: क्या करूं महारानी, कुछ समझ में नहीं आता।
8: अपने समस्त पापी पुत्रों को जीवित करने का नहीं, जीवित करने का नहीं, जीवित करने का नहीं, पाप मुक्त करने का उपाय सोचो राजन, उपाय सोचो राजन, उपाय सोचो राजन, और ये तभी संभव होगा, तभी संभव होगा, तभी संभव होगा, जब उन्हें, जब उन्हें भगवती गंगा के स्पर्शित वायु का संयोग प्राप्त होगा, संयोग प्राप्त होगा, संयोग प्राप्त
3: होगा। भगवती गंगा? गंगा तो स्वर्ग लोक में निवास करती है, वह धरा धाम पर आएगी कैसे?
9: आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं अपनी तपस्या से गंगा माता को स्वर्ग से धरती पर अवश्य ले आऊंगा।
4: सगर पुत्र असमंजस गंगा को धरा पर लाने हेतु वर्षों तपस्यारत रहे और अंततः अपने उद्देश्य में सफल हुए बगैर काल का ग्रास बन गए।
0: तत्पश्चात असमंजस के पुत्र अंशुमान ने अपने पिता द्वारा लिए गए संकल्प को पूर्ण करने हेतु घोर तपस्या आरंभ कर दी, परंतु दुर्भाग्यवश अपने जीवन काल में वे भी गंगा मैया को धरती पर लाने में सफल ना हो पाए।
5: अंत में अंशुमान के पुत्र और सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु व्योम विहारनी गंगा को धरती पर लाने का बीड़ा उठाया। ईश्वर भक्त भगीरथ की अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा,

0: मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए?
1: मैं चाहता हूं कि मेरे शापित पूर्वजों का उद्धार हो जाए। प्रभु,
0: वो कैसे?
1: आप केवल भगवती गंगा को धरती पर भेज देने की कृपा करें भगवत।
0: तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हे सुरेश्वरी, तुम इसी समय भूलोक जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के समस्त पुत्रों को पवित्र करो।
2: नाथ, सरस्वती जी का शाप पूर्व से ही मेरे सिर पे सवार है। आप भी आज्ञा दे ही रहे हैं और महाराज भगीरथ की एक दर्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं अभी धराधाम पर जा रही हूँ।
3: धर्म ग्रंथानुसार गंगा जब प्रबल वेग के साथ धरा पर उतरने लगी, तब महाराज भगीरथ के अनुरोध पर वेगवती गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटाजूट में धारण किया।
4: तत्पश्चात जब शंकर ने गंगा को अपनी जटा से मुक्त किया, तो रास्ते में अपने वेग के साथ जनु ऋषि के यज्ञ मंडप को बहा ले गई। क्रुद्ध ऋषि गंगा को चुल्लुओं में लेकर पान कर गए। लोक पीड़ा एवं भगीरथ की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर पुनः ऋषि ने गंगा को अपनी जंघा चीर कर बाहर किया। इस कारण गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया।
3: और आखिर में महाराज भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या एवं साधना की पवित्र शक्ति से स्वर्ग में विहार करने वाली गंगा को पृथ्वी वासिनी बना दिया और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया, इसलिए गंगा भगीरथी कहलाई।
5: वास्तव में गंगा की महत्ता हमारी जन्मदात्री माता से भी अधिक है। जब अष्ट वसु अभिशप्त हुए और उन्हें मर्त्यलोक में जन्म लेना आवश्यक हो गया, तो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को गर्भ में धारण करने के लिए शीतल अंतःकरण वाली गंगा को ही तत्पर होना पड़ा।
3: वे राजा शांतनु की पत्नी बनी और एक एक करके गर्भ से निकले हुए आठों वसुओं को अपनी धारा में प्रवाहित कर देने का कठोर कर्म इन्हें करना पड़ा। फिर आठों वसुओं का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर गंगा ने शांतनु पुत्र के रूप में नौवे वसु को भी जन्म दिया, देवव्रत के नाम से।
4: यही प्रतापी महाभारत कालीन शिशु अपनी कठोर अटूट प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। इस तरह शिव के प्रकोप को शांत करके स्कंद के जन्म में भी गंगा ने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया।
3: गंगा के पीछे पौराणिक कथाओं का सुदीर्घ इतिहास है। राजा बलि को छलने हेतु जब वामन भगवान का एक डेग ब्रह्मलोक पहुंचा, तो ब्रह्मा ने उन नखों को धोकर अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा बनी।
5: पुराणों में गंगा को रघुकुल की देवी कहा गया है। इसके शीर सदृश धवल नीर की मधुरिमा और गुणवत्ता के चलते ही सबों ने गंगा को श्रद्धा भाव की दृष्टि से देखा तथा इसकी महत्ता को स्वीकारा है।
3: गंगा जल की पवित्रता एवं शुद्धता की प्रमाणिकता इस बात से स्वतः मिल जाती है कि वर्षों रखे जल में भी कीटाणु वास नहीं कर पाता। इसके अलावे किसी भी मांगलिक कार्य यज्ञादि के अवसर पर गंगा जल का उपयोग अथवा छिड़काव करना पवित्रता का द्योतक नहीं तो क्या है?
4: निसंदेह गंगा पाप नाशनी है और इसका जल देशवासियों के लिए अमृत तुल्य है। शायद इसी कारण मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाला जाता है, ताकि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।
3: सचमुच गंगा निरंतरता है, हमारी जीवन यात्रा की पूर्णाहुति को वहन करने वाली संपूर्ण जीवन की। इसके दर्शन से इसमें

0: स्नान करने से और इसका जलपान करने से त्रिविध तापों का तिरोहन हो जाता है। ये नाश करने वाली हैं यम के त्राश को भी।
1: शास्त्रानुसार निरंतर गंगा जल का सेवन करते रहने से शरीर में ही सम्राट को गंगा जल इतना प्रिय था कि वे सदैव खाद्य सामग्रियों में गंगा जल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया करते थे। और फिर अकबर तो गंगा जल को अमृत ही मानते थे।
0: गंगा एक ऐसा पवित्र नाम है जिसे लेते ही तन मन के साथ आत्मा भी पवित्र हो जाती है। इसी कारण गंगा को पतित पावनी, पापहारिणी आदि नामों से संबोधित किया गया है। वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के स्वर्णिम महासागर की ओर। उसे मेरा शत शत प्रणाम और अनेकानेक शुभकामनाएं।
1: अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रवाहमान गंगा हमारी संस्कृति की प्रेरणा, हमारे जीवन की गति का संदेश देने वाली एक पवित्र चेतना है, तो इसका जल मोक्ष प्रदायक अमृत।
0: यूं तो गंगा जल में सदैव ही एक दिव्य चैतन्य प्रवाहित होता रहता है, परंतु विशिष्ट तिथियों यथा कुंभ, ग्रहण, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी पर तो इसकी दिव्यता में और भी वृद्धि हो जाती है।
2: यही कारण है कि इन खास तिथियों पर गंगा किनारे स्नान करने वालों की अपार भीड़ हो जाती है। कहीं भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब की भेदक दीवार परिरक्षित नहीं होती। मानव मानव एक समान, सभी मनुज की हैं संतान वाली उक्ति अक्षरशः चरितार्थ उठती है।
0: इतना कुछ होने के बावजूद दुर्भाग्यवश आज हम गंगा का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। उन्हें हम नित्य दुर्गंध युक्त नालियों का अर्घ्य अर्पित करते हैं, मृत जीवों एवं सड़ी गली वस्तुओं का नैवेद्य चढ़ाते हैं। ऐसा करना क्या हमारे लिए गर्व की बात है?
1: हरगिज नहीं। हमें हर हाल में गंगा की महिमा को गहराई से समझना है, उनका अपमान नहीं सम्मान करना है, तभी हम प्रकृति के अनुपम उपहार को धरा पर अक्षुण्ण रख पाएंगे।

सचमुच गंगा की सेवा करने और उनके जल को पवित्र रखने से ही हमारी लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति संभव है। संत भिखारी दास ने सच ही कहा है, दास न मापी सुरापी तपि अरु जापी हितु अहितु बिलगाई, गंग तिहारी तिरंगनी सौ सब पावे पुरंदर की प्रभुताई।

जय गंगा मैया, ये पूर्व प्रसारित रूपक आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से, फिर 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। पिछले एक वर्ष में विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन को अधिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र और नागरिकों की सेवा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना स्थित आरके राय अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का टिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गयाची और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौंड बालू टोल स्थित चालान सेंटर पर अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने 2 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के 3रे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेखपुरा उपभोक्ता संरक्षण फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर फोरम ने यह आदेश सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति।

0: Sharma.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों

0: बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: We're very close to having a-

0: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.5

मतलब 76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। पहला गाना फिल्म हम किसी से कम नहीं का है। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और युगल आवाजें आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की है।

बंटवारा, इस फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति एवं अनुराधा पौडवाल की मिलीजुली आवाजें हैं। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।

0: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: लता मंगेशकर एवं साथियों को अब आइए सुनते हैं फिल्म अर्पण में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले एवं महेंद्र कपूर का गाया फिल्म निकाह का एक नगमा। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में आज फनकार हैं कविता कृष्णमूर्ति एवं क्षमा करेंगे तरंग कार्यक्रम के आज फनकार हैं कविता पौडवाल और जसवंत सिंह।

सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग अब यहीं संपन्न होता है। आज फनकार थे जसवंत सिंह एवं कविता पौडवाल। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 3:20 हुए हैं। आइए सुने समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं।
1: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
2: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने से छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
1: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू

0: दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरीके की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा
0: क्या
1: तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया, इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती।
1: नहीं करते,
0: जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी, तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल

0: तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
1: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे।
0: बिल्कुल
1: उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: पे क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई
1: हाँ।
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने ले लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो हमें कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें, इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: दो काज, आम के आम, गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसका, इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से, उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम, गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना

0: नहीं है। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं।
1: जी
0: और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक कुछ होता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी हैं वो एक नंबर हैं, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती हैं मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक झोंक, प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज़ है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं, तो
0: हमारे
1: अच्छी चीज़
0: श्रोता
1: है।
0: ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो
0: और
1: आपने बहाना बनाया था।
0: जी
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
0: हाँ, अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी है उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी तो सुन लें गाना,
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा,
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही हैं जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, हाँ। अच्छा। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी नहीं, अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
2: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलु माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं,

0: स्क्रीन के तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली।
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आप याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीएडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीएडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: You know? उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाना

0: हाँ एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली।
0: बिल्कुल
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना, उसके बाद 14वीं के चांद

0: नहीं तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा विधु जी, साहेब बीवी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शेडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं, तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें, नहीं बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं, तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई, तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके ने जो देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें, मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ, बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है, तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए, तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहना
1: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान।

0: नहीं, एक तो फॉग है. मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगा था. तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया. तो मैंने कहा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है. मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है. फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक ओह मैं दे भाई आगे से मिलिट्री कौन वाय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है. और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा. अच्छा आहिस्ता चलाइए. और कोई और रास्ता ही नहीं था. ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे. तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए. तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था.
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं. कोई गाना याद करिए आप.
0: खोया खोया चांद.

0: वहीदा जी उर्दी साहब का भी जिक्र आया है और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गोल्डी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस

0: इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने ये तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी प्रश्न भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले दो चार बार मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने पता चलेगा पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन को शॉर्ट किया मैंने।
1: गाइड की तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैला जी, इसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था और लिप की बात लोगों ने नहीं सुना होगा। उस स्त्री जो एक इमेज थी डरते हैं से उनकी पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
0: ये क्या हुआ जब मैं फिल्मों में आई, बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लगता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल, वो तो वैम्प का रोल। फिर मैं कहती है वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी थी जंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर मेरे दूसरे डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता कैरेक्टर है। मैं नहीं मानता नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर की गई है। और अक्सर फिल्मी कहानियां क्या कहती हैं, दिमाग को लेने उनके

0: क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था, और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं रेगिस्तान में, टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है, हाँ। और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कहले तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसे, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: महिला जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम।

0: नॉर्मल कैरेक्टर जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं। तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहते हैं नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है। ये कहती है नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या। उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है। फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं, अभी कहाँ सेटल होंगे। तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन। नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड।
1: देव साहब के साथ में, और जो आपके क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और। आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खासियत से। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो।
0: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे।
1: इतने हक
0: हाँ हक जता रहे थे जैसे, तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी के शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड।

0: सीने वाली शर्ट नहीं, वो शॉर्ट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सूख खाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी।
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, और बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है, और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड के 100.5

1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवावाणी में। उम्मीद है आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे। जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, आपका लगाव मायने रखता है, जुड़े हुए रहते हैं हमेशा बेतार के तार से। तो आइए प्यारे साथियों, इस जुड़ाव को फिर से देते हैं एक नया आयाम, हर शाम की तरह इस शाम भी युवावाणी के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले हम बातें करेंगे बिरसा मुंडा शहीद दिवस पर। इसके बाद चलेंगे अपने वीकली सेगमेंट विज्ञान जगत की तरफ, जिसमें हम बातें करेंगे लेटेस्ट वाईफाई तकनीक के बारे में और सुनवाएंगे एक पूर्व प्रसारित विज्ञान वार्ता। इसके पश्चात संगीत पहेली का वक्त होगा और अंत में समसामयिक गतिविधियों पर डालेंगे एक नज़र और फिर लेंगे आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का कार्यक्रम, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कि कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों आज महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा था। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे थे। उनकी गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर उन्हें ईसाइयत की ओर मोड़ने लगे थे। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और 1995 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। यह मात्र विद्रोह नहीं था दोस्तों, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महासंग्राम था। बिरसा मुंडा ने समाज में फैले अंधविश्वासों को मिटाने का प्रयास किया। आदिवासी लोग हैजा, चेचक, सांप काटने या फिर बाघ के काट लेने जैसी घटना को ईश्वरीय प्रकोप मानते थे, लेकिन बिरसा मुंडा ने उन्हें यह सिखाया कि इन आपदाओं से हम कैसे लड़ें। वे आदिवासियों को अपने धर्म, संस्कृति और अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने की हमेशा अपील करते थे और मिशनरी के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। मिशनरियां छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में आदिवासी धर्मांतरण का अभियान चला रही थी। इसके सबसे बड़े विरोधी बिरसा मुंडा ही थे। वे अंग्रेजों की नज़र में खटकने लगे थे। षड्यंत्र रचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु भी हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से हैजा के कारण बताया गया। दोस्तों अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने वो सब कुछ हमें दिया जिसकी बुनियाद पर हम आज स्वतंत्र हैं। साथ ही जन जागरण और अपनी संस्कृति सभ्यता को अक्षुण्ण रखने का जो पाठ हमें पढ़ाया वो

आज भी प्रासंगिक है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने अपनी मिट्टी, अपनी प्रकृति से सदैव जुड़ाव और प्रेम को बढ़ावा देने की वकालत की। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि और नमन। तो दोस्तों आज के दिन विशेष की बातें यहीं तक। आइए अपने डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर चलते हैं, जिसमें हम पूछते हैं आपसे एक सवाल। आज का सवाल है दोस्तों, आकाशवाणी की पहुंच देश की कितनी फीसदी आबादी तक है? जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी की पहुंच देश की कितनी फीसदी आबादी तक है? आप इस सवाल का जवाब अभी भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी phair@gmail.com पर। दोस्तों अब चलते हैं फन फैक्ट्स की तरफ और जानते हैं आकाशवाणी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों हाल ही में आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे किए हैं, जो एक गौरवशाली उपलब्धि है। दोस्तों आकाशवाणी की शुरुआत 8 जून 1936 को दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई थी। आगे चलकर 1956 में इसका औपचारिक नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। यह नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से प्रेरित था। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं फिल्म यारियां 2 के इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और ट्यून रहिए युववाणी के साथ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस बेहतरीन नगमे के बाद एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीकली सेगमेंट विज्ञान जगत की तरफ। दोस्तों आज हम विज्ञान जगत में लाए हैं भारत की लेटेस्ट वाईफाई तकनीक से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां और अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जो हमें डिजिटल दुनिया से फास्टली कनेक्ट रखता है। अपने देश की बात करें दोस्तों तो हमारे देश में वाईफाई 7 तकनीक पर काम शुरू हो चुका है। यह वायरलेस तकनीक सबसे उन्नत पीढ़ी IEEE 802.11BE के साथ अपनी सेवा देने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय कंपनियां इस तकनीक से जुड़ी सामग्रियों का निर्माण शुरू कर चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा 6 GHz स्पेक्ट्रम बैंड को डी लाइसेंस करने के बाद से वाईफाई 7 उपकरणों का निर्माण और उपयोग तेजी से शुरू हो चुका है। साथियों वाईफाई 7 की विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तकनीक 64 GBPS तकनीक तक की अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड देने में सक्षम है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन की देरी वाईफाई 6 की तुलना में लगभग 4 गुना कम हो जाती है, जो ऑनलाइन गेमिंग और 4K 8K वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन है। इसके साथ ही वाईफाई 7 में उपभोक्ता अपने डिवाइस को एक साथ तीनों बैंड 2.4 GHz, 5 GHz और 6 GHz को एक साथ उपयोग करने की सुविधा मिलती है, जिससे कनेक्शन बेहतर स्थिर रहता है। 320 MHz के हाई कैपेसिटी चैनल्स के कारण एक ही नेटवर्क से जुड़े कई डिवाइस बिना स्पीड कम हुए एक साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए विज्ञान चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आइए विज्ञान जगत सेगमेंट में सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित विज्ञान वार्ता। विषय है संचार क्रांति से छोटी होती दुनिया। वार्ताकार हैं अंशु कुमारी।

आइए दोस्तों, यहाँ पे एक गीत सुनते हैं जिसे हमने फिल्म गदर 2 से लिया है। आवाज़ें हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर और साहिल अख्तर की।

दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना, इसमें आपको बताना है कि इस गीत के रचनाकार यानी कि गीतकार कौन है। आप अपने सही जवाब हमारे मेल आईडी phaiarbhagalpur@theRate.com पर 7 दिनों के अंदर में भेज सकते हैं, या फिर पत्र द्वारा अपने उत्तर प्रेषित कर सकते हैं। सही जवाब देने वाले श्रोता मित्रों के नाम हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब जानिए दोस्तों, पिछले हफ्ते पूछे गए संगीत पहेली के सवाल का जवाब। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको एक गीत सुनवाया था। गीत के बोल थे, आपका क्या होगा। आपको बताना था कि इस गीत को किस फिल्म से लिया गया था।

0: तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाउसफुल फोर। आइए दोस्तों अब रुख करते हैं एक वार्ता की तरफ जिसका विषय है इको टूरिज्म। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। वार्ताकार हैं खुशबू कुमारी।
1: इको टूरिज्म का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर पर्यटन करना। इसमें ऐसे प्रकृति स्थानों की यात्रा की जाती है जहाँ पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और वहाँ की स्थानीय संस्कृति, वन्य जीव और प्रकृति संसाधनों की रक्षा हो सके। इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों को रोजगार देना, प्रकृति सौंदर्य को सुरक्षित रखना, यात्रियों में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उदाहरण के तौर पर जंगल सफारी, पक्षी अवलोकन, पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग, गांवों में रहकर उनकी जीवन शैली को समझना, यह सभी इको टूरिज्म के अच्छे उदाहरण हैं। सीधे शब्द में कहें तो इको टूरिज्म वह पर्यटन है जो प्रकृति को संवारता है, ना कि बिगाड़ता है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नई नई तकनीकें, बड़े शहर, ऊंची इमारतें और तेज जीवन शैली हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस विकास की दौर में हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, जलवायु बदल रही है और वन्य जीव संकट में है। ऐसे समय में एक ऐसा विचार सामने आता है जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। इसी विचार का नाम है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का अर्थ है प्रकृति के अनुकूल पर्यटन, यानी ऐसी यात्रा जिसमें हम प्रकृति स्थानों का आनंद ले, लेकिन इस तरह की पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। इको टूरिज्म केवल घूमना फिरना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार सोच है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों को भागीदारी और संस्कृति सम्मान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सरल शब्द में कहा जाए तो इको टूरिज्म वह पर्यटन है जिसमें प्रकृति की रक्षा करते हुए यात्रा की जाती है। आज दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का नुकसान, ये सभी समस्याएं हमारे सामने हैं। सामान्य पर्यटन में बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे वहां की प्रकृति पर दबाव बढ़ता है। होटल, कचरा, वाहन की आवाजाही और संसाधनों का इत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसी समस्या का समाधान इको टूरिज्म में छुपा है। यह हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों का समझदारी से उपयोग कैसे किया जाए। इको टूरिज्म के जरिए हम पर्यटन को प्रकृति के दुश्मन की जगह उसका मित्र बना सकते हैं। इको टूरिज्म के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जंगल, नदियाँ, पहाड़ और वन्य जीवों की रक्षा करना। स्थानीय लोगों का विकास, उन्हें रोजगार और आय के अवसर देना। संस्कृति संरक्षण, स्थानीय परंपराओं और जीवन शैली को बचाना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, लोगों को प्रकृति की अहमियत समझाना। संतुलित विकास, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना। इको टूरिज्म कई रूपों में देखने को मिलता है। वन्य जीव पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जंगल सफारी। ग्रामीण पर्यटन, गांवों में रहकर वहां की जीवन शैली को समझना। पूर्व तट पर्यटन, पहाड़ों में ट्रैकिंग, कॉपिंग। तट इको टूरिज्म, समुद्र तटों पर सीमित और नियंत्रित पर्यटन। पक्षी अवलोकन,

0: पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखना। इन सभी प्रकारों में पर्यावरण नियमों का पालन अनिवार्य होता है। इको टूरिज्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें स्थानीय समुदाय की अहम भूमिका होती है। स्थानीय लोग गाइड बनते हैं, होम स्टे चलते हैं, हस्तशिल्प बेचते हैं और पर्यटकों को अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं। इससे उसकी आय बढ़ती है और उन्हें अपने क्षेत्र की प्रकृति को बचाने की प्रेरणा मिलती है।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आइए दोस्तों, चलते चलते करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हाल ही में लिवरपूल यूनिवर्सिटी को भारत के शिक्षा मंत्रालय से भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। हाल ही में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। NS राजा सुब्रमणि ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला है और हाल ही में वन्य जीव अपराध प्रबंधन हेतु भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत डिजिटल प्रणाली हॉक लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए करेंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होता है। वैसे दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। पिन कोड संख्या है दोस्तों 812001। आप चाहें तो दोबारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। पिन कोड संख्या 812001। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। हमें आपके पत्रों और मेल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, बदलते वक्त और बदलती तकनीक के साथ अब रेडियो सुनने का जरिया भी बदला है। अब आप हमें रेडियो सेट के अलावा अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं न्यूज़ॉन AIR ऐप के माध्यम से। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी भी अब करने लगी है इशारा, अब इस शो को रैप अप करने का वक्त हो चला है। चलते चलते यही कहेंगे हमेशा की तरह कि हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युववाणी। मिलेंगे फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम इसी फ्रीक्वेंसी पर। इसी वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त बंटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से, प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। 5:30 हुए हैं, अब सुनिए फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए फहीम अब्दुल्ला को सैयारा फिल्म में।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अब सुनिए ओ रोमियो फिल्म में अरिजीत सिंह को।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अरिजीत सिंह और अरमान खान को सुनिए धुरंधर फिल्म में। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी को सुनिए वार टू फिल्म में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

और अब सुनिए सोनू निगम और कृष्णाकली साहा को। फिल्म का नाम है परम सुंदरी। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में विनय कुमार सिंह से वार्ता सुनेंगे। जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावनाएं। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में अभिजीत आनंद को आप सुन पाएंगे। 8 बजे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सुर संगम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुन पाएंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 9:30 पर डॉक्टर सुधा जाला कोहली का लिखा नाटक सुनेंगे कर्मभूमि। प्रस्तुतकर्ता होंगे अमित कुमार। 10 बजे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे गुंजे बिहार। और रात्रि 10:30 पर भावों पर आधारित फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे भावगीत कार्यक्रम में। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर, 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुनेंगे। 6:05 पर चिंतन मनन सुन पाएंगे। 6:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर शिशिर कुमार पंजीकार की वार्ता आप सुनेंगे मस्तिष्क ज्वर। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे भोले शंकर झा से, काव्यांजलि के अंतर्गत।

संत कवि शंकर कुमार दास को आप सुन पाएंगे। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे, सुबह 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे श्यामानंद झा को। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे विशेश्वर प्रसाद शर्मा से। 10:45 पर आओ साथ चलें, ये समन्वित कार्यक्रम आप पटना से सुनेंगे। 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे कविता सिन्हा से। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 3 बजे रविंद्र संगीत सुनेंगे, कलाकार होंगे चिन्मय चटर्जी। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल के कार्यक्रमों में कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे, कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत विविध विधि व्यवस्था और पुलिसिंग, इस विषय पर भेंटवार्ता सुनेंगे। भेंटवार्ताकार होंगे राकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था, और इनसे बातचीत करेंगे कुसुमाकर दुबे। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुनील कुमार मिश्र को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर दिल्ली से सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। 10 बजे एक ही फिल्म के कार्यक्रम सुन पाएंगे, एक ही फिल्म के गीत सुनेंगे। 10:30 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के गीत सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है आप सबों का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको पन्नू का नमस्कार
1: और साथ में सभी को अन्नो का भी नमस्कार। पन्नू भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार अन्नो भाई, और सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है?
1: हाल समाचार तो सब ठीक ठाक ही है पन्नू भाई। बहुत ज्यादा ही गर्मी से हम लोग परेशान थे, लेकिन देखिए दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास जो है झमाझम बारिश हुई और मौसम बिल्कुल बदल गया
0: जी,
1: और
0: जी।
1: हम लोगों को इससे राहत भी महसूस हुई।
0: जी जी, वर्षा होने के बाद तो राहत मिली ही, और उमस भरी गर्मी से तो लोग काफी परेशान थे, और गर्मी का मौसम है तो परेशान तो आप स्वतः होंगे ही।
1: बिल्कुल,
0: क्या है कि हम जब भी अभी घर से निकले तो थोड़ा सा सावधानी से निकले, छतरी लेके निकले, एक गिलास पानी ले और देखते हैं पसीना कितना निकलता है।
1: जी,
0: तो आपको उमस भरी गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, ऐसे में हमें पानी भी साथ लेके चलना है, और जब भी प्यास लगे तो तुरंत पानी पीजिए।
1: जी, और पन्नू भाई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में जो है अब मानसून का आगमन अगले हफ्ते हो ही जाएगा।
0: जी जी,
1: और
0: जी,
1: ऐसे
0: जी।
1: में हमारे किसान भाई भी जो है अपने खेतों की तैयारी इस समय शुरू करने का सबसे बेहतरीन समय माना जा रहा है।
0: जी जी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार तो अगले हफ्ते वर्षा शुरू हो जाएगी, और किसान भाई भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वर्षा शुरू होगी तो हम अपने खेतों की तैयारी भी शुरू कर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है
1: जी
0: अन्नू भाई,
1: बिल्कुल।
0: क्या है कि किसान तो शुरू

0: से ही तैयारी में लगे रहते हैं, साथ साथ अपने बच्चों के पठन पाठन पर भी लगे रहते हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वही देश को गढ़ेंगे, परिवार को गढ़ेंगे, समाज को गढ़ेंगे। तो बच्चे के पठन पाठन पर हमारे किसान भाई, हमारे गार्जियन, हमारे सारे अभिभावक ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें अपने देश की संस्कृति और देश के इतिहास पर भी ध्यान दिया जाता है, अपने इतिहास की भी जानकारी दी जाती है।
1: और इतिहास के बाद से याद आई पन्नू भाई
0: जी जी
1: कि हमारे देश की आजादी में जो है कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई
0: जी जी जी,
1: और उन्हीं महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में आज एक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है
0: जी जी, आज बिरसा मुंडा के जी,
1: महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जननायक भी थे
0: जी जी जी जी।
1: बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था
0: जी जी।
1: उन्हें आदिवासी समाज में धरती बाबा यानी कि धरती के पिता के नाम से भी सम्मानित किया जाता
0: जी
1: है
0: जी जी।
1: और बिरसा मुंडा जी ब्रिटिश शासन, जमींदारी शोषण और आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जों के खिलाफ वे लगातार संघर्ष करते रहे थे
0: जी जी। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। अनु भाई, भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया था।
1: बिल्कुल। और बिरसा मुंडा जी के जो पिताजी थे उनका नाम सुगना मुंडा
0: जी जी।
1: और माता का नाम करमी हातो जी थे
0: जी जी।
1: और बचपन में मिशनरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त के लिए वे गए, किंतु बाद में बिरसा मुंडा जी जो है वे अपनी पारंपरिक संस्कृति और आदिवासी धर्म को अपनाया उन्होंने, और साथ ही लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान बनाने के लिए प्रेरित भी उन्होंने किया
0: जी जी जी, जी।
1: और बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है पन्नो भाई एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया
0: जी जी,
1: जिसे
0: जी।
1: उलगुलान यानी कि महाविद्रोह कहा जाता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: और उन्होंने अबुआ राज यानी हमारा शासन का नारा दिया
0: जी,
1: और
0: जी,
1: लोगों को न्याय के विरुद्ध संगठित भी उन्होंने किया था
0: जी जी।
1: बिरसा मुंडा जी का आंदोलन जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए
0: जी,
1: प्रमुख
0: जी,
1: रूप से थे
0: जी जी।
1: और ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव से घबराकर उन्हें जो है 1900 ईस्वी में मार्च में गिरफ्तार कर लिए थे
0: जी,
1: और
0: जी।
1: बाद में रांची जेल में उन्हें रखा गया था। दुर्भाग्यवश 9 जून यानी आज ही के दिन उनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गई, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में
0: जी जी जी। बिरसा मुंडा ने अपने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची थी। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न समझ पा रहा है, अनुग्रहण का कर पा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उस समय उन्होंने भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकी यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने तीन स्तर पर संगठित करना समझा था।
1: बिल्कुल। और पन्नू भाई, बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था वो इतना प्रभावशाली था कि बाद में ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की भूमि की रक्षा करने के कानून भी बनाने पड़े थे। और आज भी बिरसा मुंडा आदिवासी अधिकारों और स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक गिने जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: बिरसा मुंडा जी का जीवन जो है वो साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणादायक गाथा भी है। उन्हें कम आयु में ही आदिवासी समाज को संगठित कर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी उन्होंने, और उनकी पुण्यतिथि केवल श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि उनके आदर्शों, न्याय, समानता और स्वाभिमान को याद करने का अवसर भी है
0: जी जी।
1: धरती आबा यानी बिरसा मुंडा जी को उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग शत शत नमन करते हैं। और पन्नो भाई, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग एक प्यारा सा शिव भजन भी सुनते हैं।
0: जी जी, आइए हम लोग सुनते हैं एक शिव भजन।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Only for rupees 10.99 lakh, with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बाढ़ जी, महत्वपूर्ण संदेशों के बाद हम लोग अपने श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं।
6: जी, जी, जी।
5: और पन्नू भाई, जिंदगी में कई प्रकार की विधि विधान भी होती है, लोक भजन भी होते हैं, कुछ काव्य पाठ भी होती है, और भाषा का विकास, उच्चारण में सुधार, स्मरण शक्ति, ये सभी कहीं ना कहीं

0: काव्य पाठ से हम लोग का अवश्य जो है इससे कुछ जुड़ाव होता है और इसके
1: जी
0: लाभ
1: जी
0: भी हमें
1: जी
0: देखने को मिलते हैं। तो हम लोग भी एक काव्य पाठ सुनकर अपने आप को आनंदित होते हैं और श्रोताओं के साथ कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं।
1: जी जी ताइए हम लोग भी सुने एक काव्य पाठ।
2: के वाड़ी टोली बाड़ी के वाड़ी टोली दिल के संबत में जलाए नपका रोग कोरोना पकड़े ला गए ओकरा हम रोहाए।

दूरी, दिल कै संबत में जलाए, नपका रोग कोरोना पकड़े, लागे ओकरा हम रोहाय, लागे ओकरा हम रोहाय। अब नै बचबो नो ची लेलकै, अब नै बचबो नो ची लेलकै हमरो बांस गोहाली के, अब नै बचबै नो ची लेलकै हमरो बांस गोहाली के, कोलंग हालत भेगरियो छे फूल तोड़े में डाली के, कोलंग हालत भेगरियो छे फूल तोड़े में डाली के, अब नै बचबै नो ची लेलकै हमरो बांस गोहाली के, कोरंग हालत भए गेलै छै फूल तोड़े के डाली के, छोड़वा सब हँसै माने मन, छोड़वा सब हँसै माने मन, होली के शुभ गाली छै, अनकट लकड़ी रहे ये कितना उठो जगह सब खाली छै, अनकट लकड़ी रहे कितना इहो जगह सब खाली छै, सात जन्म तो रहे निपुटर, सात जन्म तो रहे निपुटर, अर्जी सुनियो सिखला माय, नपका रोग कोरोना पकड़े लागे ओकरा हम रोहाय, नपका रोग कोरोना पकड़े लागे ओकरा हम रोहाय, बुढ़िया के केवाड़ी तोड़ी दिल

भूत प्रेत सब हो गेल छै, अहो भूत प्रेत सब हो गेल छै, संबत के भसम लगाए, दिन भर धरपट होली चले, अहो दिन भर धरपट होली चले, अब पुआ पर आफत भाए, दिन भर धरपट होली।

जैते रामनवमी मेला में दाय लागते खर्चा की करबै हम, लागते खर्चा की करबै हम, पुछबै केकरा कन हम जाय, देखने छियै जे हम टुकबै, देखने छियै जे हम बुलबै, देथिन थरिया आगू बढ़ाय। पर बुढ़िया नहीं माने वाली, पर बुढ़िया

खाली हाय, नई के वाड़ी जे चोरल के ओकरा पड़ल खाली हाय। क्रिया से सब क्रिया से सब छौड़ा मिली के

छे पर नहीं छे ई सच्चा ज्ञान। सब छोड़ा किरिया खैने छो अब नहीं लेथो कोई समान। उत्पात में मोन लगे छे पर नहीं छे ई सच्चा ज्ञान। बिना जानकारी ले भैं तो हो जे भैं तो चोर महान।

जरा संबत में खाली खाली दिल के उकरा सब जरा। पुआ खेलो पूरी खेलो, पुआ खेलो पूरी खेलो कटहल की तरकारी, पुआ खेलो पूरी खेलो कटहल के तरकारी, दही बड़ा नहीं बनाए ले जानी, दही बड़ा नहीं बनाए ले जानी, छिए यह लाचारी प्रभु जी छिए यह लाचारी। रोटी भात पकाए वाली, रोटी भात पकाए वाली से हो गलो प्रभु बिहा, रोटी भात पकाए वाली से हो गलो प्रभु बिहा, केकरा इडली डोसा बोले कुछ भी नहीं पता। रोटी भात पकाए वाली से हो गलो प्रभु बिहा, केकरा इडली डोसा बोले कुछ भी नहीं पता। गोसाई में छो फर्स्ट डिवीजन, गोसाई में छो फर्स्ट डिवीजन, पढ़े में सत्यानाश कहो आम तो सुनथो इमली बेमतलब बकवास। रोटी भात पकाए वाली से हो गलो प्रभु बिहा, कहो आम तो सुनथो इमली कुछ भी नहीं पता। गोसाई में छो फर्स्ट डिवीजन, गोसाई में छो फर्स्ट डिवीजन, पढ़े में सत्यानाश कहो आम तो सुनथो इमली बेमतलब बकवास। बाप माय के बड़ी तिलौड़ी, पापड़ सन तरकारी, हमरा भरी थलिया गोसाई के ठेली दिलथो जारी। प्रभु जी यही हमर लाचारी, प्रभु जी यही हमर लाचारी। जूता दछने रहो देभो आय तलक नहीं देखो भाई, जूता गछने रहो देभो आय तलक नहीं देखो भाई, दरवाजा पर गाय घूमै छे देखो नहीं एको भेजवाए। जूता गछने रहो आय तलक नहीं देखो भाई, दरवाजा पर गाय घूमै छे हमरा नहीं भेजलखो आए। ओकरा पर ले लाही बेटी के अंग्रेजी शान, सुनी

0: सुनीता सीखी गेलै प्लीज कहेली राम। ओकरा पर लेला ही बेटी के अंग्रेजी शान, सुनी सुनीता सीखी गेलै प्लीज कहेली राम। जे बुद्धि के हीन रहे ओकरा की समझेबो, कहो न चली बाएं कहो चलेली बाएं, भागी दौड़ी जैथो दाएं आरु गरियैथो, प्रभु जी यही हमर लाचारी, प्रभु जी यही हमर लाचारी।
1: जी बहुत अच्छा आपने कवि पाठ सुना अनु भाई।
2: बिल्कुल,
1: क्या है कि कवि अपने मन का भाव जब सामने रखता है तो उसमें बहुत चीज आपको जो है सुनने को मिलता है, उसकी अनुभूति भी हो जाती है आपको।
2: बिल्कुल,
1: ये मेरे साथ हुआ है या मेरे घर में हुआ है या आस पड़ोस का जो परिवेश है वो आपको सामने रख देता
2: बिल्कुल,
1: है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कविता जो है आपको सुनने का मन भी बार बार करने लगता है
2: जी।
1: तो बहुत सुंदर काव्य पाठ हम लोगों ने सुना इतनी
2: जी।
1: अच्छी रचना के लिए अश्विनी कुमार सिंह को
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: और पन्नू भाई, कविता तो एक प्रकार की विधा है ही, जिसमें कई प्रकार के कवि जो है अपने जो है मन के भावों को और उद्गार को व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गीत के माध्यम से भी जो है हमारे गीतकार जो हैं वो भी अपने मन में कई प्रकार की जो बातें रहते हैं उन्हें प्रकट करने की चेष्टा करते हैं और प्रकट भी करते हैं। और राष्ट्र की संस्कृति और देश की पहचान के लिए कहीं ना कहीं देशभक्ति गीत ज्यादा आवश्यक होती है। उसमें देश की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, जीवन और समाज, सामाजिक व्यवहार सभी शामिल होते हैं। भारत की सांस्कृतिक विश्व की सबसे प्राचीन समृद्ध संस्कृतियों में से एक भारत की संस्कृति को माना जाता है पन्नू भाई
1: जी,
2: और
1: जी।
2: विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के बावजूद भारत के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारे संस्कृति, हमारे प्रेम, सहिष्णुता, समाज और भाईचारे का संदेश जो है कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति गीत के माध्यम से मिलती भी है। और देशभक्ति गीत से हमारे मन के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वह और भी प्रबल हो जाती है। तो हम लोग भी एक देशभक्ति गीत सुनकर अपने राष्ट्रीयता पर और भी गौरवान्वित करने का अवसर प्राप्त करते हैं।
1: जी जी, तो आइए हम लोग सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: कर लेते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में 13 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। 10 से 14 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ आंधी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने के अनुमान है। हालांकि भागलपुर एवं बांका में 13 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। आगामी तापमान अधिकतम तापमान इस दौरान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस पूर्वानुमान की अवधि में 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। नवीनतम जलवायु मॉडल पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान अलनीनो की परिस्थितियां विकसित होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बिहार राज्य में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है, धान में लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा एवं VPT 5502 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें।
1: बिल्कुल,
0: बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बेविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से जरूर उपचारित कर लें। और मक्का के लिए जो सलाह दी गई है अन्नो भाई, उसमें खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें।
1: बिल्कुल,
0: खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर, 50 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। और मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई किसान भाई कर लें। हरी खाद हेतु उसके पौधे को मिट्टी पलटवाने वाले

0: 53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्को कल्याण भीमा सुपर किस्में अनुशंसित की गई हैं। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार जरूर कर लें। बीज की दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और बागवानी में जो सलाह दी गई है अनुभ है उसमें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई करें और खाद उर्वरकों का प्रयोग आसमान साफ रहने पर ही करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60-80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें
1: जी।
0: और पशुपालन भाइयों से जो सलाह दी गई है उसमें गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम चारा दाना मिलाकर जरूर दें।
1: बिल्कुल,
0: ये प्रमुख सलाह थी अनु भाई
1: जी। और निश्चित रूप से इस सलाह से हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई जो है लाभान्वित होंगे और लाभ प्राप्त करेंगे भी। और अनु पन्नो भाई, अब जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लेते हैं
0: जी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
8: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जी, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और मृदा में उर्वरता कैसे बढ़े ये हमारे सभी किसान भाई जानते हैं, और उर्वरता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं आइए हम लोग एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानते हैं मृदा में उर्वरता बढ़ाने के उपाय। वार्ताकार हैं डॉक्टर ए के झा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: Most TVs keep you tied to the city.

अर्थात धरती के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व की एक जटिलतम समस्या है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु त्रस्त हैं। इसके प्रलयकारी रूप का जब मंथन करते हैं तो पूरी सृष्टि ही मृतप्राय दिखती है। इसका छोटा सा रूप केदारनाथ में अभी हाल के वर्षों में देखने को मिला, जिसे देखना तो दूर, सुनने के बाद भी रौवें कांप उठता है। विश्व के औसत तापक्रम में आई वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत अनावश्यक तापक्रम वृद्धि से उत्पन्न विश्वव्यापी खतरों को चिन्हित किया जाता है। विश्व के अधिकतर देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भांप लिया है। ग्लोबल वार्मिंग ने अपनी प्रचंडता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन पृथ्वी गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित व कुछ विकासशील देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन तथा भारत इत्यादि अनेक देश हैं जो इस विनाशकारी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। परमाणुवीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगों, लगातार बढ़ते प्रदूषणों आदि के कारण भूमंडलीय तापक्रम तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों तथा कल कारखानों में अप्रत्याशित वृद्धि ने तो वायु प्रदूषण को अनियंत्रित कर दिया है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि से पराबैंगनी किरणों का अंश पृथ्वी तक पहुंचने लगा है और हम त्वचा संबंधी अनेक रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। मूल प्रश्न यह है कि आखिर समस्त विश्व ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सजगता और एकजुटता क्यों प्रदर्शित करने लगे हैं। इसका एक ही मुख्य कारण है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले समस्त विश्व के अस्तित्व के खतरे। पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि से ध्रुवों पर जमी बर्फ लगातार पिघल रही है और ग्लेशियर का ह्रास होता जा रहा है। इससे महासागरों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाले प्राणियों तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां

या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पर है। वर्षा के वितरण में वह असमानता स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव का विभिन्न रूपों में इसका दंश झेलना पड़ेगा। दुनिया में भारी वर्षा, बाढ़, तूफान एवं चक्रवात जैसी आपात स्थितियां कहीं अधिक बढ़ना, गर्म अक्षांशों में वर्षा घटने से सूखे जैसी स्थिति से कृषि की पैदावार घटना, बर्फ की सर्दियों में तेजी से पिघलने से गर्मी में नदियों में पानी की कमी हो जाना, भारत जैसे देश में 7000 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है और भारत की चौथाई जनसंख्या तट के 50 किलोमीटर के अंदर बसती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जमीन दोगुने, खेत, घर, बस्तियों और नगर नष्ट होने, खारा पानी तटों पर अंदर आने जैसे खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। जो देश लगभग पूरे द्वीप हैं और समुद्र तट पर ही बसे हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों के लिए भारी खतरा है। मलेरिया जैसे रोगों और उन्हें फैलाने जैसी कीटों का दूसरे इलाकों पर हमला बोलना, धान जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों की खेती में कमी आना, इन सब प्रभावों की सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ेगी, जो बाढ़ और सूखे से अपने को बचा नहीं सकते, जिन्हें पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, जिनकी खेती केवल वर्षा पर निर्भर है, जो वनों पर निर्भर करते हैं और जो मछुआरे हैं आदि। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियाँ ही हैं। अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही अस्तित्व को खत्म करने पर तुला हुआ है। मानव निर्मित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है। ग्लोबल यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से पिछले 10 सालों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर मानव जाति पर ही पड़ेगा, जिससे बहुतेरे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपनी जान से हाथ धो लेंगे। गर्मी बढ़ने से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग बढ़ेंगे। वह समय भी जल्दी ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताज़ा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का असर दिखने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु एक करी है। इसमें यदि एक भी करी का अस्तित्व समाप्त होता है तो पूरी करी ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस तंत्र को बचाए रखने के लिए प्रत्येक करी को बचाना होगा। शहरी क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का असर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सघन आबादी होने के कारण शुद्ध हवा हमें नहीं मिल पाती है। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए हमें एयर कंडीशन, पंखा, कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी तकनीकी कारणों से या कभी बिजली की आपूर्ति कम मात्रा में उपलब्ध होने से लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सड़क जाम, रेल परिचालन में बाधा, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। एक तरफ हम अपनी सुविधा के लिए

0: के विभिन्न संयंत्रों का उपयोग कर राहत की सांस लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रभाव से भी हम नहीं बच सकते।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी ग्लोबल वार्मिंग पर दी, इसके लिए वार्ताकार संजय कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्नू भाई,
2: बिल्कुल
1: आइए अब हम लोग सुनते हैं एक कृषि गीत।
2: जी।

0: जी हमरो बलम हुआ बलम छह किसान है मन को आह्लादित कर दिया पन्नू भाई और श्रोताओं अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। अभी विदा दें सबको अन्नू का नमस्कार।
1: सबको पन्नू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजने को है रांची से, सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
1: भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। उन लोगों को नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित करता।
0: वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है।
2: लगभग 125 साल एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद।

0: चलते आ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी, जलापूर्ति योजनाओं के नियमित मॉनिटरिंग तथा जल सहियाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी भूमिका सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने तथा अनुपयोगी चापाकलों को रिचार्ज पिट के रूप में उपयोग करने के निर्देश भी दिए। झारखंड में पहली बार 16 से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला का आयोजन राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होने जा रहा है। राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेला इसलिए खास है क्योंकि इस मेले के जरिए किसानों, कृषि उत्पादों के व्यापारियों और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश हो रही है।
2: ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल किसान नहीं मगर किसान के साथ साथ व्यापारी, साथ ही साथ वैज्ञानिक गण, इसके साथ ही उद्यमी गण, तमाम लोगों को एक ही मंच में लाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट में आज वर्ष 2018 से लापता गुमला की 6 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले में दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें गुमला के एसपी और एसडीपीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की आरोपी महिला के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दिया गया है और सक्षम अदालत से अनुमति मांगी जा रही है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए मामले की प्रगति पर गंभीरता जताई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 7वें वेतन मान के तहत कर्मचारियों को अब 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। राज्यसभा चुनाव मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में पार्टी किसी भी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।
3: कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, क्योंकि हमारे साथ संख्या बल नहीं है, हम जोरपुर की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं।
1: पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्पादित रसीले आम अब देश की सीमाएं पार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से जिले के करीब 1.5 टन आमों की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप आज उपायुक्त राजीव रंजन ने लंदन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
4: जमशेदपुर को एक नया बाजार मिल रहा है जो कि विदेश यूके में अवस्थित है और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और भारतीय आम का स्वाद जो है वो विदेशों में पहुंचेगा। 1.5 टन जा रहा है फर्स्ट लॉट में, दूसरे देशों में भेजने का प्रयास चल रहा है जैसे दुबई।

0: वगैरह भी भेजने का ऐसा चल रहा है।
1: खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ की ओर से अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
2: खूंटी जिले के कुछ बच्चे और बच्चियां हैं, एट द सेम टाइम हमारे राज्य के भी बहुत बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने मेंस में हमारा गोल्ड और वुमेन्स में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। मेरी भी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भविष्य में भी हमारे राज्य हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक हॉकी से संबंधित है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम वगैरह की तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है। आने वाले टाइम में और भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होगा, उसको फुलफिल करके उनको बेहतरीन माहौल और सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत आइए सुनते हैं विधि व्यवस्था और पुलिसिंग। भेंट वार्ताकार हैं श्री राकेश कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कुसुमाकर दुबे।
1: श्रोताओं नमस्कार, विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार, आप भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। आपका हम अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं राकेश जी।
2: जी शुक्रिया,
1: और हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है विधि व्यवस्था और पुलिसिंग, इससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोतागण अक्सर सुना करते हैं ये शब्द विधि व्यवस्था, तो ये है क्या? विधि व्यवस्था हम किसे कहते हैं? और समझिए कि पुलिस की भाषा में या आम जनता को सही ढंग से समझा सकें उसके लिए आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
2: विधि व्यवस्था से आशय वैसी व्यवस्था से है जिसमें कानून का अनुपालन हो।
1: जी जी,
2: कोई भी गैर कानूनी कार्य ना हो।
1: जी,
2: और समाज में जो अमन चैन कायम है।
1: जी जी,
2: उसमें कोई व्यवधान ना हो।
1: जी,
2: तो जब भी समाज में किसी भी रूप में यदि वहाँ का अमन चैन डिस्टर्ब होता है,
1: जी,
2: तो इसका मतलब वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या है।
1: जी,
2: मसलन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए।
1: हाँ,
2: और जनता सड़क पे आ जाती है।
1: जी जी, कुछ लोग घेराव कर
2: देते हैं,
1: कुछ लोग तोड़ फोड़
2: या किसी अपराध से जनित कुछ घटनाएं घट जाए।
1: जी जी,
2: तो जहाँ भी समाज में अमन चैन प्रभावित होगा वो विधि व्यवस्था की समस्या कहलाएगी।
1: जी, एक ज़िले में मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं जो विधि व्यवस्था संभालते हैं?
2: जिले के तमाम पदाधिकारी,
1: जी,
2: सभी लोग इसके लिए उत्तरदायित्व हैं।
1: जी,
2: और सभी की जवाबदेही है कि वो विधि व्यवस्था का संधारण करें,
1: बनी रहे। लेकिन एक पुलिस विभाग से एक विशेष अधिकारी को जैसे आपको इसके लिए लगाया जाता है?
2: कह सकते हैं, लेकिन पुलिस में निचली पंक्ति से लेके सभी पंक्ति के लोग, सभी लोग इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं।
1: जी, तो वहाँ पर एक एकदम निचली व्यवस्था में जैसे मान लीजिए आपके कांस्टेबल हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है जब विधि व्यवस्था की कोई समस्या आती है तो?
2: एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि यदि एक ट्रैफिक सिपाही है,
1: जी,
2: और यदि वो किसी चौराहे पर खड़ा है,
1: जी,
2: और यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करेगा,
1: जी,
2: तो वहाँ की जो व्यवस्था है ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी। यदि वो अपने कर्तव्य में थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो वहाँ की व्यवस्था जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की,
1: जी,
2: वो गड़बड़ हो सकती है।
1: हाँ,
2: तो इसमें वहाँ उनकी भी भूमिका है।
1: जी, तो ये तो एक अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग मिल के शहर में अमन चैन कायम रखने की कोशिश करते हैं। और अब आपसे एक व्यक्तिगत सा प्रश्न कि आप इस शहर में कब से हैं?
2: इस शहर में मैं जुलाई 2014 में मेरी पदस्थापना हुई है।
1: जी,
2: तब से मैं,
1: और तब से ये विधि व्यवस्था काम देख रहे हैं। तो आप पहले भी कहीं रह चुके हैं इससे पहले पोस्टिंग आपकी?
2: जी, खुशी की बात है कि भागलपुर जिला में मेरा प्रोवेशन भी यहीं रहा है।
1: अच्छा,
2: अक्टूबर 2011 से जून 2012 तक मैं इसी जिले में
1: जी
2: अपनी सेवाएं दी थी एज ए प्रोवेशनर।
1: जी,
2: उसके बाद मेरी पदस्थापना जो है वो हुई मधुबनी जिले में फुलपरास अनुमंडल में।
1: जी,
2: तदुपरांत एक साल की सेवा हमने वहाँ दी।
1: जी,
2: उसके बाद खगड़िया जिले में गोगरी अनुमंडल में SDPO के रूप में कार्यरत था।
1: जी,
2: तत्पश्चात फिर भागलपुर में पुनः सेवा करने का मौका मिला।
1: जी, तो उन जगहों से और यहाँ की जब आप तुलना करते हैं, लगभग एक वर्ष आपको होने को है, यहाँ आपको कैसा लगता है? यहाँ आमतौर पर विधि व्यवस्था के बारे में आप क्या

0: टिप्पणी करेंगे, कैसा महसूस होता है यहाँ अन्य जगहों की तुलना में?
1: मुझे लगता है भागलपुर अपने आप में एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है।
0: जी,
1: यहाँ पे बिल्कुल बहुआयामी और बहुस्तरीय तरीके की चीज़ें सीखने और समझने को मिलता है। चाहे आप विधि व्यवस्था की बात करें, चाहे अपराध नियंत्रण की बात करें, या ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, या फिर कॉमनल एंगल से बात करें, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पुलिसिंग का एक इंस्टीट्यूशन है भागलपुर। तो ये सौभाग्य की बात है, यहाँ पदस्थापना हुई मेरी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है।
0: जी, तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास करते हैं कि अमन चैन बना रहे?
1: मेरा प्रयास दो स्तरीय है, एक समाज के स्तर पर, एक विधि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के स्तर पर। समाज स्तर पर ये है कि मेरा हमेशा प्रयास होता है कि पुलिस और जनता के बीच की जो दूरियां है, जो खाई है,
0: जी जी,
1: उसको मैं किस प्रकार कम कर सकूं। इसके लिए मेरा माध्यम खेल होता है।
0: अच्छा।
1: खेल के माध्यम से मैं लोगों से जोड़ता हूँ। कुछ सामाजिक कार्य है
0: जी,
1: गरीब बच्चों के लिए या फिर बेसहाराओं के लिए कुछ हम लोग के स्तर से प्रयास किए जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन आए।
0: जी,
1: तो इन माध्यम से जनता और पुलिस की जो दूरी है उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। और विधि व्यवस्था में जो अपराध है, अपराधियों के प्रति नियंत्रण लगाने के लिए हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं।
0: जी, आप किस खेल से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं?
1: जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बैडमिंटन और क्रिकेट से यहाँ जुड़ा हूँ।
0: अच्छा, तब तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाके मैदान में खेलते होंगे।
1: जी जी जी, मेरा सुबह का समय जो है सैंडिस कंपाउंड में,
0: अच्छा,
1: कुछ घंटे में व्यतीत होता है,
0: बैडमिंटन में भी और थोड़ा क्रिकेट में भी।
1: जी,
0: तो कुछ लड़कों को लेके आपने टीम भी बना ली होगी?
1: जी जी,
0: तो उससे मैच वगैरह भी होते रहते हैं आपस में या दूसरी टीमों से कुछ?
1: नहीं, बेसिकली ये मैच तो एक खिलाड़ियों के स्तर पे है। अमूनन होता ये है कि हम जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों वर्सेस प्रशासन का मैच रखते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे उनका अच्छा पार्टिसिपेशन होता है।
0: जी जी,
1: और वो सहज रूप से हमसे जुड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि पुलिस प्रशासन हमारे बीच का अंग है। जो एक दूरी है, एक जो झिझक है पुलिस के प्रति, वो उनके अंदर से खत्म हो जाती है।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आमतौर पे देखा जाता है कि जो शहर के विभिन्न थाने हैं तो वहाँ आम लोग जाने से कतराते हैं, लोग मतलब एक डरते हैं, एक माहौल भय का है। इसमें आपको क्या लगता है, कैसे माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए क्या होना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में कि पुलिस जो है वो संवेदनशील रहे।
0: जी,
1: और काफ़ी इसमें सकारात्मक जो है इसमें सुधार भी हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे पुलिस पर्सनल हैं जिनको और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है।
0: जी,
1: उस दिशा में हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं।
0: जी,
1: और ये तभी संभव है जब हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में हो दूसरे व्यक्ति को संवेदनशील बनाए। सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से ये संभव नहीं है।
0: नहीं है,
1: उसमें सेंसिटाइजेशन उसके अंदर वो डालना होगा, उसे समझाना होगा।
0: जी जी जी, आप जैसे युवा और कर्मठ पदाधिकारी की भूमिका यहाँ उभर के आती है। एक बात और देखना होगा कि प्रायः हमारे जो कांस्टेबल हैं उनके रहने की जो दशा है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। उनके क्वार्टर प्रायः मेंटेन नहीं होते हैं, बरसात में तो चूते रहते हैं, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, इसलिए वो स्वभाव से उग्र हो जाता है और थोड़ा एक अजीब सा व्यवहार करने लगता है। तो इसमें भी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की कुछ भूमिका हो सकती है कि उनको रहने सहने की ठीक ठाक व्यवस्था दी जाए, ड्यूटी के घंटों का ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा लोड नहीं पड़े उन पर। और अभी हाल में तो कुछ भर्तियों का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है?
1: इस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहा है
0: जी,
1: और जो व्यवस्थाएं थी उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार भी हुआ है
0: जी।
1: और हम मानते हैं कि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है
0: जी,
1: लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से बहुत सुधार हुआ है।
0: एक ट्रैफिक पुलिस पर कितने घंटे की ड्यूटी उसकी रहती है, कांस्टेबल की जो ट्रैफिक में होता है आमतौर पे आप विधि व्यवस्था संभालने के लिए?
1: अमूनन तो 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक पुलिस पर्सनल जो है
0: जी
1: उसका ड्यूटी का आवर कोई नहीं, ही इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प।
0: अच्छा, जहाँ भी जब भी जरूरत पड़े। तो भागलपुर ज़िले को कुछ नए पुलिस के जवान मिलेंगे तो उसके बाद तो फिर ट्रैफिक की भी दशा को सुधरनी चाहिए और पुलिस वालों की भी कुछ सुधरनी चाहिए, कुछ भार कम होगा क्या?
1: हाँ जी ठीक कह रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है यदि वो फुलफिल हो जाता है, मैन पावर यदि बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट सर की प्लेसिंग पे दिखेगा ही।
0: जी यहाँ पर भागलपुर में वैसे तो आप लोगों ने विधि व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत कुछ किया और हमेशा संभालते हैं, यहाँ वैसी कोई बड़ी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। जैसा आपने कहा ही है बहुत सेंसिटिव है, उसके बावजूद तो आप लोगों की भूमिका सराहनीय है। लेकिन एक क्षेत्र है ट्रैफिक का, वहाँ प्रायः दिक्कत आती है। आमतौर पर लोग कहते हैं अरे भागलपुर शहर अब गाड़ी लेके चलने लायक नहीं रहा, मतलब इस टाइप की ये बन जाती है माइंडसेट। और कभी कभी आए दिन हम देखते हैं ट्रक ने फलां को रौंद दिया, ये किया, तो इसमें कुछ सुधार होगा आने वाले समय में?
1: देखिए मुझे लगता है ट्रैफिक व्यवस्था को एक बहुआयामी स्तर से देखना होगा।
0: जी।
1: जिस प्रकार की भागलपुर में सड़कें हैं,
0: जी।
1: इस बात से आप भी इनकार नहीं
0: जी
1: करेंगे
0: जी
1: कि जितना इसका चौड़ीकरण होना चाहिए वो
0: हाँ
1: है नहीं।
0: है नहीं।
1: जो डेंसिटी है जनता की और यहाँ के व्हीकल्स की, जो मूवमेंट की है,
0: जी।
1: हर घर व्यक्ति के पास गाड़ी है
0: हाँ
1: और सड़कें तो उतनी ही है,
0: जी
1: मूवमेंट हो रही है। मतलब छोटी छोटी आप लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि उन्हें 100 मीटर की भी दूरी तय करनी है तो बाइक लेकर जाएंगे साइकिल।
0: जी
1: तो इसमें फुल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन तो काम कर ही रही है, वो तो भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जो यहाँ के हमारे दुकानदार भाई हैं उनको
0: जी।
1: भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि व्यवस्था के वो भी पार्ट है, उस व्यवस्था में वो भी अपना सहयोग दे।
0: हाँ वो सड़क पर दुकानें
1: एक
0: लगा देते
1: डिसिप्लिन
0: हैं।
1: वे में यदि हर व्यक्ति रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका असर सब जगह दिखेगा।
0: जी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिना जनता की भागीदारी के व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। और अगर विधि व्यवस्था अच्छी रहती है, शांति बनी रहती है, निश्चित रूप से ये जनता की भूमिका है। लेकिन ट्रैफिक वगैरह वगैरह सब संभालने के लिए पुलिस के साथ मिलके काम करना। अगर आप मान लीजिए कोई आता है आपके पास किसी शिकायत को लेके, तो वक्त देते हैं किसी आदमी को, उपलब्ध रहते हैं? आपका कार्यालय कहाँ पर है?
1: मेरा कार्यालय कोतवाली में है
0: अच्छा
1: और हमारा नंबर सभी जगह उपलब्ध है। किसी भी वक्त रात के 2 बजे 3 बजे जब भी ज़रूरत होता है लोग मुझे कॉल करते हैं और हम उनकी बात सुनते भी हैं, और कई बार दफ़ा ऐसा हुआ कि पर्सनली हम रिस्पॉन्ड भी मैंने किया है।
0: देर से भी जाना, रात में भी जाना पड़ता होगा,
1: जी
0: कहीं
1: जी जी
0: अचानक जाना पड़ता होगा। तो एक बार फिर से नंबर बता दें हमारे श्रोताओं के लिए, जो आपसे चाहें तो कभी भी मिल लें, फ़ोन कर लें।
1: जी मेरा नंबर है 9431
0: जी
1: 822601।
0: जी तो 9431822601। तो
1: जी
0: श्रोताओं आपने ये नंबर सुना, आपको जैसा कि श्रीमान ने बताया, जब भी कभी आवश्यकता हो और लगे कि आपको पुलिस की ज़रूरत है, मदद चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राकेश जी उसे उठाएंगे और आपकी भरपूर सहायता करेंगे, जैसा कि आपने बताया है। तो राकेश जी, अब पुलिसिंग से संबंधित बहुत सारी बातें हुई विधि व्यवस्था में आपके प्रयास से भी, अब हम चाहते हैं अपने श्रोताओं को कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाए। आप युवा हैं, आपकी आपका व्यक्तित्व बहुत ही जिसे कहेंगे आकर्षक वो है, और उम्र कम है, तो आप ये बताएं कि आपने बिहार लोक सेवा की परीक्षा कब पास की थी? आपने कुछ चर्चा भी की 2010 की, तो चाहते हैं फिर से इस पर एक चर्चा हो जाए। कहाँ उस समय पढ़ रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मेरा पैतृक जिला मुजफ्फरपुर हुआ,
0: जी
1: मैंने स्नातक की पढ़ाई वहीं से की।
0: जी
1: उसके बाद दिल्ली से मैंने MA और LLB की पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
0: जी जी
1: UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज का,
0: जी
1: दो दफ़े इंटरव्यू साक्षात्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ
0: वाह चलिए
1: और फाइनली फिर हमारा सिलेक्शन यहाँ बिहार में
0: यहाँ
1: हुआ।
0: हुआ।
1: उसके बाद हमने 2010 में
0: जी
1: यहाँ योगदान दिया।
0: तो ये आपका MA का विषय क्या रहा?
1: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
0: जी तो आपको क्या लगता है, लोक सेवा आयोग में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाए तो सफल होने के अवसर बढ़ते हैं?
1: बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप लोक सेवा में आ रहे हैं तो वहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ही डील करना है। तो इस
0: जी
1: कंसेप्ट को समझने और क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
0: जी तो आपकी व्यक्तिगत रुचि बैडमिंटन और क्रिकेट में, इसके अलावा मनोरंजन के लिए किस क्षेत्र में आपकी रुचि है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सिनेमा में, संगीत सुनने में?
1: मुझे सांस्कृतिक जो भी गतिविधियां हैं सब में मेरी विशेष रुचि है, खासकर संगीत में।
0: जी परिवार में कौन-कौन लोग हैं अभी आपके साथ?
1: मेरी माता जी हैं,
0: जी
1: मेरी धर्मपत्नी हैं
0: जी
1: और एक मेरा छोटा बेटा है 2 साल का।
0: बात। और कुछ जो छात्र हैं हमारे, उनको जब जरूरत होगी, वो चाहते हैं कुछ अनुभवी अधिकारी उनकी मदद कर दें, तो क्या उस समय भी आपकी मदद ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा सुझाव होगा कि यदि
0: जी
1: अपना एक टाइम डिसाइड कर लें तो हम ग्रुप में जाके बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
0: जी
1: वन टू वन से बेटर होगा कि एक ग्रुप
0: जी
1: को
0: जी
1: क्रिएट करें और उस ग्रुप के
0: जी
1: साथ हम
0: एक
1: एसोसिएट हो
0: जगह
1: सकते हैं।
0: निर्धारित करें और वहाँ आप कुछ सुझाव दे सकते हैं अपने।
1: जी
0: तो श्रोताओं, हमारी बातचीत अभी हो रही थी भागलपुर के विधि व्यवस्था के पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार जी से। जैसा कि आपने विधि व्यवस्था के बारे में विभिन्न बातें की और साथ में छात्रों को भी कहा कि अगर चाहें तो उनके सिविल सेवा की तैयारी में भी मदद करेंगे, आप आए हमारे स्टूडियो में राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपने भी रेडियो सुना, आपको भी धन्यवाद। और आप लिखिएगा ज़रूर कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हज़ार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
4: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
3: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
4: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
3: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने

0: की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थाओं को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को पिछले 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह श्री मोदी में देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में अब नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।
1: डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहाँ भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए, कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करेंगे। रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है, और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे।
0: राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर रही है।

0: इस नियमावली को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।
1: कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने के हम एक बिहार राज्य कोचिंग नियमावली भी बना रहे हैं, जो अगले 3 महीने के अंदर उसे लागू करेंगे और सबको उसके दायरे के अंदर लाएंगे। उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएंगे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना।
0: श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। श्री प्रधान ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई निर्देश जारी किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के पटना, दरभंगा, मोतिहारी समेत 34 जिलों के 35 शहरों में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग के समन्वय से उन्हें विशेष विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या फर्जी प्रश्न पत्र प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का एक कार्यक्रम था, जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज पटना से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पटना से

संसार की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य का दक्षिणी हिस्सा जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उलानबटार में दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गंदन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ हुए इन समझौतों से बौद्ध विरासत और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: नालंदा विश्वविद्यालय का पहला ऐतिहासिक समझौता उलानबटार के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ हुआ है। ये साझेदारी दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है, जिसके तहत दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त अनुसंधान और प्राचीन नालंदा की ज्ञान परंपरा को सहेजने पर काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और छात्र संकाय आदान प्रदान कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। समाचार कक्ष से निखिल आनंद गिरी।
0: एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है।
3: बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहे।
0: पत्रकारों से बातचीत में सावन कुमार ने कहा कि विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है।
4: एज अ गोलकीपर अभी अंडर 18 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप में हमारा गोल्ड मेडल, काफी अच्छा फील हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में काफी डेवलप किया गया, तो उस चीज को लेकर मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ।
0: पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक स्विट्जरलैंड की महिला और एक म्यांमार का युवक शामिल है। दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सभी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने को लेकर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौड़ बालूखाट स्थित चालान सेंटर से अपराध

0: अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने 2 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के 3री मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नाव सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में आगामी खरीफ मौसम की तैयारी तेज हो गई है। इन दिनों किसान धान के बिचड़ा डालने और बीज खाद की व्यवस्था में जुट गए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नहरों और वितरणियों में अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुँचाने और जल जमाव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से किसान रजिस्ट्री कराने की अपील की है। इससे पीएम किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, उर्वरक वितरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सुविधा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। आपात स्थिति में 101, 112 और जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उद्योग के क्षेत्र में रोहतास जिले ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, महिला उद्यमी योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन में बेहतर क्रियान्वयन के कारण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन को पटना में सम्मानित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15 जून तक 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निगरानी करने को कहा है। महिला और बाल विकास निगम ने आलमपुर पंचायत में सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 100

0: 12 की जानकारी दी गई। सहयोग शिविर अभियान के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। गत दिनों शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी आवेदन को 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत चेनारी, नौहट्टा, रोहतास और तिलौथू प्रखंड के 19 गांवों में स्वास्थ्य शिविर और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं पहुँचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कम ओपीडी वाले चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए चेनारी प्रखंड के जवान दिलीप कुमार पासवान के परिजनों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की है। जिला प्रशासन ने इसे शहीद परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रतीक बताया। सासाराम में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव में रील प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा, विचार गोष्ठी और सूफी संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जिले के सभी 281 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माँ, सशक्त भारत थीम के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच, फोलिक एसिड वितरण तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान पर विशेष जोर दिया गया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास वन प्रमंडल, मनरेगा और जिला प्रशासन ने जिले में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश दिया गया। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। मेयर काजल कुमारी के अनुसार सड़क, नाली, पेयजल और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी 1598 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से सैकड़ों योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों ने सासाराम जंक्शन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिले के डेहरी में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व बकरीद जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल प्रशासन ने सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों को तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया गया, साथ ही तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सासाराम के अंचलाधिकारी, उनके सहयोगी तथा सदर अस्पताल के कर्मी को अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में गिरफ्तार अधिकारी और कर्मचारियों को पटना लेकर चली गयी।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। आज के फनकार हैं अभिजीत आनंद। आरंभ में इनसे सुनिए नीरज की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे हैं अभिजीत आनंद को। आप सुनिए नेपाली की ये रचना।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुन रहे थे अभिजीत आनंद को, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनिए आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित सुर संगम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भागलपुर द्वारा भव्य समारोह मनाया गया, जिसे नाम दिया गया सुर संगम। स्थानीय वृंदावन हॉल में आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में संगीत, संवेदना, संस्कृति और संवाद की अनुपम छटा बिखरी। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित इस कार्यक्रम से ये संदेश भी गया कि आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि भारत की धड़कनों का संगीत है। इस अनूठे कार्यक्रम में भावनाओं का ज्वार था, यादों का पिटारा था, तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक समारोह का माहौल भी था। संगीत, संवेदना, संस्कृति और संवाद की उस अमर धारा को मेरा सादर प्रणाम, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों की सुबहों को आवाज दी, जिसने अकेलेपन में साथी बनकर दिलों को सहलाया, जिसने खेतों से लेकर सीमाओं तक, गांवों से लेकर महानगरों तक भारत की आत्मा को स्वर दिया। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं आकाशवाणी की, उस आकाशवाणी की जिसकी आवाज सुनकर कभी गांव की चौपालें सजती थीं, जिसकी समाचार धुन सुनते ही लोग घड़ी मिला लिया करते थे और जिसकी मधुर उद्घोषणा सुनकर करोड़ों भारतीयों की सुबह होती थी। सभी का स्वागत है, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और आज के कार्यक्रम की होस्ट अनिमा, और मेरे साथ हैं
1: प्रत्यक्ष कुमार। तोड़ना है हर पिंजड़ा, हमारी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है, और समंदर का थमना नहीं लहरों की बेबसी, अंदर खामोशी सही, बाहर अभी तूफान बाकी है, बाहर अभी तूफान बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, स्वागतम, सुस्वागतम, हेलो एंड वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल। संगीत, संस्कृति और सबको की इस खूबसूरत सी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
0: आज का ये अवसर केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन अनगिनत आवाजों को नमन करने का क्षण है जिन्होंने माइक्रोफोन के पीछे बैठकर पूरे देश को एक परिवार बना दिया। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भारत के उस महान संस्था के गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव मनाने, जिसे हम गर्व से कहते हैं आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर अतुल कुमार प्रदर्शन के संयोजन में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा आकाशवाणी भागलपुर के सभी कार्यक्रम अधिशासी तथा आकाशवाणी भागलपुर के सभी सम्मानित सेवानिवृत्त सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत।
0: मैं सादर आमंत्रित करना चाह रही हूँ मंच पर सबसे पहले हमारी सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी विदुषी नौमी शांति हेमरम जी को। कृपया आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्री अखिलेश सिंह जी को। आप कृपया मंच पर आएं।

0: बहुत ही गर्व के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जेपी मिश्रा जी, सेवानिवृत्त वरीय उद्घोषक, आप कृपया मंच पर आए। विदुषी डॉक्टर मीरा झा, जोरदार तालियों से स्वागत। एक युग को इन्होंने रेडियो सुनाया है, दशकों तक इनकी आवाज रेडियो पर गूंजती रही है। गर्व से हम उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री गिरेंद्र साह, सेवानिवृत्त लेखापाल, आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं मंच पर। श्री हलधर चौधरी, हमारे सेवानिवृत्त एमटीएस, और श्री कैलाश हरी, सेवानिवृत्त एमटीएस। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजीव कांत मिश्र सर को, जो शहर का एक जाना पहचाना नाम और हर किसी को अपनी छांव देने को हमेशा तैयार रहते हैं। मंजूषा कलाकार श्री मनोज पंडित, हमारे मुख्य अतिथि जिला कला संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन सर, ससम्मान मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। और अब मैं हमारी कार्यक्रम अधिशासी मैम पार्वती के, हमारे कार्यक्रम अधिशासी मोहम्मद सरशार अहमद, कार्यक्रम अधिशासी श्री सौरभ कुमार सर, और अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री अतुल कुमार प्रियदर्शन सर को। आप सभी यहाँ मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्यामानंद झा सर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आकाशवाणी के लिए उन्होंने सैकड़ों धुने बनाई, जिन्हें हम आज भी सुनते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते हैं। आप सभी हमारे गौरवपूर्ण पलों का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत कुछ हमने आप सभी से सीखा है। और दीप प्रज्वलन,
1: दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हरतु नेपापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते।
2: कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि तथा आकाशवाणी भागलपुर से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं पौधा देकर सम्मान किया गया। इस कड़ी में सबसे पहले सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी नौमी शांति हेम्ब्रम को कार्यक्रम अधिशासी समन्वय श्री पार्वती के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए नौमी शांति हेम्ब्रम।
3: नमस्कार सभी सम्मानित अतिथिगण, श्रोतागण, और आज एक बार फिर आप सबों के बीच आकर के पुरानी जो हमारी यादें हैं वो ताज़ा हो रही है। तो अभी और सचमुच हम आज के इस दिन के लिए आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। आकाशवाणी भागलपुर के अपने सभी जितने मित्रगण हैं, आकाशवाणी परिवार के सदस्यगण हैं, सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं। आपने याद किया, वैसे तो मैं भागलपुर में कम ही रहती हूँ, लेकिन आपने सादर हमें बुलाया और आपके बीच आना सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि 34 वर्षों तक हमने आप सबों के साथ, आप सबों के बीच इस आकाशवाणी के जो भी दायित्व रहे उसे हमने पूरा किया है। आप सबों का भरपूर सहयोग मिला तो हम आकाशवाणी में आए, संयोग ही कहें, पर ये बहुत ही अच्छा सुखद हमारा सफर रहा, हमारी यात्रा रही। और सच पूछा जाए तो आकाशवाणी में आने के बाद हमने इस बात को महसूस किया, यूँ तो छात्र जीवन में भी हमने कई भाषण प्रतियोगिताओं या वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पुरस्कार भी जीते, लेकिन आवाज़ की एक जो अभिव्यक्ति होती है, आवाज़ की जो एक पहचान होती है, वो आकाशवाणी में आने के बाद ही मुझे मिली। और मैंने जाना कि सचमुच आकाशवाणी आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें यही आना चाहिए था। आकाशवाणी ही वो एक छिपा हुआ लक्ष्य था जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी शायद। और यहाँ आने के बाद सचमुच बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम एक साथ, कह लीजिए एक सेकंड में, एक मिनट में बहुत लोगों के बीच पहुँचते थे। चूंकि हम ये समझते थे कि हमारे सुनने वाले सिर्फ विद्वान

0: ही नहीं है। हमारे सुनने वाले जो शिक्षित नहीं भी हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो कुली रिक्शा चालक हैं, हम उन सबके लिए कार्यक्रम करते हैं और उन सबको ध्यान में रखकर हमें अपने प्रसारण को करना पड़ता है। आज हमारे पास कई तरह की स्वतंत्रता आ गई है। हमने भारत सरकार के दौर में आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो को देखा, प्रसार भारती के दौर में भी देखा और कई तरह के बदलाव भी आते हुए देखे, लेकिन वो एक सोच जो जन जन से जुड़ने की सोच, वो एक सोच जो हर किसी के कल्याण की सोच होती है, वो हमेशा बनी रही है, आज भी बनी हुई है। और मैं इस बात के प्रति उम्मीद जाहिर करती हूँ कि हमारे बाद जो हमारे साथीगण हैं वो भी इस परंपरा का निर्वाह करेंगे। भले ही समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हों, लेकिन मूल रूप से आकाशवाणी की जो भूमिका लोगों के बीच में रही है वो अनवरत बनी रहेगी और लोगों के कल्याण की बात, लोगों के भलाई की बात, और जो हम कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा देना, सूचना देना, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी को निर्बाध रूप से चलाने में अभियांत्रिकी विभाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी कड़ी में विशेष रूप से सम्मानित किया गया सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अखिलेश सिंह को। अपने कार्यकाल की यादें साझा करते हुए अखिलेश सिंह,
2: वाकई आकाशवाणी में जो आवाज़ आती है वो आवाज़ पहुँचाने वाले मतलब उसके पीछे ही रहते हैं, वो उससे छिपे हुए ही रहते हैं, लेकिन उसकी भी भूमिका कहीं कम नहीं है, बड़ी महती उसकी भूमिका है। और आज के समय में उसकी भूमिका और बढ़ गई है, जैसे जैसे ये तकनीकी प्रोग्रेस हो रहा है, तकनीकी सुधार हो रहा है, तकनीक विकसित हो रहा है, उसके साथ हमारे तकनीकी भाइयों को भी कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना पड़ता है, तभी पूरे यंत्र को सही से चला पाएंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मिसलैप होगा और वो काम नहीं कर पाएंगे। और आकाशवाणी में मैंने 34 साल तक सेवा दी और आज इस अवसर पर हम लोगों को भी आमंत्रित किया, ये बहुत अच्छा लगा।
3: हो जाता है
2: 90 साल पूरा होने के समय हम शरीक हो रहे हैं, हम लोग आपस में शरीक हो रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम को हमारे जिन साथियों ने आयोजन किया और इसको यहाँ तक, इस मुकाम तक लाया, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि भाई हम लोगों को एक गेट टुगेदर होने का मौका मिला। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ।
4: नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अखिलेश जी के साथ फिर से दोबारा खड़ा हूँ। अखिलेश जी जो हमारे रिटायर्ड एई साहब हैं, इनमें क्या खास बात था? बहुत ही शांत, प्रशांत महासागर जितनी शांति इनके अंदर थी। कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं चिंता कर रहा हूँ कैसे होगा, क्या करना, जल्दी कीजिए, हो जाएगा सर, बस इतना बोलना कि हो जाएगा सर, दिल को बहुत सुकून देता था। तो ये इनमें खास बात है, जिस तरह अभी शांत हैं उस टाइम वैसे ही शांत रहते थे। कितना कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, आप जानते हैं आकाशवाणी लाइव जाता है, अधिकतर प्रोग्राम लाइव ही जाता है, अनाउंसमेंट लाइव होता है, और अगर उस समय कुछ समस्या हो जाती है तो बहुत चिंता की विषय हो जाती है, लेकिन उस समय कंट्रोल करना, संयम से काम लेना और ये बोलना सर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस यही मेरे लिए बहुत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आप आए, बहुत बहुत।
1: एक श्रोता का रेडियो से जो परिचय होता है, जो आत्मीयता होती है, उसके पीछे किसी उद्घोषक की मधुर आवाज ही होती है। माइक्रोफोन के पीछे बैठा एक उद्घोषक पूरी दुनिया को रेडियो से जोड़ता है। आकाशवाणी भागलपुर द्वारा आयोजित सुरसंगम कार्यक्रम को एक अनूठा पल तब मिला जब उसके दो सेवानिवृत्त उद्घोषक एक साथ इस मंच पर उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम अधिशासी समन्वय श्री पार्वती के ने डॉक्टर मीरा झा, जिन्होंने आकाशवाणी भागलपुर को अपनी लंबी सेवा दी, उनका सम्मान किया। इस अवसर पर अपनी यादों का पिटारा जैसे उन्होंने खोल दिया। इस पिटारे में भावनाएं थीं, पुराने वक्त की बातें थीं और नए आने वालों के लिए ढेरों सीख भी थी।
5: क्या बात है, डॉक्टर मीरा झा को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने पूरे जीवन की आकाशवाणी तक की यात्रा बताई। और मैम, आप हमारे लिए वो बरगद के पेड़ हैं जिसकी जड़ें बहुत जमीन में धंसी बहुत अंदर तक होती हैं, लेकिन बरगद की एक खासियत होती है कि वो हमेशा आने वाले नए पत्तों का, नए कोपल पत्तों का स्वागत करता है। मैम का स्वभाव ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम हमारे बीच जीपी मिश्रा सर को सबसे पहले मंच पर उपस्थित होने के लिए कहेंगे और हमारे कार्यक्रम अधिशासी सौरभ कुमार उपस्थित होंगे। उन्हें आज हम यादगार मोमेंटो देकर आज के दिन को खूबसूरत। और
6: सबसे पहले तो आदरणीय अतिथिगण, आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों, अधिकारियों और उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसका हिस्सा बनने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी अवसर पर ये सम्मान भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आकाशवाणी परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और दो शब्द आपसे जरूर कहना चाहेंगे इस अवसर पर। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से काम करती है, इससे तो हम सभी लोग अवगत हैं, जानते भी हैं। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचते हैं। मैं जब 20 जून 1992 ईस्वी को आकाशवाणी में अपना योगदान दिया तो मैंने सोचा कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से तो पहुंचते ही हैं, लेकिन उन चीज़ों को धरातल पर कैसे उतारा जाए। हम उन चीज़ों को धरातल पर उतारने की दिशा में हमने पहल किया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की एक पुस्तक है, भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा, उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर एक परिचर्चा आयोजित की गई। उस परिचर्चा का विषय था भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा के आलोक में राष्ट्र उत्थान में हमारी भूमिका। हम सभी लोग जानते हैं कि आकाशवाणी जब किसी को आमंत्रित करती है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय जब लोगों से अपील करते हैं उस पुस्तक के 297 पृष्ठ में उन्होंने उल्लेख किया है कि आप भारत के नागरिक हैं, शिक्षक हैं, बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासक हैं, देश के हर नागरिकों से उन्होंने अपील किया, सभी संस्थाओं से अपील किया और मीडिया से उन्होंने कहा कि आप ऐसी खबरों को सामने लाइए जो सच्ची हो और लोगों को प्रेरणा मिल सके। और उनके आह्वान और अपील के आलोक में मैंने भी पहल किया और उस पहल आज भी वो पहल जारी है, रिटायरमेंट के बाद भी। और उस पहल के आलोक में श्रमदान से 3 किलोमीटर रोड भी बनवाने की दिशा में मैंने पहल किया। आज़ादी के बाद वहाँ रोड नहीं बनी थी, उस गांव में एक पुस्तक भी लिखने का मुझको मौका मिला और इस तरह से हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई वो यात्रा आदर्श ग्राम तक, आदर्श प्रखंड तक पहुँची और अनेक समाज उपयोगी कार्य इस दौरान किए गए और एक सक्सेस स्टोरी हम बना रहे हैं।
1: साथ में थे सेवानिवृत्त उद्घोषक जयप्रकाश मिश्र, जिन्हें सम्मानित किया कार्यक्रम अधिशासी सौरभ कुमार ने। सम्मान समारोह की इस कड़ी में अगला सम्मानित नाम था गिरिंद्र साह का, जो सेवानिवृत्त लेखापाल थे आकाशवाणी भागलपुर के। इन्हें सम्मानित किया कार्यक्रम अधिशासी मोहम्मद सरशार अहमद ने। सेवानिवृत्त कर्मचारी कैलाश हरि और हलधर चौधरी का सम्मान कार्यक्रम को बेहद भावुक पल दे गया। कार्यक्रम अधिशासी मोहम्मद सरशार अहमद के हाथों सम्मानित होने के बाद

0: बोलते हुए कैलाश हरे।
1: 8 फरवरी 1980 को आकाशवाणी में अपना योगदान दिया था। उस समय काफी स्टाफ की भी, हेल्पर की भी, अपना बिल्डिंग की भी कमी थी, लेकिन उस समय हम जो आए हैं तो देखें एक चीज कि हम बहुत छोटे परिवार से आए हैं। यहाँ आए तो हमको लगा कि सब अपना परिवार है। ये जो हमको मिला, बहन है, भाई है, दादा है, चाचा है, हमारे अधिकारी हैं, हमको लगा इतना बड़ा परिवार में हम कहाँ। मेरा सौभाग्य है और मेरा जीवन भी सफल हुआ। आज भी अगर कोई मिल रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, लगता मेरा बहन है, लगता मेरे बड़े भाई हैं। ये जो संस्कार यहाँ मिला, आजीविका तो सबसे जुड़ा हुआ, लेकिन ये मैं एकदम हृदय से कहता हूँ, यहाँ अगर किसी को चाय भी पिलाना पड़ता है तो हमारे जितने स्टाफ हैं उस समय, और 80 का जो टाइम था उस समय, जैसे आपका बिल्डिंग नहीं थी, हम लोग जंगल भी काटे, बिल्डिंग बनवाए, लेकिन हकीकत में लगा उस बिल्डिंग में अगर कोई है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा तीनों है और वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और मैं 37 साल 6 महीना 22 दिन काम किया, आज जो आप लोगों का अपार प्यार मिला भैया।
0: आकाशवाणी भागलपुर के सेवानिवृत्त संगीत रचनाकार शंकर मिश्र नाहर और शिक्षाविद राजीव कांत मिश्र की उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही थी। इन्हें सम्मानित किया कार्यक्रम अधिशासी सौरभ कुमार ने। अपने उद्गार व्यक्त करते हुए शंकर मिश्र नाहर,
2: आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आकाशवाणी भागलपुर के जितने भी हमारे स्टाफ हैं, पुराने और नए, सबको मेरा अभिनंदन। ये आकाशवाणी से हम लोग तब से जुड़े हुए हैं जब आकाशवाणी भागलपुर में नहीं थी, अलीगंज के ट्रांसमिशन में छोटा मोटा रिकॉर्डिंग हुआ करता था। उस समय हम बच्चों को लेके जाते थे वहाँ, युवावाणी का कार्यक्रम वगैरह सब करवाते थे। फिर धीरे धीरे ललित भवन के पास आकाशवाणी हुआ तो वहाँ भी जो है बच्चों का कार्यक्रम होता रहा है, कराते रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो भी, हम लोग जो कलाकार बने, हम लोग को जो ग्रेड मिला वो पटना आकाशवाणी से मिला, और पटना आकाशवाणी से वैसे हमारा ये गौरवशाली 90 वर्ष ये आकाशवाणी पूरा कर चुकी है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आकाशवाणी का ये सहयोग हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग सब प्रसन्न रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम में उपस्थित थे भागलपुर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और आकाशवाणी भागलपुर के टॉकर डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा, जिन्होंने छात्र जीवन से अब तक का सफर जो रेडियो से जुड़ा था रोचक ढंग से साझा किया। इन्हें सम्मानित किया सहायक केंद्र निदेशक अतुल कुमार प्रियदर्शन ने। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवमय यात्रा का उत्सव सुर संगम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, सहायक केंद्र निदेशक अतुल कुमार प्रियदर्शन के द्वारा उनका सम्मान हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि,
3: यहाँ पे सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मुख्य अतिथि तो बहुत बड़ी बात है, मैं किसी भी तरह से यहाँ पे आ जाता और इतने सारे लोगों से आज मिलने का मौका मिला है, उसके लिए अतुल जी का, आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत आभार, जो आपने इस कार्यक्रम, इस शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर दिया। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था कि बहुत सारा कुछ वाद्य यंत्र रखा हुआ है, इसके सुर से ज्यादा सुरीला मुझे वो लग रहा था जब यहाँ के कर्मचारी अपनी यादों को साझा कर रहे थे, वो किसी संगीत से कम मुझे नहीं लग रहा है। और इतना प्यारा आयोजन है कि आप जिस संस्था के साथ कई सालों तक काम करते हैं और वो संस्था फिर कई दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद आपको बुलाए, आपको सम्मानित करे, आपको बोलने का अवसर दे और फिर से सुने, ये बहुत सुखद पल है। इसके लिए इस पूरे आयोजनकर्ता को, आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
0: लोक गायक अरविंद कुमार यादव की, इन्होंने अंगिका भाषा में कृषि गीत, पूर्वी, झूमर और गोदना गीत की सुमधुर प्रस्तुति दी।
4: आकाशवाणी और संगीत का रिश्ता उतना ही पुराना रहा है जितना इसकी स्थापना का इतिहास रहा है। अनगिनत कलाकारों को मंच देना और भारतीय संगीत की परंपरा को संरक्षित करने में आकाशवाणी की भूमिका बहुत अहम रही है। आइए दोस्तों, मैं जिस स्वर को आपसे परिचित कराना चाहता हूं, ये भारतीय पारिजात की हिपोक्रेसी रही है कि आंचलिक भाषा में गीत गाने वाली सकीरा अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन जाती है। एक आंचलिक स्वर में गाना गाने वाला एंड्रिक मिगले जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन जाते हैं, लेकिन हमारी लोक मंगल की भाषाओं भोजपुरी अंगिका मैथिली में गाने गाने वाले लोग, हम उन्हें संगीत की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में एक चेहरा और उनकी प्रस्तुति, पिछले कुछ वर्षों में एक नयापन जो लोक संगीत के साथ जुड़ा है, उनकी लिखावट, उनका बयां करने का अंदाज, और वो जब आपसे रूबरू होते हैं तो साक्षात लगता है कि लोक संगीत की एक मूर्त आपके सामने आ गई है। ऐसे हम संगीत को तो अमूर्त कहते हैं, लेकिन जहां तक लोक संगीत की बात आती है, लोक परंपराओं की बात आती है, तो हम वैदिक काल से संगीत को देखते आए हुए हैं। और वैदिक काल में कहा जाता था कि संगीत के दो रूप हैं, जिसे हम गांधर्व गान और एक को गान कहा करते थे। गान ही आगे चलकर लोक संगीत में परिवर्तित हुआ है, और बहुत सारे विद्वानों का ये भी कहना है कि लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत का भी निर्माण हुआ है। आइए हम एक स्वर को, एक चेहरे को आपके बीच बुलाना चाहते हैं, लोक रंग के हमारे अनूठे गायक जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे भागलपुर, बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे शहरों में भी लोक संगीत की अलग जगाई है। हमारे बीच हैं अरविंद यादव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। लोकगीत अंगिका हमारे भागलपुर द्वारा इन्हें ए ग्रेड की उपाधि प्राप्त है। लाइट म्यूजिक गीत भजन में हमें बी हाई के रूप में हम इन्हें जानते हैं, और आकाशवाणी से जिनका 45 वर्षों से एकदम अनूठा वाला संपर्क रहा है। अब हम उनके साथ साथ आज जो मुख्य कलाकार के रूप में उपस्थित हुए हैं, संगत कलाकार को भी उपस्थित होने के लिए कहते हैं। संगत कलाकार के रूप में सबसे पहले हमारे साथ मोहित नाहर जी, संगत कलाकार नाल में कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। लोकगीत नाल और ढोलक में इन्हें बी हाई प्राप्त है। हम इसके बाद हमारे बीच गोपाल कृष्ण मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं, संगीत तबला लाइट म्यूजिक में जिन्हें बी हाई प्राप्त है। कीबोर्ड में हमारे साथ मोहम्मद सब्र आलम हैं, जिन्हें प्यार से हम लोग निराला भैया कहते हैं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबों के लिए। और ऑक्टापैड पर तबरेज आलम जी उपस्थित हैं, आप सबकी जोरदार तालियां हो। आइए अब संगीत के लिए मैं चाहूंगा हमारे साउंड ऑपरेटर संगीत के लिए आए, और इसके साथ ही अब हमारे बीच, क्योंकि लोक संगीत की बात आती है, अंगिका की बात आती है, भागलपुर की बात आती है, सिल्क की बात आती है, तो सबसे पहले आज अब मैं मंच कुमार गौरव जी को दे रहा हूँ। अब अंगिका के साथ हमारे बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: इस ऐतिहासिक और गौरवमय समारोह में आकाशवाणी भागलपुर की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सहायक केंद्र निदेशक अतुल कुमार प्रियदर्शन ने। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया कार्यक्रम अधिशासी सौरभ कुमार और मोहम्मद सरशार अहमद ने। और इस तरह संपन्न हुआ आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों का महान उत्सव सुर संगम, क्योंकि 90 वर्ष ये केवल समय नहीं, ये समर्पण का इतिहास है, ये संस्कृति का दस्तावेज है, भारत की आवाज का उत्सव है। आइए हम सभी मिलकर यही कामना करें कि आकाशवाणी इसी तरह आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान, संगीत, संस्कृति और संवेदना की रोशनी पहुंचाती रहे।
1: श्रोताओं, इस खास अवसर पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आकाशवाणी भागलपुर के माध्यम से सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर संकलन था
0: अणिमा कुमारी
1: और प्रत्यक्ष कुमार का।
0: धन्यवाद।

आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सुर संगम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर प्रत्यक्ष कुमार एवं अनिमा कुमारी की थी। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति

स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के

0: आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
6: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
5: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength.
7: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
5: Dr. Jayashankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Dr. Jayashankar also emphasized India's balanced engagement across key regions amid growing geopolitical tensions. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Meshel Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's

0: Emirates Land Port Management System to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इक्तसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज़ भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्जान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्जान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक व इकतसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: फायदा होगा क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
2: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वजीर आजम ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुजाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और यह तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم BESS کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے BESS کا تعاون حاصل ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین VBG رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ VBG رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے۔ برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے، جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے۔ 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں NTA ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے۔ جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن سکور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کا

0: कार्रवाई और मुसाफिर आमद और रफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निज़ाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। नौ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। अब सुनिए डॉक्टर सुधा जाला कोहली का लिखा नाटक कर्मभूमि, प्रस्तुत करता है अमित कुमार।

प्रस्तुत है नाटक कर्मभूमि। लेखिका हैं डॉक्टर सुधा जाला कोहली। प्रस्तुति सहयोग सौरभ कुमार। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं अमित कुमार।

इतना ट्रैफिक हो गया है शहर में, उफ, कब ट्रैफिक जैम लग जाए कहना मुश्किल है। क्या करूं, मैं कितना भी समय पर निकलूं देर हो ही जाती है। लगता है 20-25 मिनट तो क्लियर होने में लगेंगे। ओह क्या करूं, हाँ मनीष सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी।

0: लगता है सर व्यस्त हैं। एक बार फिर डायल करती हूँ। ओह, सर तो उठा नहीं रहे, शायद व्यस्त होंगे। हाँ, रुद्र प्रताप जी को फोन करती हूँ।
1: हेलो, सबका भला हो, सबका भला हो। नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते रुद्र प्रताप जी, ऑफिस आ रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: अब क्या करूँ, ट्रैफिक में फंस गई हूँ।
1: ओ
0: मनीष सर फोन नहीं उठा रहे, तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप आइए आराम से। सबका भला हो, सबका भला हो।
0: जी धन्यवाद।
1: अरे रमन, अरे वो कहाँ है आपके जोड़ीदार विकास?
2: प्रणाम सर। लीजिए, आपने शिष्य को याद किया, शिष्य उपस्थित।
1: अरे भाई प्रणाम प्रणाम। मनीष सर आए तो उनके कान में डाल देना है कि आकांक्षा मैडम देर से आएंगी। समझ गए ना?
2: समझ गए सर। हाँ? बिल्कुल समझ गए। यदि बॉस न भी पूछे तब भी नमक मिर्च लगाकर बताना है।
1: भाई सबका भला हो, सबका भला हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो।
2: हाँ? जी।
3: अरे गुरुदेव, अपने शिष्यों में मुझे भी तो गिनिए।
1: भाई अवश्य अवश्य, सबका भला हो, सबका भला हो। भाई तुम युवा पीढ़ी से ही उम्मीद है।

0: हमारी तो उम्र हो गई है। सबका भला हो, सबका भला हो।
1: अरे सर जी, मैडम रोज थोड़े ही ना लेट होती हैं। आप लोग ना हमेशा मैडम की शिकायत करने की फिराक में रहते हैं। वो तो कितना काम करती हैं।
2: हाँ बिल्कुल, और मैडम हमें ऑफिस के सब काम ठीक से बताती हैं, गलती होने पर हमारा अपमान नहीं करती हैं।
1: रुद्र प्रताप सर, ये तो सही नहीं है। बिना जानकारी के कोई देर से आए तो समझ में आता है। आप लोग खामखा मैडम की शिकायत करने का प्रपंच करते रहते हैं। हाँ
3: सबका भला हो, सबका भला हो। और हाँ, आप दोनों अपने अपने काम पे ध्यान दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बड़े आए मैडम के चमचे। और हाँ राधे श्याम जी, ऑफिस के तौर तरीके हमें ना सिखाएं, समझ गए आप? अगर मैडम चुनाव में उम्मीदवार बने तो आप लोग प्रचार के लिए जाना खुश।
1: रुद्र प्रताप बाबू, सही कहा। मैडम जैसे सभ्य तथा गुणवान उम्मीदवार हों तो देश की काया पलट हो जाए, है ना मोहन?
2: सही कहा राधेश्याम जी। मैडम यदि नेता बन जाए तो समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी।
1: बिल्कुल सही।
4: Come in.
5: प्रणाम सर,
4: कैसे
5: हैं आप सर?
4: ठीक हूँ, आइए बैठिए। और बताइए, दोपहर की मीटिंग के लिए सब तैयार है ना? और एजेंडा की कॉपी है ना आप सबके पास?
3: सबका भला हो सर, वो सर दरअसल
4: क्या बात है, कोई प्रॉब्लम?
6: सर दरअसल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
3: हाँ सर।
7: जी सर, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलना अनिवार्य है, वरना जिस कंपनी को आप इतनी मेहनत से चलाते हैं, जिससे हम सबका चूल्हा जलता है, किसी एक की रह जाएगी सर।
4: क्या बात कर रहे हैं
7: जी,
4: मैं ठीक से समझा नहीं। विकास तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है?
6: एक्चुअली सर, एजेंडा इस मीटिंग का रहे या ऑफिस से संबंधित कोई अन्य जानकारी, आकांक्षा मैडम सारी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखती हैं।
3: हाँ सर।
6: देखिए ना, मुझे आप गलत न समझें सर, मैडम हैं बहुत काबिल और बुद्धिमान भी, पर हम सब भी तो कंपनी के हितैषी हैं ना सर।
7: जी सर, हर बात पर उनका एक ही जवाब होता है, सर से आप बात कर लीजिए, सर से आप बात कर लीजिए, बताइए।
3: सबका भला हो, सबका भला हो। सर हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र बीत गई कंपनी की सेवा करते करते, आगे भी करते रहेंगे। ऑफिस के नियम कानून और कायदे होते हैं जिन्हें हम जानते भी हैं और मानते भी, परंतु मेरे जैसे बुजुर्ग कर्मचारी को भी मैडम अनाड़ी या जूनियर ही मानती हैं। वैसे पिछली मीटिंग के समय भी मैडम का यही रवैया था।
4: Come in. कौन मोहन, अभी ठहरो।
3: सर आप चिंता न करें, कंपनी के भले के लिए हम इस उम्र में अपमान भी सह लेंगे। सबका भला हो, सबका भला हो।
7: हम भी। देखिए सर, किसी एक सहयोगी का व्यवहार यदि ठीक ना हो, उसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। अरे सर, हम तो और अच्छे से काम करेंगे।
4: मोहन चाय रख दो और आकांक्षा मैडम से कहो यहाँ आने के लिए।
2: जी सर, मैडम अभी आई नहीं, ट्रैफिक जाम में फंसी है। पहले आपको फोन की थी पर आपसे शायद बात नहीं हुई, इसलिए रुद्र प्रताप जी को जानकारी दे दी थी उन्होंने।
3: सबका भला हो, सब

0: का भला हो। मोहन चाय दे दो पहले सर को और जाकर कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करो मीटिंग के लिए, समझ गए
1: जी।
0: और हाँ,

0: कितना गलत ये सब करते हैं।
1: हाँ मोहन, अब तक तो मनीष बाबू के कान ठीक से भर दिए होंगे सबने।
0: हाँ राधे श्याम जी, मैं चाय देने गया तो देखा।
1: क्या देखा?
0: सब मैडम की चुगली में व्यस्त थे।
1: अच्छा,
0: खुद तो काम करते नहीं, या हम पर रौब जमाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और फोन पे लगे रहते हैं।
1: मैडम आ गई।
2: प्रणाम मैडम। प्रणाम।
1: प्रणाम मैडम।
3: प्रणाम प्रणाम, सब ठीक है?
1: हाँ ठीक तो तब होता मैडम, अगर बाकी लोग आपकी तरह सिर्फ ऑफिस में काम करने आते।
3: हर जगह अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं राधे श्याम जी, इसलिए बस कर्म करते जाना चाहिए अपनी कर्म भूमि पर।
2: मैडम सब आपकी तरह विचार नहीं रखते।
4: नमस्कार मैडम।
3: नमस्ते रुद्र प्रताप जी।
4: सबका भला हो, सबका भला हो। अरे मैडम के आते ही तुम लोग पंचायत करने लगे। मैडम को केबिन में जाने तो दो, आते ही सर पे सवार हो जाते हो।
3: अरे ये तो एक आम विचार रख रहे थे।
4: जी
3: हाँ, आज 2 बजे से मीटिंग है ना?
4: हाँ हाँ।
3: मैं पेपर्स लेकर आती हूँ आपके केबिन में, और एजेंडा की प्रतिलिपियां बनाकर भिजवाती हूँ।
4: सबका भला हो, सबका भला हो, आराम से भिजवाइए, कोई जल्दी नहीं है मैडम। और हाँ, वैसे भी आपके ये 2 सिपहसालार हैं यहाँ, इसलिए काम तुरंत हो जाएगा।
1: हाँ मैडम, याद आया, रुद्र प्रताप बाबू कह रहे थे कि यदि आप चुनाव लड़ेंगी तो हम प्रचार करें।
4: सबका भला हो, सबका भला हो। अरे अरे, वो तो हमने यूं ही कहा था, सबका भला हो। लेकिन हाँ मैडम, चुनाव लड़िएगा तो वोट बैंक राधे श्याम जी और मोहन अकेले ही जुटा लेंगे। हाँ,
3: आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। सही ढंग से जीवन व्यतीत करना ही सबसे बड़ा चुनाव है। चलती हूँ। आ जाइए। अरे मोहन आओ, अंदर आओ।
2: जी मैडम, ये आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय।
3: अरे वाह।
2: हाँ याद आया, वो मनीष सर आपको बुला रहे हैं।
3: हाँ ठीक है, आती हूँ।
5: Come in.
3: नमस्कार सर, आपने बुलवाया?
5: हाँ हाँ, आइए आकांक्षा जी। मैं कह रहा था, वो मीटिंग के पेपर्स रेडी हैं, एजेंडा?
3: जी ये रहे पेपर्स, एजेंडा मैं बाकी सबको भिजवाने जा रही थी।
5: ठीक है, जल्दी भिजवाइए, और ये पेपर्स टेबल पर ही छोड़ दीजिए।
3: ठीक है सर।

0: हेलो माँ, आप ऑफिस पहुँच गई?
1: हाँ बेटू, मैं ऑफिस आ गई। अपना होमवर्क ठीक से कर लेना। देखो गर्मी की छुट्टियाँ यूं ही बर्बाद नहीं करना। और हाँ, दादी माँ को तंग नहीं करना, समझी?
0: मैं अपना और दादी माँ दोनों का ख्याल रखूंगी, उनको तंग नहीं करूंगी।
1: ठीक है बेटा, ऐसा है थोड़ा बिजी हूँ अभी, बाद में बात करूंगी, बाय।
0: माँ सुनो तो, कुछ देर बात तो करो ना।
1: अच्छा बोलो, क्या बात है?
0: माँ इतना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या?
1: जब मेरी बेटी प्रशंसा करने लगे, मैं समझ जाती हूँ कि कोई काम है।
0: नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं यह सोच रही थी कि गलती करने पर बच्चे स्कूल में टीचर जी से और घर में माँ से दांत खाते हैं। क्या आप ऑफिस में काम करने वालों को दांत

0: पड़ती है?
1: ये तो गंभीर सवाल है, पर गलत नहीं है। माता पिता संतान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। गलती बताना, अनुशासित करना उनका फर्ज है। और रही बात ऑफिस की, यदि सबसे बड़े अधिकारी या सहयोगी काम बताएं या कोई सहयोग मांगे तो एक सटीक और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए।
0: हमेशा?
1: बिल्कुल, काम करना ही तो कर्म है ना बेटू। अब देखो, ऑफिस मेरी कर्म भूमि है और स्कूल आपकी। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, वो आपका कर्म है ना, और मैं ऑफिस का काम ठीक से करूं, वो मेरा कर्म। समझ गई बेटू?
0: हाँ माँ, समझ गई। एक बात बताइए, स्कूल में हम एक क्लास में हम उम्र होते हैं, ऑफिस में भी सब एक उम्र के होते हैं क्या? कोई बड़ा अधिकारी और उससे जूनियर कैसे बनता है?
1: कितने सवाल करती है। देखो बेटू, ऑफिस में काम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और योग्यता के अनुसार मिलता है। ये याद रखना जरूरी है कि ऑफिस में काम करने वाला हर कर्मचारी महत्वपूर्ण है। समझ रही हो ना?
0: हाँ माँ।
1: और प्रत्येक कर्मचारी, महिला या पुरुष, जिस पोजीशन पर हो, चाहे वो निचला ओहदा हो या ऊंचा तबका हो, बेटू ऐसा है कि सबकी एक गरिमा होती है, सबका आत्मसम्मान होता है, जिसे ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। और एक जरूरी बात है, सुन रही हो ना?
0: हाँ माँ।
1: यदि स्कूल या ऑफिस में कोई व्यक्ति अनुचित बात कहे या अनुचित काम करने को कहे, जिससे दूसरे को या खुद को हानि पहुंचने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति का जमकर तीव्र स्वर में विरोध करना चाहिए। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए।
0: माँ, इसका अर्थ है कि हमें स्कूल में अध्यापक, अध्यापिकाओं, अन्य स्टाफ, जूनियर, सीनियर, सबका सम्मान करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन साथ में सतर्क रहना चाहिए, सही गलत की पहचान होनी चाहिए।
1: शाबाश, एकदम समझ गई तुम। बिट्टू, ऐसा करने से आप जहाँ भी रहेंगी सबके सम्मान का पात्र बनेंगी और आशीर्वाद भी मिलेगा, समझी?
0: हाँ माँ, थैंक यू। मैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखूंगी, ना गलत करूंगी ना गलत सहूंगी। बाय माँ।
1: बाय बिट्टू। आ जाइए। अरे राधे श्याम जी, आप? हाँ कहिए, क्या बात है?
2: मैडम, कॉन्फ्रेंस रूम में आपको बुलाया जा रहा है।
1: ठीक है, अभी आती हूँ।
3: कम इन।
1: नमस्कार सर।
3: अरे आकांक्षा जी, आइए बैठिए।
4: आज तो गई, आज कोई बचाने वाला नहीं।
3: आकांक्षा जी, देखिए ऐसा है कि किसी भी मीटिंग के एजेंडा की प्रतिलिपियां पहले दे दिया कीजिए सबको, कम से कम एक दिन पहले। इससे क्या होगा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर सकेंगे और आपका बोझ भी थोड़ा हल्का होगा।
1: सर, इस मीटिंग के एजेंडा को आपने कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा था।
3: आकांक्षा जी, हम इतने व्यस्त रहते हैं, क्या ये छोटी चीजें भी याद रखें? कब क्या कहा था, और ऊपर से आप बहस करने के लिए तत्पर हैं।
1: सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपने पूछा तो बताना मेरी ड्यूटी है।
3: ऐसा लगता तो नहीं? सब फाइल्स रख लेना काम करना नहीं होता आकांक्षा जी, दोबारा से पूछ भी लिया कीजिए। चलिए आगे से मिलकर ही रिपोर्ट आदि बनाइए, ठीक है? चलिए मीटिंग शुरू कीजिए।
1: सर अजीब तरह से पेश आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है।
3: रमन
5: जी। सर,
3: लाइट ऑफ कर दो।
5: जी
1: सर, आज की मीटिंग का पहला एजेंडा है शेयर्स। कुछ दिन पहले मार्केट के आंकड़ों के हिसाब से अपने शेयर्स में गिरावट आई है। ये कुछ पेपर।
3: गिरावट आई है? एक मिनट, रुद्र प्रताप जी।
6: जी सर।
3: आप लोग तो कह रहे थे हमारे शेयर्स अच्छे जा रहे हैं।
6: सबका भला हो, सबका भला हो। अरे सर, मैडम पिछले सप्ताह की बात कर रही हैं।
5: और सप्ते की बात,
6: और मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। सबका कल्याण हो।
5: आज की बात कर रहे थे सर।
7: प्रताप सर ठीक कह रहे हैं सर।
3: उफ, क्या चक्कर है, मीटिंग के बाद बात करता हूँ। ठीक है आकांक्षा जी, आप कंटिन्यू कीजिए।
1: जी। सर, ये था आज की मीटिंग का लास्ट एजेंडा।
3: ओके। रमन
5: जी सर,
3: लाइट ऑन करो।
4: जैसे है सुने ने, कुछ अगर हुआ पार्टी मेरे तरफ से।
3: ठीक है आकांक्षा जी, मीटिंग की रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और रुद्र प्रताप जी को सौंप दीजिए।
1: ठीक है सर, आप पेपर्स यदि कुछ समय के लिए दे दें तो रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी। मैं सबके साथ मिलकर रिपोर्ट बना लूंगी।
3: सबके साथ रिपोर्ट आप बनाइए।
1: सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हर काम मिलकर करना है।
3: आजकल आप बहस बहुत ज्यादा कर रही हैं। तब क्या कहा, थोड़ी देर पहले क्या कहा? अरे केवल अपने काम से मतलब रखिए।
6: अरे मैडम, बहस करने से किसी का भला नहीं होता। आप बेकार में सबका भला हो।
1: लेकिन सर, सर मैं कह रही थी कि वो,
3: आप मेरी बात को उल्टा बोल रही हैं, बहस कर रही हैं। आप यहाँ नौकरी करती हैं, कोई एहसान नहीं करती किसी पर। आप अपने नियम पर चलती हैं। आज का उदाहरण लीजिए, देर से आप आई, बाकी सब समय पर। ट्रैफिक सबके लिए है, पर आप शायद इस पर भी बहस करेंगी।
1: मैं सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहती हूँ सर।
3: यहाँ इतने लोग हैं, पर आपकी तरह ऊंची आवाज में किसी ने आज तक मुझसे बात नहीं की। आप चिल्ला कर बोल रही हैं।
1: सर, मैं सिर्फ अपना पक्ष रखूंगी, फिर आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है।
3: तो ठीक है, आप छुट्टी की अर्जी देकर जाइए यहाँ से। बहुत चिल्लाना सीख गई है।
4: आज तो काम बन गया, दोनों जाल में फंस गए।
1: सर, ये ऑफिस मेरी कर्म भूमि रही है, पूजनीय है। मैं यहाँ कई वर्षों से काम कर रही हूँ। मैंने जहाँ भी काम किया सम्मान पाया। ऐसे बिना कारण व्यर्थ में इतना अशिष्ट व्यवहार न देखा न पाया। मैं एक अनुशासित कर्मठ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए कर्म प्रमुख है। मैं एक नई शुरुआत करूंगी, पर कहीं और।
3: क्या कहा, कहीं और? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए।
1: ऊंची आवाज में बोलने से या अकारण किसी की बुराई करने से किसी का लाभ नहीं होता सर।
6: शांत मैडम, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: आप लोग शांत रहिए। कर्म भूमि में प्रत्येक कर्मचारी की एक गरिमा होती है, आत्मसम्मान होता है, जिसे ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। मुझे अपनी विचारधारा पर गर्व है और संतुष्टि भी। आज सही समय पर मैं सही निर्णय लेने जा रही हूँ। अपना इस्तीफा राधेश्याम जी के हाथ भिजवा देती हूँ। धन्यवाद सर, मेरी सोच को सफल करने के लिए धन्यवाद, और आप सबको प्रणाम।
6: सबका भला हो, सबका भला हो।
8: मैडम इतने गुस्से में, मैडम तो इतने गुस्से में कभी नहीं रहती थी।
9: सही क्या बात है श्याम जी, आज जब मैं सुबह चाय देने गया तभी से माहौल गर्म था। लगता था जरूर कुछ होगा।
8: हाँ, कुछ हुआ है लगता है।
9: बहुत बड़ी पकड़।
1: राधे श्याम जी, इधर आइए।
8: जी मैडम, आया।
1: ये मेरा इस्तीफा है।
8: इस्तीफा?
1: सर को जाकर दे दीजिए।
8: इस्तीफा क्यों मैडम? ये क्यों कर रही हैं? इस्तीफा क्यों मैडम?
1: बस बहुत हो गया राधे श्याम जी, मैं नौकरी करती हूँ, आत्मसम्मान नहीं बेचा है।

0: हेलो बेटू।
1: हेलो माँ।
0: बेटा मैं आ रही हूँ, सी यू सून।
1: पर माँ आज इतनी जल्दी?
0: समय आ गया है बेटू, अब तुम्हारी माँ बढ़ रही है, एक नए दिन, एक नए सूर्योदय, एक नए जज्बे के साथ, एक नई कर्म भूमि की ओर, कर्म भूमि की ओर।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुधा जाला कोहली द्वारा लिखित नाटक कर्मभूमि। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। आकांक्षा की भूमिका में संगीता घोष, मनीष, राजेश प्रियदर्शी, रुद्र प्रताप, संजय कुमार, विकास, अरुण कुमार झा, रमण, पवन कुमार साह, मोहन, रितेश रंजन, राधेश्याम, डॉक्टर शुभतोष बागची और बेटी की भूमिका में थी कुमारी श्रेया। प्रस्तुति सहयोग सौरभ कुमार, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। ये नाटक आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति थी।

0: आप सुन रहे थे डॉक्टर सुधा जाला कोहली का लिखा नाटक कर्मभूमि। प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के दस बजने को हैं। अब आप सुनिए अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात

0: नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे बिहार।
1: गुंजे बिहार के आज के इस अंक के साथ मैं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र उपस्थित हूँ। सबको नमस्कार मेरा, और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं अमृता शर्मा।
2: सबको नमस्कार।
1: अमृता जी, जैसा कि माना जाता है कि ये प्रकृति का एक अपना चक्र होता है।
2: जी हाँ।
1: और सृष्टि का ये क्रम अपने गति से अपने हिसाब से चलता रहता है, और ये प्रकृति अपने चक्र पर अटल है।
2: जी।
1: युगों युगों से ये चक्र सतत इसी प्रकार से निरंतर प्रवाहमान है, यानी कि चलता रहता है।
2: सुबह का होना, दिन का जवान होना, और फिर धीरे धीरे सांझ के साथ अपने अवसान को प्राप्त करना, और रात्रि के रूप में दिवस का अंत हो जाना।
1: बिल्कुल यही तो है ये प्रकृति का चक्र।
2: जी।
1: है ना। और नित प्रतिदिन हम लोग सदियों से इसी क्रम को देखते चले आ रहे हैं। भोर की लालिमा, उसके पूर्व अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो वो, और शनि शनि ये चक्र आगे की ओर बढ़ता चला जाता
2: जी,
1: है
2: जी।
1: और शाम को पुनः ये अवसान भी होता है। और इसी क्रम और इसी कड़ी से जुड़े हुए हमारे पर्व त्योहार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें है भी।
2: इसी क्रम के साथ जनमानस की आस्था भी अपने समुचित श्रृंगार के साथ बहती है,
1: और यही श्रृंगार जो है वो गीत है, यही श्रृंगार संगीत।

0: कहते हैं जीवन में खूबसूरती तभी आती है जब आसपास ज्ञान का उजाला हो।
1: जी हाँ, समझ की रोशनी हो, बुद्धि का प्रकाश हो,
0: तभी तो शिक्षा को मानव जीवन का सबसे अनमोल गहना माना गया है।
1: हाँ, जिसके धारण करने मात्र से व्यक्तित्व सजीला हो उठता है,
0: तरीके भले बदल जाते हैं,
1: सलीका आ जाता है,
0: जिंदगी को नए तरीके से जीने का एक अंदाज आ जाता है।
1: जी हाँ,
0: और आदमी जो है वो निश्चित रूप से कल से ज्यादा बेहतर हो पाता है इस ज्ञान के माध्यम से।

0: सुबह का मन भावक मोहक परिदृश्य,
1: पक्षियों का चहचहाना, भोरों का गुनगुनाना,
0: कलियों का फूल पर इछलाना, खुशबू बिखरना, मनचाही मोहक सरसराती हवा का बहना,
1: गाय बैलों का रंभाते हुए मैदान की ओर चरते जाना, कितना मनमोहक दृश्य है,
0: मन में बस जाने वाला
1: जैसे श्री कृष्ण अपनी गायों संग लीला कर रहे हैं।

0: परदेश गए पिया की याद में गोरी व्याकुल है।
1: ये प्रतीक्षा के दिन खत्म क्यों नहीं होते?
0: मन को कितना भी समझा लो पर मन तो मन है ना, वही बसा है।
1: पिया के साथ मीठी मीठी बातों में, खट्टी मीठी तकरार में,
0: रूठने में,

0: तो श्रोता भाइयों बहनों, गूंजे बिहार के आज के इस अंक के साथ अब यही विराम लेते हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम से। अपने इस दोस्त विजय कुमार मिश्र को और आज
1: अमृता शर्मा को
0: अनुमति दीजिए। सबको नमस्कार।
1: सबको नमस्कार।

प्रभुर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजी बिहार, बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजी बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजी बिहार।

आप सुन रहे थे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस वक्त रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है भावों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भावगीत। दोस्तों, शादियों का एक वक्त होता है और जब ये सिलसिला शुरू होता है तो खुशियाँ खुद ब खुद हमारे घर आने लगती है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ रीति रिवाज है कि लड़कियों को देखने लड़के आते हैं, लड़कों को देखने

लड़की वाले जाते हैं, तो ये माहौल बड़ा ही प्यारा सा होता है। लड़की के दिल में एक उमंग होती है और लड़की वालों के दिलों की धड़कनें तेज होती हैं। पता नहीं ऐसा क्या होगा, हमारी लड़की को कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, या क्या क्या सवालात होंगे, ये सभी कुछ मन में करता रहता है। लड़की वालों की तरफ से लड़की की छोटी बहनें भी अक्सर यही सब सोचती हैं। लेकिन एक मज़ा तो ज़रूर आता है ये वक्त का, कि इस वक्त में जो घर का माहौल होता है बिल्कुल बदल बदल सा जाता है।

शादी का माहौल बनते ही छेड़खानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की को लड़की की बहनें छेड़ने लगती हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो एक प्यारा सा माहौल बन जाता है, घर में खुशियों

की लड़ी आ जाती है, हर तरफ खुशियों की झड़ी रहती है। जी हाँ, जिसे देखिए हर इंसान अपने आप में खुश है और सब इसकी तैयारी करने लगते हैं, नए नए कपड़े बनने लगते हैं और जो भी शादी की तैयारी होती है वो घर सजने लगता है, हर तरह से बस एक माहौल बन जाता है। और माहौल ऐसा बन जाता है कि आसपास की सारी महिलाएं मिलकर गीत नाच शुरू कर देती हैं, यानी गीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और गीतें इस तरह से बोलती है, हल्दी उपटन जिसे कहते हैं, मेहंदी और संगीत सब कुछ इसमें एक माहौल सा बन जाता है और घर का जो वातावरण होता है बड़ा रंगीन हो जाता है।

चलिए, बहनों की तैयारी हो गई, दुल्हन की तैयारी हो गई और जितनी तारीफ़ें करनी थी दुल्हन की वो तो हो गई। अब बात है दूल्हे की। जी हाँ, दूल्हे भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं और दूल्हे जब बारातियों के लिए लड़कियाँ जी हाँ बारातियों के लिए जब लड़कियाँ होती हैं तो वो काफ़ी तैयार होती हैं और अपनी सहेलियों को किस तरह से गागा कर सुनाती हैं। आइए ना एक प्यारा सा गीत हम भी आपको सुनवाते हैं कि दुल्हन की जो दोस्त होती हैं वो कैसे दुल्हन को छेड़ती हैं।

हाँ जी, वो खुशियों का पल आ गया, बारात भी आ गई और शादी भी हो गई। और शादी के बीच में जो छेड़खानी होती है लड़की वालों की तरफ से और लड़कों वाली की तरफ से, आइए उसका कुछ मज़ा लेते हैं इस गीत से।

छेड़खानी का सिलसिला ख़त्म हुआ और शादी संपन्न हुई। अब वक्त आया विदाई का। एक पिता को अपनी पुत्री को विदा करना था, लड़के के हाथ सौंपना था, लड़के के परिवारों को उसे अपनी जिंदगी भर की पूंजी दे देनी थी। बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है ये दृश्य, और ये रीति है, इसलिए इस रीत को तो निभाना ही पड़ता है। हर लड़की को अपने बाबुल का घर छोड़ना ही पड़ता है।

आज के भावगीत कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया गया उनके नाम हैं खूबसूरत, दुश्मनी, प्रेम गीत, पापा कहते हैं, नीलकमल और सरस्वती चंद।

आज के भावगीत कार्यक्रम में जिन आवाज़ों को शामिल किया गया उनके नाम हैं आशा भोसले, सपना अवस्थी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, कुमार सानू, पूर्णिमा और साथी। कार्यक्रम आप सुन रहे थे भावगीत आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 11 बजने वाले हैं अब। आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त

0: अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka.